0: वो कैसे करी पुकार नान का मदिल किया फिर किस ही करनी सार करनी सार करनी सार
1: थोड़ी नानक अंतना जपनी हरता के पारावार आतराए साथी फिर आतराए मार इतना गली जंजीरियां एक तुड़ी चढ़े बिसेयार आप त्राए करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किसी

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਡੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और ये सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, 100.9 मेगा हर्ट्स, डीटीएच डी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। सवेर 6:05 हुए ज्ञान अमृत।

श्री परमात्मा जे हर ना कोई दाता है ते ना कोई मेहरबान हुंदा है। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो तुसी सर्वण कर रहे हो भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

आकाशवाणी जी संदेश सरसुंदरा नौ हजार 870 किलोहर्ट्ज़ से तेखा सहायत में आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश तक सकता है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, डिटेल्स कुछ मित्र हैं। थोड़ी देर में तमाम भगत कराम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम बुधना तेखा पोए तबसरो पेश कर दो पोए तमाम प्रोग्राम बुधना सजन तो के खबर कड़ी खास खास खबरों प्रोग्राम के आखिर में ब्रॉडकास्ट कई वेंदियों यार ऐसे में प्रोग्राम की डिटेल्स तमाम आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुधरा हीर अचो तो भगत कराम साहब के बुधूँ।

me más, mi madre me llama. Ahora no te malas, pero más.

0: और भगत कलाम साहब जन जी सदाबहार आवास में कलाम जरे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है हिंसर पेश है तफसरो
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 खां 11 जुलाई 2026 दरमियान टिन मुल्कन की यात्रा

हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यात्रा के पहले दौर में श्री मोदी 6-8 जुलाई दरमियान इंडोनेशिया में रहंदो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संदस यह इंडोनेशिया चौथी यात्रा है ए पहली बाहमी यात्रा है जैखा यानी कि मई 2018 में बिन्हीं मुल्क पैंजे रिश्तन के वधाए करे वसी हिकमत अमली भाईवारी में तब्दील किया है। संदस यात्रा असाजे वसी हिकमत अमली भाईवारी के वधिक पुख्तो कंदी। भारत जो बचाव ए सुरक्षा तावन बाकायदा उचे समय की यात्रा बाकायदे बेतरफिन ए बहुन तरफी मश्क बचाव हुनर तावन से तमाम घणो वध्यो आहे। तंहिं में ब्रह्मोस जी सेल पण शुमार आहे। सरहदी पड़ोसरी पाड़ेसरी होने नाते ॿिन्ही मुल्कनि भारत इंडोनेशिया सामूंडी तावन खे इंडो पैसिफिक में साल 2018 में अख़्तियार कयो आहे। आईएफसी आईओआर में इंडोनेशियन लाइसेंस ऑफिसर के मुक़रर करण सां असांजे सामूंडी खेत्र में सजाॻी आणण खे वधीक हथी मिलंदी। भारत एनडीए ऐं डीएसएससी में इंडोनेशियन कैडेट्स ऐं ऑफिसर खे तरबियत ॾियण लाइ ॿिया स्लॉट्स मुक़रर कया आहिनि। इन तरह सां बचा सघ वधंदी। संदस यात्रा प्रधानमंत्री यात्रा बचाव ए सामूंडी भाईवारी के अञा वधीक वधाईंदी। विकसित भारत 2047 ए एमास यानी कि गोल्डन इंडोनेशिया 2045 जी दूरंदेशी में घणी हिक जहिड़ियूं आहिनि। इंडोनेशिया इन वक्त भारत जो आसियान इलाइक़े में बियो नंबर वॾे में वॾो वापारी भाईवार थी करे उभरी आयो आहे। तंहिंमें ॿितरफ़ो वापार साल 2025-26 में 24.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो। इंडोनेशिया जे अलॻि अलॻि खेत्रनि में 130 खां बि वधीक भारतीय कंपनियुनि सीड़प कई आहे। प्रधानमंत्री यात्रा सां वापार ऐं सीड़प खे अञा वधीक थी मिलंदी। भारत रिसेलेंट फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन खे पुख़्तो करण में इमदाद ॾेई रहियो आहे। इंडोनेशिया जे खाद खुराक सुरक्षा अवलियतुनि में भारत जी हिमायत आहे। तंहिंमें जी थो वञे 100 टन उच क्वालिटी जे DWR 162 कणक जे बिजनि खे बिजनि जी सप्लाई। इहे कोशिशूं असांजे रिसेलेंट ऐं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तावन खे वधाइण लाइ मशक़ूं आहिनि। आलमी क्रिटिकल मिनरल्स खेत्र में इंडोनेशिया जी पकड़ पुख़्ती आहे। हुन वटि आलम जो 21% निकल जो भंडार आहे ऐं मुख्य आलमी प्रोड्यूसर्स में अहम आहे। तंहिंमें अची थो वञे टामो, बक्साइट ऐं टिन। प्रधानमंत्री यात्रा सां क्रिटिकल मिनरल तावन अञा वधीक पुख़्तो थींदो। इंडोनेशिया भारत खे भाईवार तौर लिखींदो आहे छो जो हिन ताईं घणाई मेड़ समझ जूं मीटिंगूं थी चुकियूं आहिनि। उन्हनि भारत जे समाजी खेत्र जे बहबूदगी रथाउनि मां घणो कुझु सिखियो आहे, जहिड़ो की असांजो PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चांवरनि खे वधीक विटामिन ऐं राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम, भाड़नि में रियायत ॾियण, एग्रीस्टेक वग़ैरह वग़ैरह। भारत ऐं इंडोनेशिया पाण में घणी तरक़ियाती अवलियतूं वंडनि था। इंडोनेशिया जी अभिलाषाई कार्रवाई आहे कि न्यूट्रिशन सां भरियल मीज आवाम खे मुयसरु कराइण, जेका सदर प्रभो जे तहत 3 मिलियन खां वधी करे 36 मिलियन आवाम ताईं पहुती आहे। सां भारत जे मिड डे मील प्रोग्राम ते आधार रखे थी यानी कि PM पोषण ते। तरक़ियाती कार्यूं भारत जे नॉलेज ते करे रहिया आहिनि। तंहिंमें इंडोनेशिया जी जेका रेड एंड व्हाइट विलेज कोऑपरेशन आहे, सरकार जे आधार ते हिकड़ी रिथा शुरू कई वई आहे। तंहिंमें ॻोठनि जे इक़्तिसादियतुनि खे ऐं खाद खुराक जी सुरक्षा खे पुख़्तो कयो वञे। इन प्रोग्राम तहत मक़सदु आहे 80,000 पाण ते भाड़ींदड़ माली मर्कज़ मुल्क भर में पैदा करणु। हिन खां अलावा ॻोठनि में सिहत जूं क्लिनिक्स ऐं पहुच अंदरि दवाऊं मुयसरु कराइणु। इंडोनेशिया भारत सां वेझो थी करे कमु करे रहियो आहे त जीअं पंहिंजे ॻोठनि में क्लिनिक्स में इहे दवाऊं मुयसरु कराई वञनि। से भारत खां बल्क सप्लाई ढांचे तहत वरिती वेंदियूं यानी कि जन औषधि तहत। इहा कार्रवाई सरकार जी सरकार सां थींदी। तंहिंमें ऊची समझ जे ऐं तमामु ई घटि अघ ते दवाऊं ऐं बल्क सप्लाईज़ जन औषधि स्कीम तहत इंडोनेशिया खे ॾिनियूं वेंदियूं। वधीक कार्यवाही जी ॿी हिकु कार्रवाई आहे UPI ऐं इंडोनेशिया जे QRS डिजिटल
मेमेन इकोसिस्टम माने गाना को जब इन वक्त हली रहा है इंसान सैर सफर व्यापार ए बिजनेस मशगूल वधी का सवाल थी तफसर बुधी रहा

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम सजण तोखे ख़बर कहिड़ी।

सही तो खे खबर कड़ी सामी प्रोग्राम खणी करे अवां जी किस्मत में एक दफो बीहर खां हाज़िर आहियूं। सभिनी अवाम खां जेका टैक्स वरिती थी वञे त उते पघारदार तबिके जी कहिड़ी हालत आहे, तंहिं सां वाबस्ता सिंध एक्सप्रेस में एडिटोरियल शाय थियो आहे, जंहिंजो उनवान आहे टैक्स उगाड़ी पघारदार तबिको रियायतुनि जो हक़दार। लिखियलु पाकिस्तान में टैक्स उगाड़ी बाबति हर हुकूमत वीचारींदी आहे, रिथाबंदी कंदी आहे, पर मुक़ररु कयल हदफ़ मूजिब टैक्स हासिल न थींदो आहे। मुल्क जी मईशत अहिड़ी बि न आहे जेका टैक्स वारे खसारे खे पूरो करे सघे, तंहिं करे हर हुकूमत अवाम ते टैक्स जो भार वध खां वधीक विझंदी आहे, जीअं बिजली जे बिलनि में टैक्स हणण, घरां घरां बिल मोकिले अवाम खां पैसो कढाइण, या वरी पेट्रोल महांगो करे अवाम जे खीसे ते भार विझी तंहिं मां खसारो पूरो करण जी कोशिश कई वेंदी आहे, ऐं इन हूंदे बि पघारदार तबिको हुकूमत खे वध खां वध टैक्स अदा कंदो आहे। टैक्स उगारी बाबति जेका गुज़िरियल माली साल 2025-26 जी रिपोर्ट जारी कई वई, तंहिंमें ॿुधायो वियो आहे त पघारदार तबिके पंहिंजे पघारनि ते लॻभॻि 633 अरब रुपया वधीक टैक्स ॾिनो आहे। इहा रक़म बासर बरामद कंदड़ आहिनि, जानेदारनि जे वॾनि कारोबारी माण्हुनि ऐं रेंटल शुबे जे मजमू टैक्स खां तमामु घणी आहे। एफ़ीआर बरामद कंदड़नि खां 174 अरब रुपया, रिटेल इस्टेट वारनि खां 191 अरब रुपया वसूल कया विया आहिनि, होॾां रिटेलर्स विथ होल्डिंग टैक्स जे मद में 70 अरब रुपया कट कया विया आहिनि। नए माली साल में पघारदार तबिके खां वध में वधि टैक्स वरितो वियो आहे। हैरत जी ॻाल्हि आहे त हितां जा माशी मार सहूलियतूं उन्हनि माण्हुनि खे ॾींदा आहिनि जेके टैक्स नथा ॾियनि, ऐं जॾहिं पघारदार तबिके खां वधीक टैक्स वरितो थो वञे पर मोट में खेसि कंहिं बि बहितर सहूलियतूं कोन थियूं ॾिनियूं वञनि। हिकु तरफ़ पघारदार तबिके जो पघार एतिरो घणो न आहे, ऐं ॿिए पासे टैक्स जे मद में जेको उन मथां भार पवे थो, तंहिं करे संदसि ज़िंदगी सख़्तु मुतासिर थी थिए। लाज़मी आहे त संदसि मथां टैक्स जो भार घटायो वञे। हैरत जी ॻाल्हि आहे कि पाकिस्तान में सभ खां वधीक सीड़पकारी रिटेल स्टेट में कई वेंदी आहे। ज़रूरत आहे सनत में सीड़पकारी जी आहे, ऐं रियल एस्टेट खे जेके सहूलियतूं आहिनि सभु पिणु मज़े में, इहो तबिको पिणु मज़े में आहे, ऐं जेके टैक्स ॾेई रहिया आहिनि से तमामु ई घटि ॾेई रहिया आहिनि, ऐं टैक्स में खे तमामु घणी छूट पिणु मिलियल आहे। पासिंग एक्सप्रेस में शाया थियल एडिटोरियल ॿुधी आहे, जंहिंजो टाइटल हो टैक्स उगारी पघारदार तबिको रियायतुनि जो हक़दारु।

सैमसंग बजट में थींदड़ बिहाई ते बि आर्टिकल एडिटोरियल शायद आहे जंहिंजो टाइटल आहे वफ़ाक पारां सिंधी पैसनि में कटौती। लेकिन वफ़ाक जे ॾाढनि ऐं नाजाइज़नि जो ज़िक्र मुल्क जा टे सूबा हमेशा कंदा आहिनि, तंहिंमें सदाई वफ़ाक जे निशाने ते रहंदो आहे सिंध। हिन मुल्क खे चार सूबा हलाए रहिया आहिनि जितां पैदावारी ज़रिए वफ़ाक पाण खे हलाइण जहिड़ो थींदो आहे। वोट में पंजाब खे छॾे करे बाक़ी टिनि सूबनि सां नाइंसाफ़ी थींदी आहे, जंहिंजी दाह पिण वफ़ाक कोन ॿुधंदो आहे। पाणी मसइलो हुजे या सेफ्टी सिक्योरिटी जी ॻाल्हि हुजे, एनएफसी अवार्ड हुजे या वसीलनि जी विर्छ हुजे, वफ़ाक इन्हनि मामलनि ते पंहिंजी मर्ज़ी हलाईंदो आहे ऐं सूबनि खे ॿुधण तौर हुननि जे घुर्जनि खे ॿुधणु लाज़मी कोन सम्झंदो आहे। ज़रूरी त इहा आहे की सूबनि जे वसीलनि ते जेको वफ़ाक पाण ते भाणे थो खेसि सूबनि जी ॻाल्हि ॿुधणु घुर्जे। ताज़ा ई ख़बर पई आहे की सिंध खे वफ़ाकी हुकूमत खां 175 अरब रुपया मिलण जी उमीद हुई, तंहिं हूंदे फ़क़ति 91 अरब रुपया बजट मां जारी कया विया, जंहिंमें नतीजनि 85 अरब रुपयनि जी खोट पैदा थी आहे।

ख़र्च में कटौती सबबि वसीले ऐं तरक़ियाती मनसूबनि ते दॿाउ आहे। सने में ॿारनि खां अरिड़हनि कलाकनि जी लोड शेडिंग आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत बिजली घर घुर जे करे सां विंड ऐं सोलार ते लॻाइण नथी ॾिए। सिंध जे तरक़ियाती बजट में कटौती करण सां सिंध जे अवाम इहो पुछण जो हक़ थो रखे त कहिड़े मद में इहा बजट रोकी वई आहे, छो त चूंडियल नुमाइंदा अवाम ॾाढो जवाबदेह आहिनि ऐं तक जा माण्हू तरक़ियाती कमनि बाबति सुवाल करे था सघनि। पर हिते त हालतूं उबतर आहिनि ऐं सिंध सां हमेशह ई नाइंसाफ़ी थींदी रहंदी आहे। पाकिस्तान एक्सप्रेस में शाया थियल एडिटोरियल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो वफ़ाक पारां सिंध जे पैसनि में कटौती।

एशियन खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंज टिनि मुल्कनि जे एशिया पैसिफिक यात्रा दौरान अॼु इंडोनेशिया में पहुतो। परे मामले जे वज़ीर डॉ एस जयशंकर बहरीन जे राजा सां मुलाक़ात कई ऐं बाहिनी लाॻापनि खे वधीक पुख़्तो करण ते बहस बहसो कयो। तजारत ऐं हुनर वज़ीर श्री पीयूष गोयल जो चवणु आहे त आज़ाद वापार करार यानी कि FTA सां भारत जे चमड़े रवानगी कंदड़नि लाइ नवा वज पैदा थींदा। पाकिस्तान पारां बेक़ाइदे खयल जम्मू ऐं कश्मीर जे आवाम भारत खे अपील कई आहे त खेनि लाज़मी शयूं मैसर करायूं वञनि, छो जो पाकिस्तान पारां थोपियल ब्लॉकेट सबबि इस्लामाबाद पारां थोपियल सबबि इलाइक़े में इंसानी बुहरान पैदा थी पियो आहे। भारतीय बॉक्सर्स अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में 4 मिला खटिया आहिनि ऐं फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल खे मात ॾेई करे फीफा वर्ल्ड कप जे क्वार्टर फाइनल में पहुची वियो आहे।

आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुध रहा हिंसा संजय प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वरी अस मुलाकात सुबह सुबह जो इनके भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तीसरे महीने मोकल सदाई गढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बनाइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षा मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्वकप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के ड्रास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और अब वक्त आया है दोस्तों आपके मनपसंद कार्यक्रम यानी गीतों भरी गुड मॉर्निंग कॉल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस प्यारे से कार्यक्रम में। रहना सेहत और रिश्तों दोनों के लिए फायदेमंद होता है। हंसी की ठहाके, मुस्कान और खुशियाँ आपके दिन भर की थकान को यूं चुटकियों में दूर कर देते हैं।

इच्छा क्या है, हम क्या खोज रहे हैं, प्रसन्नता, आनंद, खुशी हम सदियों से तलाश कर रहे हैं और ये हमें अभी तक क्यों नहीं मिल पाई, ये एक मुश्किल बात है क्योंकि ये हमारे अंदर ही है। क्योंकि भगवान का शुक्रिया करना सबसे ज्यादा जरूरी है हर उस चीज के लिए जो उसने आपको दी है और उसी खुशी से जिया भी जाता है जिस खुशी से उसने हमें दिया है।

सुन रहे हैं गीता भरी गुड मॉर्निंग सिमरन कौर के साथ आपकी दोस्त और होस्ट। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है जो साथी औसतन हर दिन करीब 38 मिनट गपशप करते हैं वे काफी खुश रहते हैं और ये गपशप आमतौर पर मजेदार और हल्की फुल्की होते हैं। इनसे रिश्तों में ताजगी बनी रहती है और रिश्ते और मजबूत होते हैं

अपने साथी और दोस्तों के साथ गप्पे मारना किसे पसंद नहीं आखिर? सबको पसंद है। अब साइंस भी इस बात को मानती है कि गपशप करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और इससे रिश्ते भी बेहद मजबूत बनते हैं।

सच में जिंदगी तो लगती है, लेकिन ये बातें आपके अनुभव, मजाक या कॉमन आदतों से संबंधित हो सकती हैं। इससे एक दूसरे पर भरोसा और समझ बढ़ते हैं। और हाँ, बातें करने से दो लोगों के बीच का तनाव भी कम होता है और दूरियां भी कम होती है और रिश्ते और ज्यादा मजबूत और

बातें साझा करते हैं तो अक्सर एक दूसरे की भावनाएं उनसे जुड़ी होती हैं। जब आप किसी के साथ दिल की बातें करते हैं तो इससे मन को तो राहत मिलती है, आपका मूड भी अच्छा होता है। और हाँ, ज्यादातर क्या होता है कि रोनाना, हंसाना और लड़ना झगड़ना तो चलता ही रहता है।

जी हाँ, हंसाना रुलाना और मनाना और उठना तो चलता ही रहेगा। फिर किसी ऐसे ही गीतों भरी गुड मॉर्निंग के साथ हाजिर हो जाऊंगी मैं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। और मुझे अब दीजिए इजाजत, नमस्कार और सुनते रहिए आप हमारे आगे के कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.93 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
0: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक

0: अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक है। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
3: India and Indonesia are very close and strategic partners.
4: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इस सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरी

0: संग्रहित ऊर्जा इस सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है, इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
0: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यही से समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में आसान मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। यह सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, मौरी, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Ashwani presents Morning News. Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan occupied Kashmir, protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
4: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samanavaya group comprising Indonesian students. Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Shundit Chakravorty, said major announcements expected across defense, maritime, security, digital, connectivity, critical and minerals and trade sectors.
5: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals and of course educational and health sectors.
4: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's three-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Shandeep Bandashgupta, Akashvani News, Jakarta.
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry established by Prime Minister Modi in 2021 has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive.
6: सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग
7: For 30 करोड़ पीपल एसोसिएटेड विद द कोऑपरेटिव सेक्टर एंड मोर देन 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स अक्रॉस द कंट्री दिस इज अ डे दे हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर द पास्ट 75 इयर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज सर्व्ड टू एलिवेट द कंट्रीज कोऑपरेटिव मूवमेंट टू अ न्यू स्टेज
6: सहकारिता आंदोलन को नए स्टेज पर ले जाने का काम
1: He said the ministry has identified the key challenges facing the cooperative sector, prepared a comprehensive roadmap for its development and resolution, and introduced reforms that have modernized the entire ecosystem. He added that when the nation celebrates the centenary of its independence in 2047, the cooperative movement will serve as the strong foundation of a prosperous India. Recalling the creation of the ministry on July 6, 2021, Amit Shah said the decision ended a 75-year wait for millions of people associated with the cooperative sector. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary.

0: 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वज़ीर आज़म ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रस की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तहत तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतबाग इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मालियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलान मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला दोतरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के योम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के 3 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदाज गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निजाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इस सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, इस सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आजादी की 100 साला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क्याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से

0: नजरअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि ये वजारत रियासतों के अख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मजबूत डिजिटल डेटा बेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उमूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAACने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाब्ता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिना रूकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्जाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुकाम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाकयात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमाली महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहां बाज मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नजर इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं जबकि NDRF और SDRF की टीमों को حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مہاراشٹر کے گھاٹ

परंपरा के अनुसार चार चरण की आलाप, तत्पश्चात एक चौताल की रचना प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं, देखो सखी वृंदावन में मोहन रास रचायो। हमारे साथ पखावज पर संगति दे रहे हैं पंडित अनिल चौधरी जी और तानपुरे पे मौली गढ़।

tante, gote, cosa que rega tante, gote.

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार थे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक। राग था ललित। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, बदलती जीवन शैली, बढ़ती उम्र, खेलकूद के दौरान होने वाली चोटें, सड़क दुर्घटनाएं और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और नित नई और आसान तकनीक का विकास हो रहा है। आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावी और आसान बनाया है और रिकवरी का समय भी कम हो गया है। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता जी को। आप ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: यहाँ बुलाने के लिए नमस्कार और धन्यवाद आपको।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक की बात होती है तो हड्डियों के टूटने की बात आती है, चोटें लगने की बात होती है, इंजुरी की बात होती है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं आज समय के साथ में कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों?
2: हड्डी टूटना आजकल ज्यादा ओल्ड एज में खास करके हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी जो

0: कमजोर हो जाता है एज के साथ में, खास करके फीमेल वगैरह में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है। और हड्डी जो है इसमें जैसे 30 एज के बाद हड्डी बनता कम है और टूटना ज्यादा शुरू होता है। टूटना मीन्स मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें बोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो एज के साथ कम होते चलता है।
1: यानी होता भी है तो धीरे धीरे होता है।
0: हाँ, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और साथ में अगर कोई अल्कोहलिक हो, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, और कुछ पेशेंट जैसे आस्थमा वगैरह का हो, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह पे होते हैं, तो वैसे लोगों का हड्डी और कमजोर हो जाता है, तो उन लोगों में हड्डी टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
1: एक बड़ी बात कही डॉक्टर साहब की, जो अल्कोहलिक है उनमें जो हड्डी के जो बोन का जो निर्माण होता है या फिर जो डेंसिटी होती है वो कुछ कम हो जाता है,
0: जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज होता है जिससे कि बोन फॉर्मेशन होता है उसको वो रोकता है, तो उसकी वजह से फिर हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाता है।
1: तो आजकल जो नई तकनीक आ रही है तो इन समस्याओं को निपटने में कहां तक सक्षम है और कितनी जल्दी कितना किस प्रकार का प्रभावी है?
0: सबसे पहले तो पेशेंट्स को हम ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप अल्कोहल नहीं लें, स्मोकिंग नहीं करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए आप। जैसे विटामिन डी का कमी होता है सब में आजकल, विटामिन डी में जैसे कि आजकल घर देखते हैं कि एसी में रहते हैं लोग, उसके बाद बेसमेंट में जाते हैं गाड़ी में, वहां से फिर ऑफिस आते हैं, ऑफिस में आने के बाद फिर एसी में बंद रहते हैं, वहां पे सन एक्सपोजर बिल्कुल जीरो होता है, तो उसकी वजह से भी हड्डी कमजोर होते हैं। और उसके बाद फिर कुछ लोग एसपीएफ सन स्क्रीन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं 30-40% वो यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका अल्ट्रावायलेट रेज नहीं मिलता है, फिर उससे भी हड्डी कमजोर होती है। और तकनीक की बात जहां तक है तो ये डिपेंड करता है कि सही फ्रैक्चर किस लेवल का है। और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने का भी पहले उपाय होता है, जिसमें कि हम बोन डेंसिटी डेक्सा बोलते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं, बीएमडी करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितना ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, किस लेवल का है। और फिर बहुत कुछ ब्लड टेस्ट करने के बाद कुछ एंटीजोरेटिव मेडिसिन वगैरह आता है, जैसे बिस्फोस्फोनेट, उसमें टेरीपेराटाइड जैसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, डेनिसुमाब, ये सब। तो ये मेडिसिन देने से भी ओल्ड एज में और बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है और टूटने की प्रक्रिया को थोड़ा कम करता है, तो ये भी प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद हम लोग देते हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा क्यों?
0: क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, मेनोपॉज का जब कंडीशन आता है तो कुछ हार्मोन्स होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाता है, बोन की फॉर्मेशन को कम करता है, उसके वजह से महिलाओं में ज्यादा होता है। साथ में हम बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, इससे क्या होता है कि बोन का फॉर्मेशन को बढ़ाता है और आप उससे अपना हड्डी को मजबूत कर सकते हैं।
1: बच्चों में जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है बड़ी तेजी के साथ होता है, क्योंकि उम्र कम होती है, उनमें जो फॉर्मेशन है वो तेजी से होता है,
0: उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलेंगे तो ज्यादा होता है। ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब बोन का फॉर्मेशन, और बोन का टूटना उसको मेडिकल टर्म में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं। 30-32 के एज तक ऑस्टियोब्लास्टिक ज्यादा होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक कम होता है, लेकिन 34 के बाद बोला जाता है कि ऑस्टियोक्लास्टिक ज्यादा होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक कम होता है, इसीलिए हमारा हड्डी धीरे धीरे कमजोर होते हैं। उससे पहले भी अगर आप जैसे बोलते हैं कि दूध पियो, कैल्शियम का रिच सोर्स लो, आप एक्सरसाइज करो, तो उससे फिर आप अपने हड्डी को मजबूत करते हैं, ताकि फ्यूचर में आपका फ्रैक्चर नहीं हो और आपका हड्डी मजबूत रहे।
1: आजकल किस प्रकार की तकनीक स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर के आई है, जिससे कि और ज्यादा आसान हो गई?
0: देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करें तो मोस्ट कॉमन नीम इंजरी होता है, एंकल में होता है, शोल्डर में होता है,
1: किसी भी प्लेयर्स के लिए,
0: किसी भी प्लेयर्स में, और बहुत सारा स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके ऊपर भी। जैसे हम नी इंजरीज की बात करें तो नी में सबसे ज्यादा एसीएल इंजरी होता है, मेनिस्कस इंजरी होता है, और साथ में वहां पे मिडिल कोलेक्टर लिगामेंट्स वगैरह का। इसमें जो हम सर्जरी करते हैं, सबसे पहले पेशेंट्स को तो हम इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें एमआरआई करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले किया हमने, फिर एमआरआई किया, तो डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं।
1: इसमें तो उम्र मायने रखता है,
0: उम्र मायने रखता है, लेकिन एसीएल इंजरीज वगैरह किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि इसका बेसिकली एक तो जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो किस ढंग से खेलते हैं, आपका वहां पे कैसे मतलब लैंडिंग टेक्निक होता है, जिसे एसीएल इंजरीज यूजुअली होता है, उसको वेलगस एबडक्शन एक्सटर्नोटेशन, यानी जब सरफेस पे हुए प्रॉपर ढंग से, मतलब एक एबनॉर्मल ट्विस्टिंग होता है नी का, तब होता है, तो उसको हम डायग्नोसिस पहले कंफर्म किया। उसके बाद इसमें जो आजकल नया टेक्नोलॉजी है, काफी इंडिया में डॉक्टर्स इसमें ट्रेंड हो चुके हैं, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। ऑर्थोस्कोपिक मतलब की होल सर्जरी, और दूरबीन वाली सर्जरी भी लोग इसको बोलते हैं, जिसमें कि मात्र 8 mm का पोर्ट बनाते हैं, हम दो छेद बनाते हैं
1: माइक्रोस्कोपिक में,
0: माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं। ऑर्थोस्कोपिक मतलब स्कोपिक मतलब व्यू, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स को हम देख रहे हैं उसको ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं, तो मेडिकल टर्म एक्जेक्टली ऑर्थोस्कोपिक। तो उसमें फिर देखते हैं कि एसीएल टियर है, तो उसमें सिर्फ 8 mm के पोर्ट से आप एक साइड से आप स्कोप डालते हैं, दूसरे साइड से इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और फिर इसमें हम ग्राफ्ट निकालते हैं, हैमस्ट्रिंग्स ग्राफ्ट, उसको वो बेसिकली एक टेंडन होता है, उसको फोल्ड करके और उसका निकालने का एक टेक्निक होता है, फिर हम उसको उसमें फिक्स करते हैं, और इससे रिकवरी काफी फास्ट होता है। मेनिस्कस इंजरीज भी हम वैसे ही डील करते हैं, इसमें हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, जो मतलब छोटा सा मतलब 8 mm के पोर्ट से उसमें इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, फिर उससे हम मेनिस्कस को रिपेयर कर देते हैं, और मेनिस्कस अगर रिपेयर होने लायक नहीं रहता तो मेनिसेक्टोमी करते हैं।
1: तो बच्चों में भी किया जा सकता है या फिर बड़ों में या फिर किसी में भी किया जा सकता है?
0: बच्चों में भी किया जा सकता है, उसके लिए वहां पे बच्चों में जो होता है ग्रोथ प्लेट होता है। ग्रोथ प्लेट का मतलब क्या होता है, जहां से हमारा आपका वीर्य होता है जब तक हम 21-22 साल के होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले एमआरआई और सीटी स्कैन या एक्सरे में देखते हैं कि बोन फ्यूज हुआ है कि नहीं, तो उसमें भी ऑर्थोस्कोपी करते हैं।

0: उसमें डिफॉर्मिटी कितना है उसका प्रॉपर असेसमेंट करते हैं हम, और फिर उसमें कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम सर्जरी करके, या फिर सर्जरी नहीं कर सकते तो फिजियोथेरेपी वगैरह करके, कुछ जैसे ऑर्थोटिक्स वगैरह होता है, लेंसेज वगैरह, उनसे उसको मतलब अच्छा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए ऐसा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर, ये फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है डॉक्टर उसमें, ऑर्थोपेडिक में?
0: फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उससे मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं आप, रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है उससे। रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जैसे ACL सर्जरी किया किसी का ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी के बाद, तो उसमें एक पर्टिकुलर वीक में कितना रेंज ऑफ मोशन लाना है, स्ट्रेंथ कितना बढ़ाना है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स और आपको ग्लूटियल मसल्स, कोर स्टेबिलिटी, तो ये सब एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू ही होता है। और अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं कराते तो मसल्स वेस्ट होता है, नी में स्टिफनेस डेवलप कर जाता है, तो रिकवरी बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि शरीर बोन और मसल्स से बना होता है, बोन एक ढांचा होता है, मसल्स आपको ताकत प्रोवाइड करता है, जब मसल्स मजबूत होता है तो ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, इसीलिए फिजियोथेरेपी से मसल्स स्ट्रांग करना जरूरी होता
1: है। स्पोर्ट्स इंजरी में आर्थ्रोस्कोपी का क्या रोल होता है, इसमें कौन कौन सी तकनीक होती है?
0: आर्थ्रोस्कोपी में जैसे हमने पहले अभी जस्ट डिस्कस किया था कि जो कीहोल सर्जरी होता है, दूरबीन वाली सर्जरी होती है, तो उससे जैसे कि नी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, शोल्डर में जैसे सुने होंगे कि शोल्डर डिस्लोकेट करता है,
1: तो उसमें जो क्रिकेट प्लेयर्स के लिए,
0: क्रिकेट प्लेयर्स को, तो शोल्डर डिस्लोकेट करता है, तो शोल्डर जब डिस्लोकेट करता है उसको बैंकार्ट लेजन बोलते हैं, और रोटेटर कप इंजरीज वगैरह होता है, और उसमें जैसे बैंकार्ट लेजन हुआ तो उसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से उसमें भी सिर्फ हम शोल्डर के अराउंड कुछ जैसे 8 mm का या 10 mm का मैक्सिमम बोल सकते हैं पोर्ट बनाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा इंसिजन होता है, उससे फिर हम उसमें सर्जरी कर डालते हैं। शोल्डर सर्जरी अगर बैंकार्ट रिपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट 3 to 4 months में रिकवर कर जाते हैं। अगर नी की बात करें हम ACL सर्जरीज का, तो पेशेंट चलना शुरू कर देते हैं 1-2 महीने में ही, लेकिन रनिंग जॉगिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए 6 to 9 months भी टाइम लगता है। वो अगेन डिपेंड करता है कि फिजियोथेरेपी कैसा हुआ, स्ट्रेंथ कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
1: दोबारा एज यूजुअल वो स्पोर्ट्स खेल सकता है?
0: बिल्कुल खेल सकता है, अच्छा सर्जरी होना और प्रॉपर फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल खेलते हैं।
1: जैसे ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी क्या होता है, इसमें किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल किया जाता है?
0: जैसे एक फ्रैक्चर में हम लोग मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का यूज करते हैं,
1: फ्रैक्चर में
0: करते हैं, और आप आर्थ्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में कैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, ओल्ड एज में फ्रैक्चर फीमर होता है, प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर होता है, टिबियल ट्रॉमा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, तो उसमें हम बड़ा सा रॉड डाल देते हैं, और उसमें से फीमर का टिप ऑफ प्रोकेंटर बोलते हैं, वहां से लेकर के नी ज्वाइंट तक फीमर का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसमें आप देखेंगे तो इंसिजन जो होता है हार्डली मतलब 2.5 centimeters का मैक्सिमम 2-3 incisions होता है, उससे ही कर देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि इंजरी होने के बाद में पैरों में या हाथों में एक छोटी सी प्लेट डाल देते हैं या फिर रॉड डाल देते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा, तो इसे कितने दिनों के बाद में निकाल देना चाहिए, और अगर नहीं निकालते हैं तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं?
0: जैसे जब हम इम्प्लांट लगाते हैं कोई भी रॉड, प्लेट, स्क्रू वगैरह, तो इसमें 1.5 से 2 साल के बाद निकाल सकते हैं, और इंडिकेशन जो निकालने का होता है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो, और कभी कोई पेशेंट खुद बोले कि नहीं हमको निकलवाना है तब, और मैं अपने पेशेंट्स को यूजली बोलता हूँ कि 1.5-2 साल के बाद निकाल लेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी लगता है बाद में कि हमने क्यों नहीं निकलवाया। अगर आप 1.5-2 साल के बाद नहीं निकालते हैं तो बाद में क्या होता है कि उस प्लेट को निकालना मुश्किल हो जाता है, जैसे 3-4 साल हो गया लगभग, क्योंकि प्लेट के ऊपर बोन जमा हो जाता है,
1: बोन जमा हो जाता है, मसल्स भी आ जाते हैं,
0: तो मसल्स को तो हम स्प्लिट करके बगल में कर देते हैं, लेकिन बोन जमा हो जाता है, साथ में स्क्रू और प्लेट के बीच में कोल्ड वेल्डिंग बोल सकते हैं, जो स्क्रू उससे निकलता ही नहीं है।
1: अच्छा,
0: रिसेंटली भी मैंने अभी 8-10 years मतलब पहले सर्जरी हुआ था, ह्यूमरस का फ्रैक्चर था, तो उसका मैंने प्लेट निकाला, लेकिन बहुत मुश्किल हुई निकालने में, क्योंकि जब निकालते हैं तो उस वक्त फिर दोबारा फ्रैक्चर होने की भी संभावना होती है। देखिए, जब हम प्लेट और नेल और स्क्रू लगाते हैं, जस्ट हम फ्रैक्चर को अपने जगह पे लगाने के लिए लगाते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी को जोड़ता नहीं है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है जोड़ने का, जो 6 वीक में जुड़ जाता है, और 1.5 से 2 साल में हड्डी मजबूत हो जाता है, फिर उसका प्लेट स्क्रू रॉड का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल नी रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट की चर्चा काफी सुनते हैं, इसमें कितनी प्रगति हुई है, कहां तक प्रगति हुई?
0: नी रिप्लेसमेंट में काफी प्रगति हुआ है इंडिया में, पहले जो था और अभी भी कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट, इसमें कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन और आजकल रोबोटिक, उसका भी कंसेप्ट है, और रोबोटिक अभी जस्ट 4-5 साल से हो रहा है, 6 साल से बोल सकते हैं मैक्सिमम, तो रोबोटिक भी ठीक है, लेकिन इसमें इंसिजन कब पूछते हैं बहुत पेशेंट्स, कितना बड़ा रहता है, तो इंसिजन में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, उतना ही इंसिजन यूज करते हैं, और रोबोटिक कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट नहीं करता है, हार्डली 2 मिनट के लिए एक बोन का मतलब कट करता है, प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है, तो अभी ये नया तकनीकी है, तो अभी देखना होगा फ्यूचर में कि इससे कितना कॉम्प्लिकेशन होता है और कितना बेटर है, लेकिन कुछ स्टडीज अभी आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन जिसमें रोबोटिक में हो रहा है, तो कन्वेंशनल भी अच्छा है, और इसके बारे में फ्यूचर में पता चलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक इंजरी जब हो जाता है तो हॉट थेरेपी एंड कोल्ड थेरेपी, इन दोनों का क्या रोल होता है?
0: देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मैक्सिमम क्लिनिक्स में भी पूछते हैं, हॉस्पिटल्स में जब हम पेशेंट देखते हैं, तो देखिए जैसे किसी को चोट लगा, एक्यूट इंजरीज होता है वहां पे, तो एक्यूट इंजरीज में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स फटता है, ब्लड वेसल्स फटने की वजह से क्या होता है कि वहां पे ब्लड और जाता है, तो वो जाने से फिर वहां पे स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है, तो वो दर्द को और बढ़ाता है, तो अगर आप उस वक्त हॉट वाटर फर्मेंटेशन करते हैं, मसाज करते हैं, कोई जेल वगैरह यूज करते हैं, तो वहां और ये ब्लड

0: और स्वेलिंग और दर्द को बढ़ाएगा। इसलिए जब चोट लगता है एक्यूट कंडीशन हम 72 आवर्स कंसिडर करते हैं, लेकिन और मेरे ख्याल से ज्यादा 2-3 दिन और मान करके चलना चाहिए। जब आप बर्फ से सिकाई करते हैं उस वक्त तो क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी ब्लड वेसल्स ब्लड वहां पे जाता नहीं है, तो उससे आपका स्वेलिंग कम होता है और एडिमा कम होता है, तो दर्द को कम करता है
1: जी।
0: और अगर कोई पुराना दर्द हो जिसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं, नी पेन, बैक पेन वगैरह, तो उसमें गर्म पानी से ही सिकाई करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, कोई जेल वगैरह यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब ये करते हैं आप गर्म पानी सिकाई करते हैं तो वेसो डायलिटेशन होता है, तो ब्लड वहां पे और जाता है, तो उससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, तो वो आपको उसमें हेल्प करता है। एक तीसरा चीज होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ, जिसमें बोलते हैं 20 सेकेंड्स गर्म पानी में, 20 सेकेंड्स ठंडा पानी में। तो ये जैसे कि प्लांटर फेसिएटिस वगैरह का एक एरिया जिसमें उसमें बोलते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन वेसो डायलिटेशन होता है, वो पेशेंट्स को हेल्पफुल होता है। लेकिन ये कुछ करने से पहले डॉक्टर के एडवाइस से करना
1: चाहिए। ये भी देखा जाता है कभी पैर मुड़ जाता है तो तुरंत ही समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे क्या।
0: देखिए ये आपने एग्जाम्पल दिया एंकल स्प्रेन, तो एंकल स्प्रेन इसको हम ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 ट्विस्ट कितना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एंकल स्प्रेन में क्या होता है, उस वक्त आपको आइस ही करना है, आइस करना है, मसाज नहीं करना है, गर्म पानी नहीं, कोई जेल वगैरह यूज नहीं करना है, तो उससे आपको उसमें हेल्प मिलेगा। और इसको फिर हम ग्रेड करते हैं 1, 2, 3। ग्रेड 1 का मतलब क्या होता है, आप लिगामेंट को कंपेयर कर सकते हैं एक रस्सी से जो दो बोन को बांध करके रखता है, तो ग्रेड 1 का मतलब क्या है कि थोड़ा वो ट्विस्ट होता है, यानी लिगामेंट ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहता है उसमें। ग्रेड 2 में ऑलमोस्ट 50% टेयर हो जाता है, उसमें दर्द और स्वेलिंग जल्दी डेवलप करता है। ग्रेड 3 का मतलब होता है कि काफी कंप्लीट टेयर हो गया लिगामेंट, तो ये क्लिनिकल असेसमेंट एक्सरे करके देखते हैं कि फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, उसमें कभी कभी फ्रैक्चर भी होता है, और फिर क्लिनिकली देखने के बाद एसेस करते हैं, प्लास्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं।
1: एक आखिरी प्रश्न है कि स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी ये क्या है।
0: पीआरपी में क्या करते हैं कि पेशेंट से ब्लड निकाल करके और उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद उसमें एक फ्लफी लेयर होता है, तो उसको हम निकाल करके फिर ज्वाइंट्स में इंजेक्ट करते हैं, या जैसे किसी को टेनिस एल्बो का नाम सुने होंगे, टेंडन इंजरीज होता है, उसमें बहुत सारा ग्रोथ फैक्टर वगैरह होता है, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि मतलब ये आपको हीलिंग में और प्रोटेक्ट करता है और इसको बढ़ाता है। स्टेम सेल थेरेपी भी ऑलमोस्ट सेम इंजरीज में ही यूज करते हैं, जैसे टेंडन इंजरीज वगैरह हो गया, या फिर नी रिप्लेसेस, इनफैक्ट मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी होता है उसमें भी यूज करते हैं। ये सब अभी अंडर स्टडी ही बोल सकते हैं, कुछ पेशेंट्स को इसमें बेनिफिट मिलता है, कुछ को नहीं भी मिलता है।
1: ये कुछ उम्र के अनुसार भी हो सकता है बेनिफिट मिल सकता होगा।
0: जैसे हम नी की अगर बात करें, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक मतलब पीआरपी इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ग्रेड 4 में फिर उसका हेल्पफुल नहीं होता है। लेकिन इसे आपको फायदा होगा नहीं होगा, नुकसान कोई नहीं होता है। इससे पहले हम लोग स्टेरॉइड्स वगैरह ज्यादा यूज करते थे, तो स्टेरॉइड्स में नुकसान मतलब फायदा भी करता है, लेकिन नुकसान होने की संभावना होता है। इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट है कि आपको नुकसान नहीं होगा।
1: तो सब चलते चलते जिनको स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है या फिर ऑर्थोपेडिक की जो समस्या है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: स्पोर्ट्स वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर टेक्निक से खेले, लैंडिंग टेक्निक वगैरह जैसे वो इम्पोर्टेंट है, अच्छा लाइफ स्टाइल, ये सब चीज पे ध्यान दें।
1: सब आप हमारे स्टूडियो में आए और ऑर्थोपेडिक की जो समस्या है और स्पोर्ट्स इंजरी के विषय में जो समस्याएं हैं और जो निदान है उनके विषय में आपने इतने विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तक आए।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए।
1: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

आओ नजर डालते हैं आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर में सुबगाही प्रोग्राम में आज आप भजन सुनेंगे। 9:45 पर आज सवेरे ये प्रोग्राम नशर किया जाएगा। खबरें नशर होंगी 9:50 पर और 10 बजे सुनिएगा अकवाले जर्री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हौसन गजल नशर किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे पूर्वोत्तर डायरी। 11 बजे मेरी बसंत प्रोग्राम में फिल्मी नगमे नशर होंगी। 11:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे शहनशाही जज्बा दिलीप कुमार की यौम वफात पर फीचर। शहनशाही जज्बा दिलीप कुमार पेशकश अली मुतशिम रजा की। दिन में 12 बजे खबरों का वक्त हो जाएगा। 12:10 से आप सुनेंगे फिल्मी दोगाने प्रोग्राम होगा मेरे सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम में आज का मौजू है दारा शिको। 12:45 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में आलमी खबरें दिन में 1 बजे नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशो खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। आज सुनिए भजन।

0: सुबगाही प्रोग्राम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे। सरबजीत, अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज यानी 7 जुलाई का जो दिन है वो इतिहास में क्यों दर्ज हो गया।
1: बिल्कुल, इनफैक्ट द मोस्ट यू नो इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ आज सवेरे।
0: तो सबसे पहले अपने श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं साल 1799 में, जब महाराजा रणजीत सिंह ने आज ही के दिन लाहौर पर कब्जा किया।
1: ऑन दिस डे इन द ईयर 1802 द वास्प अ फर्स्ट कॉमिक बुक वॉज पब्लिश्ड इन हडसन इन न्यूयॉर्क।
0: और 1896 में ल्यूमियर ब्रदर्स ने आज ही के दिन बॉम्बे के वॉटसन होटल में जनता को 6 लघु फिल्में दिखाकर भारत की पहली सिनेमा स्क्रीनिंग आयोजित की।
1: 7 जुलाई 1898 द एनेक्सेशन ऑफ हवाई वॉज कम्प्लीटेड एज द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली अनेक्स्ड हवाई थ्रू द न्यू लेंस रेजोल्यूशन। 1928 on this day for the first time sliced bread was sold by the Chillicothe Baking Company Missouri by using the machine invented by Otto Frederick Rohweder. This act is described as the greatest forward step in the baking industry since bread was wrapped.
0: और इसके लगभग 2 साल बाद 1930 में कोलोराडो नदी पर हूवर बांध का निर्माण आधिकारिक तौर पर आज ही के दिन शुरू हुआ। 1948 में आज ही के दिन दामोदर घाटी निगम की स्थापना बाढ़ नियंत्रण सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में की गई।
1: 1978 ऑन दिस डे सोलोमन आइलैंड्स गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड 7 जुलाई 1981 सैंड्रा O'Connor was nominated by Ronald Reagan, becoming the first woman nominated to the U.S. Supreme Court.
0: और 1998 में आज ही के दिन पंडित विश्व मोहन भट्ट को UN द्वारा प्रतिष्ठित अमेरिका के दशक के सबसे प्रशंसित व्यक्ति का सम्मान दिया गया।

श्रोताओं, अब समय हो चला है कुछ विशेष महानुभवों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में बात करने का। वी बिगिन दिस सेगमेंट बाय पेइंग आवर सॉलम ट्रिब्यूट्स टू कैप्टन विक्रम बत्रा, एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी अवॉर्डेड विद द परमवीर चक्र। Captain Batra led one of the toughest operations in mountain warfare in Indian history. Captain Batra died on this day in the year 1999 at the young age of 24 in Kargil, Jammu and Kashmir. Vikram Batra ki shahadat ke baad point 48-75 choti ko Batra top ka naam diya gaya. Unhe unki bahaduri ke karan Sher Shah ke naam se bhi bulaya jata tha. Kargil yudh ke hero ke adamya sahas aur veerta ki kahaniyan aaj bhi hamari ragon mein जोश भर देती हैं। उन्होंने युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन का नेतृत्व किया। लिसनर्स, वी आर रिमेम्बरिंग टुडे द ग्रेट वेटरन दिलीप कुमार, actor, writer and film producer. Before we go and delve into any further details about this great man, we'll first hear a song picturized on Dilip Kumar.

दिलीप कुमार ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने 5 दशकों के करियर में अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी और ट्रेजेडी किंग का नाम भी इन्हें मिला। अभिनेता के जरिए निभाए गए दमदार किरदार आज तक नए कलाकारों के लिए अदाकारी का स्कूल माने जाते हैं। इनकी मुख्य फिल्मों में मुगले आजम, देवदास, राम और श्याम, नया दौर, मधुमती, गंगा जमुना, क्रांति, कर्मा और सौदागर शामिल हैं। इन्हें अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामिया स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूरे दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत में पाटाया में मुनक़दा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्राबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे।

0: मुख्तसर गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर वापस लौटा 2026 में पहले जत्थे के अनुभवों से कर रहे हैं। अभी बीते बुधवार को ही पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके 2026 का पहला जत्था भारत वापस लौटाया और इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि यात्रियों का अनुभव कैसा रहा और हमारे संवाददाता दिलीराम दुलाल ने हमें विस्तार से इस संबंध में ये रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं।

0: मानसर यात्रा के दूसरे वर्ष के पहले जत्थे को रवाना करते हुए सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि उन्हें यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है और वे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 5 वर्षों तक स्थगित रही थी, लेकिन पिछले वर्ष फिर से शुरू हुई। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य बताया कि उन्हें पिछले वर्ष भी पहले जत्थे को रवाना करने का अवसर मिला था। राज्यपाल ने कहा कि पहले कुछ गलतफहमियां थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने संबंधों को सामान्य बनाने की आवश्यकता को समझा, जिसके बाद यात्रा फिर से शुरू हो सकी। उन्होंने इस पहल के लिए संबंधित पक्षों और सिक्किम सरकार द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की।
1: मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्हों का आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है। और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूँ। और ये पिछले 5 सालों से जो बंद था, पिछले साल ही शुरू हुआ। और मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला है। देखिए, जब हम अड़ी रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सामने वाले को भी सोचना पड़ता है। कुछ गलतफहमियां पहले हुई, उन्होंने 17 में जो कुछ किया उसके बाद उनको भी नॉर्मल से ध्यान आई, उनको भी सारी बात ध्यान आई, यात्रा पुनः शुरू हुई। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यात्रा के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की।
0: मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे श्रद्धालु नथुला सीमा पहुँचे, जहाँ एसटीडीसी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आवेदन और सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताएं पूरा होने के बाद उन्हें सिक्किम के नेशनलाइज ट्रांसपोर्ट अर्थात SLT की बसों से सुरक्षित गंतव्य पहुंचाया गया। शाम को सिक्किम सरकार की ओर से एसटीडीसी ने एक सामान्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को यात्रा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु सर्वज्ञ मीना ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पूरी यात्रा बेहद सुचारू रही। उन्होंने सिक्किम सरकार और एसटीडीसी द्वारा पूरी यात्रा के दौरान उपलब्ध कराई गई उत्कृष्ट सुविधाओं और आतिथ्य की सराहना की।
2: दिस इज सर्विक मीना फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 फ्रॉम नाथुला पास रूट। ऑन 1st of July आवर एंटायर बैच ऑफ 48 यात्रीज इंक्लूसिव ऑफ 4 सपोर्टिंग स्टाफ रिटर्न बैक टू इंडिया वेयर नाथुला pass after successful completion of the holy Kailash Mansarovar parikrama. The entire arrangement, whether procedural or logistical, from the government of India and its agencies like Ministry of External Affairs, Indo-Tibetan Border Police and Sikkim government, was seamless and hassle-free, and the same continues even after crossing over to the China, wherein issues like stay, travel and food were well taken care of by the guides appointed by the Chinese side. Though certain issues like availability of hygienic washrooms during parikrama mark and few instances of undue restrictions imposed on Indian pilgrims warrants further government attention. But overall, the government of India in collaboration with UP government and Sikkim government did extraordinarily well in organizing this yatra. Moreover, I do feel fortunate enough to get selected in the batch first of the year 2026 for this holy journey and blessed enough to successfully complete it. Further, I extend my warm wishes towards all the fortunate people who have been selected for the yatra this year, especially cause 2026 is the year of the fire horse according to the Chinese zodiac, and as per the popular belief, a single parikrama done during a horse year is accounted for 13 times. With this feeling of gratitude, once again I extend my heartiest thanks to the Modi ji government of India on behalf of the entire batch 1 and upcoming batches undertaking this yatra of highest spiritual awakening.
0: Sardalu aur sampark adhikariyon ne Nayi Delhi se Nathula aur wapasi tak STDC dwara kiye gaye samanvay, parivahan, awas, swachh bhojan aur samarpit sevaon ki prashansa ki. Unhone सुरक्षित और सफल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सिक्किम सरकार, विदेश मंत्रालय, आईटीबीपी तथा सभी संबंधित विभागों का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतक से मैं मोहिनाथ चटर्जी के साथ दिलीराम दुलाल।

चुनाव पूर्वोत्तर भारत कला और संस्कृति का एक बहुत मिला जुला रूप प्रस्तुत करता है और त्रिपुरा में भी कई सांस्कृतिक समारोहों का समय समय पर आयोजन होता रहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के अवसर पर इस बार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य ने हमें विशेष रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर किस तरह से सांस्कृतिक संस्थाएं विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।

আগরতলা মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী জয়ন্তী কে আয়োজন কে বাত হো তো সবসে পহলে চন্দনীর কা নাম সামনে আতা হ্যায়। কই দশকোঁ সে ইয়ে সংস্থা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন পরিসর মে সুবহ কী কাব্য ওর সঙ্গীত প্রস্তুতিও কে জরিয়ে শহর কী সাংস্কৃতিক পহচান কা হিসা বনি হুই হ্যায়। दशक के मध्य में कुछ युवा संस्कृति प्रेमियों ने इस संस्था की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक चंदनी साहित्य संगीत और कला के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं के साथ साथ अब संस्था ने महान कवि और संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम की रचनाओं को भी अपने कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया है। हर वर्ष आयोजित होने वाला सृजन छंदे नजरुल कार्यक्रम अब नजरुल की रचनाओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस वर्ष उसकी खास बात रही प्रसिद्ध गायक राघव चटर्जी की मौजूदगी, जिन्होंने मुख्य अतिथि और

कार्यशाला के मार्गदर्शक के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम के तहत दो दिन तक एक संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न आयु वर्ग और पृष्ठभूमि के नजरुल प्रेमियों ने भाग लिया।

0: कार्यशाला में नजरुल गीति की बारीकियों, सुर, ताल, भाव और प्रस्तुति की शैली पर विस्तार से चर्चा की गई। गीतों और संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों को नजरुल के संगीत को गहराई से समझने का अवसर मिला।
1: सर, इनक्रेडिबली ग्रेटफुल टू राघव चट्टोपाध्याय फॉर हिज स्पेयरिंग द टाइम फॉर दिस वर्कशॉप व्हिच वाज एन एक्सेप्शनल वन फॉर द लर्नर्स ऑफ आवर स्ट्रीट। हिज प्रोफाउंड नॉलेज, पेशेंस एंड मास्टरफुल एग्जीक्यूशन लेफ्ट एन इनक्रेडिबल मार्क ऑन ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थ्रू हिज गाइडेंस द अटेंडीज डिड नॉट जस्ट लर्न द टेक्निकल पार्ट ऑफ द सॉन्ग्स बट ऑल्सो गेन्ड डीपर इमोशनल कनेक्शन टू काजी नजरुल इस्लाम।
0: कार्यशाला मुख्य कार्यक्रम की एक सुंदर शुरुआत साबित हुई। नजरुल के गीतों से सजे इस आयोजन में सीखने और प्रस्तुति का सुंदर मेल देखने को मिला। प्रतिभागी नए अनुभव, नई प्रेरणा और नजरुल के संगीत से और अधिक जुड़ाव के साथ उठे। प्रसिद्ध गायक और कार्यशाला के मार्गदर्शक राघव चटर्जी ने भी अगरतला आकर प्रतिभागियों के साथ समय बिताने को एक यादगार अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि नजरुल के संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उसकी विरासत को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है।
2: This time I gave him a workshop on Kalima Pisan and also a performance. This is for the one of the next person to be amazing and inspiration. Along with all India's middle-age and also aged senior artists are there. And so many of these visited. Always organize a different kind of musical workshop. Maybe with Rabindranath Tagore, maybe with Judista, maybe with Sri Chaturvedi, maybe with modern songs or Indian classical musicals. It's a very young organization, a very quality organization, and a lot of good people, good listeners, good musicians, good singers is associated with it.
0: नजरुल इस्लाम बंगाली और भारतीय साहित्य तथा संगीत के दो महान स्तंभ है। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और समय की सीमाओं से परे अपनी पहचान बनाए हुए है। इन दोनों महान साहित्यकारों और संगीतकारों की रचनाओं से प्रेरणा लेकर छंदनी लगातार अपनी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ा रही है। सृजन छंद नजरुल जैसे कार्यक्रम के माध्यम से संस्था न केवल महान कवि को श्रद्धांजलि देती है बल्कि कला सीखने और सांस्कृतिक संवाद का एक सशक्त मंच भी तैयार करती है। गर्मी के मौसम में ऐसे सांस्कृतिक आयोजन ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस होते हैं। इनमें संगीत, कविता, लय और रचनात्मकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यदि त्रिपुरा की सांस्कृतिक दुनिया में रविन्द्रनाथ ठाकुर उगते हुए सूरज की तरह है तो काजी नजरुल इस्लाम पहली मनसूनी बारिश की तरह है जो अपने साथ संगीत, प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आते हैं। श्रोताओं और प्रतिभागियों के लिए सृजन छंद नजरुल ये संदेश देता है कि महान कला केवल किताबों और गीतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि लोगों की साझी सांस्कृतिक चेतना और परंपरा में हमेशा जीवित रहती है। डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य, आकाशवाणी अगरतला।
3: मन की बात के संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड में महिलाओं की खेल प्रतिभाओं की सराहना की और विशेष तौर पर फुटबॉल की दो विशेष लीग का उन्होंने उल्लेख किया जिसमें महिलाएं फुटबॉल में अपनी प्रतिभा दर्शा रही हैं। और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ये भी कहा कि दूसरे राज्यों को भी नागालैंड की तरह जिस तरह से महिलाएं खेलों में अपना प्रतिभा निभा रही हैं उस तरह से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आइए हमारे संवाददाता असुनो ने इस संबंध में ये रिपोर्ट भेजी है, सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून को प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड में नागालैंड की दो महत्वपूर्ण फुटबॉल टीमों नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहले बच्चों में खेल प्रतिभा को निखारने और महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नागालैंड में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागालैंड बेबी लीग केवल एक
4: फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है बल्कि ये बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यानी 5 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से फिट रखना, टीम भावना विकसित करना और फुटबॉल में बेहतर प्रशिक्षण देना है। पिछले 3 वर्षों में इस लीग ने राज्य के कई लड़के लड़कियों को अपने फुटबॉल प्रतिभा दिखाने और बेहतर कोचिंग पाने का अवसर दिया है।
5: मुझे नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।
4: प्रधानमंत्री ने नागालैंड महिला फुटबॉल लीग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये लीग महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक अच्छा मंच दे रही है। उन्होंने बताया कि फुटबॉल का 5 खिलाड़ियों वाला तेज गति से खेला जाने वाला इंडोर खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को तेजी से फैसले लेने और बेहतर तकनीकी कौशल की जरूरत होती है। यही युवा महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दे रही है।
5: साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूँ, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की वुमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूँ। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं।
4: प्रधानमंत्री की सराहना से नागालैंड में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे राज्य के अधिक से अधिक युवा खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से अर्सुनियो की रिपोर्ट के साथ शक्ति सिंह।

मेघालय में नशा मुक्ति की एक विशेष पहल से बहुत सी जिंदगियां संवर रही है। ड्रीम मिशन के तहत कई समुदाय, सरकारी विभाग और गैर सरकारी संगठन और नशे की लत से मुक्त हो चुके लोग मिलकर इस विशेष अभियान को चला रहे हैं, जिसमें नशा मुक्ति पर विशेष जोर है और नशा मुक्त होने के बाद सामाजिक पुनर्वास पर इसमें खास जोर दिया गया है। तो हमारे शिलांग संवाददाता की इस रिपोर्ट में ड्रीम मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। नशे की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया ड्रीम मिशन अब एक सफल पहल के रूप में उभर रहा है। इस अभियान में स्थानीय समुदाय, सरकारी विभाग और नशे की लत से बाहर आ चुके लोग मिलकर नशे के सेवन और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाल ही में शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी निषेध दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इस अवसर पर ड्रीम मिशन के सकारात्मक परिणामों को सामने रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि ड्रीम मिशन की शुरुआत सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर नशे के खिलाफ संयुक्त प्रयास कर

के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मिशन ने साबित किया है कि जब समुदाय नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास में सक्रिय भागीदारी करता है तो स्थायी और सकारात्मक बदलाव संभव होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रीम मिशन ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल सरकार के प्रयासों से नशे की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसके लिए समाज और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने मिशन के तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सलेंस का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र लोगों में सकारात्मक व्यवहार विकसित करने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से बाहर निकल रहे लोगों को सामान्य जीवन में लौटने में सहायता कर रहा है। सामाजिक कल्याण सलाहकार पॉल लिंगदोह ने कहा कि ड्रीम मिशन ने मेघालय को नशे की समस्या से निपटने के लिए स्पष्ट योजना और दिशा दी है। उन्होंने बताया कि इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक विभिन्न विभागों जैसे सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और गृह विभाग, पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इससे नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रास रूट्स म्यूजिक प्रोग्राम और राज्य भर में फुटसल मैदानों, युवाओं को खेल तथा संगीत जैसी सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने में मदद की है। पॉल लिंगदो ने बताया कि जो इलाके पहले मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावित थे, वहां अब गांवों की सुरक्षा समितियां और स्थानीय लोग पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने लोअर मॉकप्रेम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कई ऐसे युवा जो पहले नशे और उससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे, वे अब खेल और अन्य रचनात्मक कार्यों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव ड्रीम मिशन के लगातार प्रयासों और सामुदायिक प्रयासों का परिणाम है। नशे की लत से उबर चुके लोगों के प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मेघालय ड्रग यूजर्स फोरम के अध्यक्ष बैरी एल खार मालकी ने कहा कि ड्रीम मिशन ने नशा छोड़ चुके लोगों को नई उम्मीद, सम्मान और दोबारा बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया है। उन्होंने नशे से उबर रहे लोगों के लिए प्रस्तावित हाफ वे होम को सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे HIV, ट्यूबरक्लोसिस, TB, हेपेटाइटिस सी के इलाज तथा हार्म रिडक्शन के उपायों पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बैरी खार मालकी ने कहा कि ड्रीम मिशन के तहत मेघालय के प्रयासों को अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है और ये देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन रहा है। आज मेघालय में स्थानीय समुदाय नशे के खिलाफ अभियान में पहले से अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ड्रीम मिशन के कारण बड़ी संख्या में लोग नशे की लत से बाहर निकल रहे हैं और अधिक से अधिक गांव तथा समुदाय इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसी वजह से ये मिशन एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक सफल मॉडल बनकर उभर रहा है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।

0: इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत कार्य चल रहा है और इसी सिलसिले में हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक विशेष दौरा किया जिसमें बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाल लिया गया। तो आइए हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा की इस रिपोर्ट में इस संबंध में विस्तार से जानते हैं।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर और ईस्ट सियांग जिलों के बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। प्रतिनिधिमंडल ने कई पान्योर जिले के निपको क्षेत्र तथा ईस्ट सियांग जिले के बोइंग गांव सहित सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना, कृषि भूमि और निजी संपत्तियों का निरीक्षण किया तथा घर, पशुधन और आजीविका खो चुके प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि केंद्र और राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ा है तथा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशासन द्वारा संचालित राहत कार्यों की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री का वितरण, आपातकालीन चिकित्सा शिविरों की स्थापना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही आवासों की पुनर्निर्माण सहायता तथा किसानों का मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए नुकसान का विस्तृत आकलन भी किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा है कि सरकार की तत्काल प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा, सम्मान और आवश्यक जरूरतों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हर संभव सहयोग देने का

0: द्वारा सा दिला है। श्री रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्य असम में इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण व्यापक तबाही हुई है। उन्होंने पुनर्वास और क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राहत कार्य में केंद्र सरकार की तुरंत पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने, क्षतिग्रस्त अवसंरचना को बहाल करने और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
2: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

इसकी पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेंत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला के अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का हुजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जैन महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य और रोवा वन्य जीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेवा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुल चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन है। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेज और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल है। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी

0: युद्ध बनाते हैं। खारची पूजा जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
1: उम्मीद है आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। पूर्वोत्तर डायरी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले सप्ताह फिर एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमें अनुमति दें, नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। संकलन व आलेख कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और रेडियो फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेशा खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: जम के भैया मोहे लाली जुनर मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: क्या चाल है तोरी
0: जरा झूम ले गोरी।

0: आयु राधे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे।
1: दिलीप साहब की बात करें सामईन, तो अपनी मुनफरिद अदाकारी, गहरी जज्बाती कैफियत और किरदार में, यानी जो भी वो एक्ट करते थे, जो भी कैरेक्टर निभाते थे, उसमें मुकम्मल तौर पर ढल जाने की जो उनकी सलाहियत थी, उसके बायस ही उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा था। वो अपने किरदारों की नफसियात को समझते थे और हर मंजर को इस कदर हकीकत के करीब पेश करते थे कि जो फिल्म देखने वाले हुआ करते थे वो खुद को उस कैरेक्टर का हिस्सा ही महसूस करने लगते थे, यानी उन्हें लगता था कि ये तो हम ही हैं कहीं न कहीं। उनकी अदाकारी ने न सिर्फ अपने दौर के फनकारों को मुतासिर किया बल्कि बाद की नस्लों के अजीम अदाकार भी उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। उनकी फनी सलाहियत की बात करें, मुकालमा अदा करने का अंदाज यानी डायलॉग डिलीवरी, उनके चेहरे के तासुरात या फिर खामोशी में भी जज्बात का किस तरह इजहार कर दिया जाता है, ये जो सलाहियत थी ना, ये तमाम की तमाम चीजें उन्हें अपने हम असरों से मुमताज बनाती थी। यानी उनके साथ साथ जो दूसरे अदाकार भी थे उनसे थोड़ी सी अवलियत उनको मिल जाया करती थी।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। हमने याद किया आज दिलीप साहब को और अब हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं पर एक फीचर, शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार, तारी जनाब इदरीस अहमद खान की है।
1: दिल तड़प तड़प कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा।
2: मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे धोखा कैसे दे सकता, मगर मुझे जिंदा रहना है। मैं अंजू के बगैर नहीं जी सकता, मैं अपने हाथों अपनी जिंदगी नहीं मिटा सकता।

आप सोच रही होंगी कि मैं कितना झूठा हूँ, किस चालाकी से मैंने बिहारी बाबू को डाल दिया। मैं कभी तो घड़ी दो घड़ी आपसे बैठकर बात करने का मौका

खूबसूरत छोकरी को देख के तो साला भगवान लोग भी फिसल जाता है। हम तो फिर भी आदमी है और अपने मुंह से बोलता है हाँ सही ना बुरा काम किया।

0: हम एक लाडले बेटे के शरीफ बाप जरूर हैं, मगर हम शहनशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते।
1: तकदीरें बदल जाती, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहनशाह बदल जाती है, और इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता।

में गुस्सा पाया जाता था, लेकिन सुबह सड़क के इलाकों में हालात और खराब थे। वह अक्सर अंग्रेजों और पठानों के बीच झड़पें होती रहती थी। ऐसे पुराशोक दौर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पेशावर शहर में 11 दिसंबर सन 1924 को गुलाम सरवर खान के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम रखा गया मोहम्मद यूसुफ खान। लेकिन घर के सभी लोग उसे लाले के नाम से

0: पेशावर में लाले का खानदान फलों की तिजारत करता था और उनका कारोबार पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। गुलाम सरवर खान कारोबार के सिलसिले में मुंबई में ही रहने लगे थे, लेकिन लाले के दादा पुराने मिजाज के इंसान थे और नहीं चाहते थे कि उनकी बहू और 12 पोते पोतियां मुंबई जाकर रहीं।
1: एक बार पेशावर वापस आकर गुलाम सरवर खान ने अपने वालिद को बताया।

0: कि कैसे उन्होंने लाला की उम्र के एक पारसी बच्चे को लाला समझकर गोद में उठा लिया था। उसकी आया ने हंगामा कर दिया कि ये पठान तो मेरे बच्चे को अगवा करना चाहता है। गुलाम सरवर खान ने आया से कहा, डरो मत, इस बच्चे को देखकर मुझे अपने बच्चे लाले की याद आ गई जो पेशावर में रहता है। आया ने उनसे कहा, अगर ऐसा है तो तुम अपने बच्चे को मुंबई ले आओ।
1: लाले के दादा ने ये सुनकर अपनी आंखें पोंछी और गुलाम सरवर खान की बीवी बच्चों को मुंबई जाने की इजाजत दे दी।
0: इस तरह लाले का खानदान मुंबई आ गया, जहां लाले ने अंजुमन इस्लाम स्कूल से मैट्रिक किया और खालसा कॉलेज से बीएससी की डिग्री।

0: मीटिंग्स में उन्होंने कई जगहों पर तहरीरों तकरीरों से अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था।
1: मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, लेकिन आपका मुजरिम नहीं। मुजरिम हूँ मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूँ, जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है, कहता है धिक्कार है तुम पर सांगा, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके, अब तक अपने महाराज की मौत का बदला नहीं ले सके, उन बच्चों की मौत का बदला नहीं ले सके जिन्होंने अपनी माओ की कोख में ही दम तोड़ दिया था।
2: कौन से बच्चे, कौन से बाप, किसकी बात कर रहे हो तुम?
1: अलग की बेगमात से लेकर गरीब किसानों की बहु बेटियां, पर्दों में रहने वाले शरीफ जादियों की बात करता हूं, जिनको फिरंगी दरिंदे खींच कर बाजारों के चौराहों पर लाए, उनको बेआबू किया और अपनी हरिश का शिकार बनाया।
3: उन लोगों ने हमारे मंदिरों की बलि ली, हमारी मस्जिदों को शहीद किया,
1: और ये घोर पाप सिर्फ हमारी कौम हमारी सभ्यता को कुचलने के लिए, इस देश पर हुकूमत करने के लिए।
0: कहा जाता है कि एक बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और बड़ौदा जेल में रखा गया, जहां मौलाना आजाद भी कैद थे। जेल से यूसुफ खान को कमसिनी के बायस छोड़ तो दिया गया, लेकिन कदम कदम पर खुफिया महकमे के लोग हर काम में अड़चने डालने लगे। उसने इत्तेफाक है कि इसी दौरान उस जमाने की मशहूर अदाकारा देविका रानी ने यूसुफ खान को एक दोस्त के साथ देखा और पहली नजर में उन्होंने यूसुफ खान में छुपे जौहर को पहचान लिया। लेकिन देविका रानी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि यूसुफ खान ने बॉम्बे टाकीज की नई फिल्म में काम करने की उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। ये वो जमाना था जब दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों के बायस पूरी दुनिया इक्तसादी बहरान का शिकार थी। यूसुफ खान के खानदान को भी माली दिक्कतों का सामना था। देविका रानी ने यूसुफ को 500 रुपए महीने की नौकरी की पेशकश की, यह भी वादा किया कि हर साल 200 रुपए बढ़ा के दिए जाते रहेंगे।
4: कोई और रास्ता ना देख, यूसुफ खान ने खानदान की किफालत के चलते बॉम्बे टाकीज की नौकरी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन अपने वालिद गुलाम सबर खान को फिल्मों जैसे गिरे हुए काम के बारे में बताने की हिम्मत न कर सके।
0: देविका रानी की तजवीज पर यूसुफ खान ने फिल्मों के लिए नाम बदलने का फैसला किया। हिंदी के नामवर अदीब भगवती चरण वर्मा का दिया नाम दिलीप कुमार देविका रानी को पसंद आ गया।
5: पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। मेरे वालिद क़िबला मरहूम अल्लाह उनको बख्शे वो फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे। मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो तनकीद और वो पठान आदमी से गुस्सा और तबीयत थी, उनकी खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज बहुत होगी, और उस वक्त दो तीन नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए, तो मैंने अपनी जाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए। तो बाद में कुछ कोई दो तीन महीने के बाद जब मैंने अपना खुद इश्तेहार में नाम देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार का तजवीज किया गया।
4: इसके बाद अमीय चक्रवर्ती की तरबियत और हिदायत में यूसुफ खान ने अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा में काम करना शुरू किया। तजारती एतबार से ये फिल्म ज्यादा नहीं कमा सकी, लेकिन दिलीप कुमार के काम को इसमें पसंद किया गया और अगले ही महीने उन्हें एक और फिल्म प्रतिभा में ले लिया गया। जल्द ही उन्हें घर की इज्जत और मिलन जैसी फिल्मों के लिए भी साइन कर लिया गया।
0: सन 1946 में जब आजादी की जद्दोजहद अपने शबाब पर थी,

0: दिलीप कुमार रमेश सहगल की फिल्म शहीद में बिल्कुल ऐसा ही किरदार निभा रहे थे। ये फिल्म उनकी जिंदगी की पहली कामयाबी साबित हुई और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के खानदानों में पेशावर के दौर से ही करीबी ताल्लुकात थे। गुलाम सरबर खान पृथ्वीराज कपूर के वालिद दीवान बशेश्वर नाथ को छेड़ते थे कि आपका बेटा तो भान बन गया है, थिएटर में नाचता गाता है। एक दिन बशेश्वर नाथ खुशी खुशी मिठाई का डिब्बा लेकर गुलाम सरवर खान के पास आए और कहा, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा भी भांड हो गया, फिल्मों में तुम्हारा नाम ऊंचा कर रहा है। गुलाम सरवर खान कुछ नहीं बोले, यहां तक कि घर आकर भी यूसुफ से कुछ न कहा, लेकिन इस खामोशी के पीछे नाराजगी का तूफान छुपा था। जब बिलाखिर फिल्म मेला की नुमाइश पर आकर खत्म हुआ, जब सरवर खान ने पहली मर्तबा अपने बेटे के काम को पर्दासीनी पर देखा और उसे पसंद भी किया।
0: कहा जाता है कि नितिन बोस, महबूब और बिमल रॉय जैसे उस्तादों ने दिलीप कुमार के फन को सजाया संवारा और जल्द ही शहंशाह जज्बात और ट्रेजेडी किंग जैसे खिताब उनकी पहचान बन गए।
2: तुम्हें यहूदी मजहब कबूल करना होगा, नापाक रोमन सहन्ना की शादी नहीं की जाएगी।
3: मुझे इनकार है इस नापाक तिजारत से, मोहब्बत के इस झूठे इम्तिहान से जो मजहब की कसौटी पे लिया जा रहा है।
2: दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से पने भी रोमन, अगर तू जिंदगी चाहता है तो आइंदा मेरे घर की दहलीज पर अपने मनुष्य कदम रखने की कोशिश न करना।
3: मोहब्बत के इस धारे को आप नहीं रोक सकते मेरे अनजान बुजुर्ग, ये मजहब की खोखली दीवारों को तोड़कर निकल जाएगा।
1: सच तो ये है कि 40 के दहे में जंगे अजीम की तबाही बर्बादी और मुल्क की तकसीम की खूनरेजियों के बायस हिंदुस्तानी समाज में मायूसी और गमजदगी गालिब थी, जिसका तख्लीकी इजहार अवाम को दिलीप कुमार की जज्बात निगारी में मिला और इस तरह वो हर दर्दमंद दिल की धड़कन बन गए।
4: अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैदखाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरे।
5: अगर दिल्ली लाही को मेरे फैसले से इनकार है तो वो समझ ले बगावत हो चुकी।
0: हिंदुस्तानी नाजरीन ने उनसे पहले इतनी शिद्दत एहसास वाला कोई भी फनकार नहीं देखा था।
6: ओ भाई साहब, गाड़ियों का भाई, गाड़ियों का भाई, भाई, भाई। अरे साहब, ये सब गाड़ियों को, गाड़ियों को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई, ए भाई साहब।
7: हाँ, थोड़ी देर हिम्मत कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ सुधा।
6: ए भाई साहब, अरे गाड़ियों को भाई, गाड़ियों को, अरे इधर देखो क्या हो रहा है भाई, अरे पूरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे।
0: दिलीप कुमार ने अपने काम से बार बार ये साबित किया कि जज्बात की गहराई अल्फाज की मोहताज नहीं होती। खामोश रहते हुए भी दिल में छुपे एहसासात को देखने वालों के दिलों में पहुंचाया जा सकता है।
8: जो चीज इंसान के पास कम होती है वो कीमती होती है, और वक्त तुम्हारे पास कम है जेके वर्मा। अगर ये धंधे बंद न हुए तो बहुत जल्द तुम अपने आप को कैदखाने की सलाखों के पीछे पाओगे। मैंने यही वार्निंग देने के लिए तुम्हें यहां बुलाया था, तुम जा सकते हो।
1: बताया जाता है कि देवदास के किरदार को दिलीप कुमार ने इतनी गहराई से जज्ब कर लिया था कि उससे बाहर निकलने के लिए एक साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई, और बाद में माहिर नफ्सियात की राय से उन्होंने कई हल्की फुल्की तफरीही फिल्में भी की, जैसे कोहिनूर, आजाद, गंगा जमुना और राम और श्याम।

0: ऐसी ही कुछ फिल्में हैं।
1: सब सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। क्या बजी रो रही है मेरे भाई से मोरे?
2: चल चल अपना रास्ता पकड़।
1: अरे रास्ते की बच्ची, खुपड़िया काट के तले हुआ मैं फेंक दूंगा जो मेरे भाई से लगाई बुझाई की। तो हाँ ए मुन्ना, अरे तू एक ही बात बनाना भैया, बहुत फसा दी औरत है। अरे देख, हम तो तेरे लिए ये फाउंटेन लावा की खातिर बाजार गए रहे, हमसे तो सकल ही ना ही देखा भैया, तू तो हमारा मिजाज जानती है।
2: अरे ओ बेईमान, वो बीच रास्ता में धक्का देखे कौन का बोझा गिरा रहा तू?
1: अब बोझा गिरा दिया तो कौन ऐसी खराबी हो गई, कौन आफत आई गई? हाँ देखा मुन्ना, अरे इतनी सी बात का बतंगा बना के रो रही है सुधरी। ठुसुर ठुसुर ठुसुर।
2: अरे बस रहा दियो, तुम और हम का रुलाई हो? अरे तुम जैसन का तुम रुलाई रुलाई के माटी फेटाई दे।
1: देखो धन्नो रानी, ज्यादा मुंह न लगो हमरे समझी, तो दई हूँ एक लप्पड़ और जाके गिरी हो दूसरे गाँव में।
0: फिल्मी नाकदीन का कहना है कि जिस तरह जंग अजीम और तकसीम की बर्बादियों से गमजदा समाज को दिलीप कुमार की जज्बात निगारी में तख्लीकी तस्कीन मिली, इसी तरह पंडित नेहरू के अहद हुकूमत में दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर ने एक अलामती नए दौर की शुरुआत की।

0: मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खिदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्जाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पताया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पहलवानों ने मजमुई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तिलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डल्लास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल माइकल मरीनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। दूसरी जानिब बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमरीका को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ वफद की सतह की बातचीत की। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। वजीर खारजा डॉ अजीज शंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा ने दो तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रिडिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेशा खदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

कोहिनूर फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। ये है मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले, फिल्म है दिल दिया दर्द लिया।

0: अब सुन रही हैं फिल्मी दो गाने प्रोग्राम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम जारी है, वक्त हो गया है तारीख साज। प्रोग्राम का आज का मौजू है दारा शिकोह।
1: कुछ शख्सियतें तारीख पर

बैठता था और खानकाहों और मठों में यकसा अकीदत के साथ हाजिरी देता था। सूफिया में उसके ताल्लुकात हजरत शाह मुहिबुल्लाह अलाहाबादी से भी बहुत अकीदतमंदाना थे। शाह साहब अकीदा वहदतुल वजूद के बहुत बड़े मुबल्लिग थे और उन्हें शेख अकबर इब्ने अरबी का सानी कहा जाता था। उन्होंने इब्ने अरबी की तसानीफ की शरहें भी लिखी थी। बारिश को मुख्तलिफ औकात में गुजरात, मुल्तान, बिहार वगैरह सूबों का गवर्नर रहा, मगर सन 1645 ईस्वी में जब उसे अलाहाबाद का सूबेदार बनाया गया तो उसने हजरत शाह मुहिबुल्लाह अलाहाबादी को एक खत में लिखा था कि मुझे अलाहाबाद आने की खुशी इसलिए है कि ये शहर आपका मस्कन है। वो शाहजाद से खत खिताबत भी रखता था। उनके खतूत अक्सर इल्मी और फलसफियाना मुबाहिस पर मुश्तमिल होते थे। एक खत में उसने शाहजाद से दरियाफ्त किया कि हुकूमत के मामलात में क्या हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इम्तियाज करना जायज है। शाहजाद ने जवाब में लिखा कि हिंदू मुसलमान सब अल्लाह की मखलूक हैं, हाकिमों को अवाम की भलाई और रफा पर नजर रखनी चाहिए। शाह साहब का सन 1648 ईस्वी में विसाल हो गया तो दारा शिको उनके मुमताज खलीफा हजरत शाह मोहम्मदी फैयाज की खिदमत में अदब से हाजिरी देता रहा। इसकी पादाश में औरंगजेब ने हजरत शाह मोहम्मदी को पहले कलाए ग्वालियर में और फिर औरंगाबाद में कैद रखा। कैद ही में शाह मोहम्मदी का इंतकाल हुआ और उनकी लाश आगरा लाकर दफन कर दी गई। हजरत शाह मोहम्मदी के खलीफा शाह कुहरुद्दीन थे, जिन्होंने 12 साल तक अयोध्या में रहकर संस्कृत उलूम सीखे थे। उन्होंने वेदांत के मौजू पर संस्कृत में किताब सद सरोवर लिखी थी और दूसरी किताब फलसफा तसव्वुफ पर मकासिदुल आरिफीन तस्नीफ की, जो चंद साल कबल अरबिक एंड पर्शियन इंस्टीट्यूट टोंक से शाया हो चुकी है। लाहौर के हजरत मियां मीर और मुल्ला शाह बदख्शी से भी दारा शिकोह के ताल्लुकात बहुत अकीदतमंदाना थे। वो सन 1640 में मुल्ला शाह का मुरीद भी हो गया था। सरमद भी उसके जमाने में दिल्ली में जिंदा थे और दारा शिकोह उनसे भी मिलता था। एक कबीरपंथी संत बाबा लाल दास बैरागी से मसाइल तसव्वुफ पर गुफ्तगू होती थी। इनके मुकालमे मुंशी चंद्रभान ब्राह्मण ने एक मुख्तसर रिसाले में जमा किए हैं, जिसके कलमी नुस्खे हमारे कुतुब खानों में महफूज हैं। दारा शिकोह नहायत रचा हुआ इल्मी शौक रखता था। उसकी जाती लाइब्रेरी उस वक्त की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें हर इल्म फन की लाखों किताबें थीं। इस कुतुब खाने की शानदार इमारत उसने जमुना के किनारे बनवाई थी, जिसका थोड़ा सा हिस्सा आज भी कश्मीरी गेट पर मौजूद है। वो तस्नीफ तारीफ का भी शौक रखता था। सन 1640 में उसने सफीनतुल औलिया लिखी, जो हिंदुस्तान के अलावा ईरान में भी छप चुकी है। हजरत मियां मीर लाहौरी और उनके खुलाफा के ख्यालात और मलफूजात पर मुश्तमिल किताब सफीनतुल औलिया सन 1642 ईस्वी में लिखी। मगर दारा शिकोह की सबसे अहम और काबिल कदर किताबें दो हैं, एक मजमौल बहरीन और दूसरी सिर अकबर। मजमौल बहरीन में उसने इस्लामी तसव्वुफ और वेदांत का तकाबुली मुतालिया करके दोनों के मुश्तरक अनासिर पर आलिमाना गुफ्तगू की है। ये किताब इस काबिल है कि हमारी यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल की जाए। दूसरी किताब यानी सिर्रे अकबर उपनिषदों का फारसी तर्जुमा है, जो दारा ने वेदांत के आलिमों, पंडितों, सन्यासियों और योगियों की मदद से 6 माह में तैयार किया था। इसमें 50 उपनिषदों का

वही सन 1658 ईस्वी में आगरा से 8 मील के फासले पर समूगढ़ के मैदान में दारा शिको और औरंगजेब की फैसला कुन जंग हुई, जिसमें दारा को शिकस्त का सामना हुआ और वो ईरानी हुकूमत से मदद लेने के लिए रवाना हुआ, मगर कंधार के अफगान सरदार मलिक जीवन ने उसे कैद करके दिल्ली भिजवा दिया, जहां जब उसे कैदी के हुलिये में एक हाथी पर बैठाकर शहर में निकाला गया तो सारी रियाया बिलक बिलक

0: आप हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, ये तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं?
1: देखिए, तीनों ही देश और खासतौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का जो पहला चरण है इंडोनेशिया की यात्रा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक जो महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच में जो संबंध है, उनकी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, तब से लेकर के अभी तक खासी प्रगति दोनों देशों के बीच में हुई है। हमें मालूम है कि पिछले ही साल 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और राष्ट्रपति प्रबोवो की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से उसकी जहां तक महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के अपनी एक जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के और अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडोनेशिया की यात्रा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीजी के निमंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हमें पता है कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है ओशानिया या पैसिफिक आइलैंड के क्षेत्र में, दक्षिण इंडियन ओशन के क्षेत्र में, और वहां पर एक दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं, और इस लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को लेकर के दोनों ही देश का जो नजरिया है वो एक जैसा है, और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे, और इस बात को लेकर के दोनों ही देशों में डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लगातार डायलॉग्स और एक्सचेंजेस भी होते रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर भारत, ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश कैनेडा के साथ भी और जापान के साथ भी मिलकर के तमाम तरीके के ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स की भी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार समझौता होने के बारे में भी काफी बातें चल रही हैं, तो उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। और तीसरा

0: जापान या इंडोनेशिया की जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें बड़ी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के चलते आसियान की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक का आउटलुक है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें बहुत सारी समानताएं भारत के इंडो पैसिफिक विजन से या महासागर विजन से। तो क्योंकि इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़े लेवल पर एक कंसेंसस है, और इस कंसेंसस के साथ साथ इन देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, और यही मुझे लगता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और यही इन देशों की भूमिका है इंडो पैसिफिक को लेकर।
1: इस दौरे में व्यापार, निवेश, शिक्षा या फिर नवाचार और कई सारी नई तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत को क्या प्रमुख लाभ मिल सकते हैं, इस पर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं।
0: देखिए, भारत के साथ तमाम देशों के, भारत के साथ इंडोनेशिया का जहां तक सवाल है व्यापार और निवेश का, ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी व्यापार को खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, और सर्विसेज सेक्टर में भारत की अपनी जो क्वालिटीज है उसको इंडोनेशिया तक पहुंचाना।

0: में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भारत ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा साझेदार माना है और ये कोशिश की है कि न्यूजीलैंड का भारत में निवेश हो, निवेश भारत में हुआ भी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी $3 बिलियन भी नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, ये भारत की कोशिश है और मुझे लगता है इस पर भी काम इस यात्रा के दौरान होगा।
1: प्रधानमंत्री की जो तीनों देशों की यात्रा है उसमें उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, संस्कृति और वैश्विक छवि को मजबूत करने में किस तरह से योगदान देते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये समुदाय से जो उनका ये मुलाकात होगा वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारतवंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारतवंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान वो उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारतवंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारतवंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहां हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शियरी एजुकेशन में, MA या प्रोफेशनल कोर्सेज या PhD के लिए जाते हैं, और जो वहां पर सर्विसेज सेक्टर में भारत के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ डायस्पोरा के जो तमाम लोग हैं जिनकी एक अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। न्यूजीलैंड में भी अब भारतीयों और भारतवंशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सर्विसेज सेक्टर में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। भारतवंशियों की भी अब संख्या बढ़ रही है क्योंकि तमाम भारतीयों, खासतौर से पंजाब जैसे प्रदेशों से तमाम भारतीय न्यूजीलैंड में जाकर माइग्रेट हो गए और वहां सेटल हो गए, तो उनको भी समझने और उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश होगी। डायस्पोरा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में एक बहुत अहम स्तंभ रहा है और कितनी इसको इम्पोर्टेंस इस भारतीय विदेश नीति में आज दी जा रही है, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम इन तीनों देशों में जो संबोधन होंगे उनसे ये ज्यादा स्पष्ट होगा।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है तीनों देशों की, ये कितनी महत्वपूर्ण है और ये विकसित भारत का लक्ष्य पाने में कितनी मदद करेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
3: अब आप यह आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वफ़द की सतह की बातचीत की। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तोहनाई पैदा की है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा ने दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पताया में मुनाकिदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा तालुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देने के लिए वक्त की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उम्र में इश्तराक को मजीद बढ़ाने के मकसद से मुफाहमतनामों का तबादला भी किया। जकार्ता में एक मुश्तरक

प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने ऐलान किया कि इंडोनेशिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरी इंडोनेशिया के आला शहरी एजाज वंतांग आदिपूर्ण से नवाजा है। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के तीन रोजा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मशहूर परम्बानंद मंदिर जाएंगे। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरासत की फहरिस्त में शामिल ये तारीखी मंदिर दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। नवीं सदी की शानदार हिंदू तर्ज तामीर के लिए मशहूर ये मंदिर इंडोनेशिया के सबसे अहम सकाफती मकामात में से एक है। यहां आए कई गैर मुल्की सयाहों ने भारत के प्रति अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा कि वो भी भारत की अजीम तहजीब और सकाफती विरासत को करीब से देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा के नाम से मंसूब परम्बानंद मंदिर भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी और सकाफती रवाबित की अलामत है। सयाहों ने इस अजीम तारीखी मंदिर को देखकर हैरत और मसरत का इजहार किया। उनकी शान शौकत बेहतरीन फन तामीर और तारीखी अहमियत को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां जारी हैं और परम्बानंद मंदिर आज भी दुनिया भर के सयाहों के लिए एक अहम कशिश और भारत और इंडोनेशिया के मुश्तरका सकाफती विरासत की एक जिंदा अलामत है। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि गुज़श्ता पांच वर्षों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के पांचवें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निजाम को जदीद शफाफ टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है। उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, मीन्स इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामी रोड मैप तैयार किया और ऐसी इसलाहत नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आजादी की 100 साल तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक और खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क्याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नजरअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि वजारत रियासतों के अख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा, एक मरबूत डिजिटल डेटा बेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों की 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉ जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं और ये उनके चार खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉ जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉ जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉ जयशंकर मजकूरा चार खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा तालुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात वाकयात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का वक्त देते हुए कहा

0: अगर उनकी शराइत को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को बड़ा और आखिरी रद्दअमल किया जाएगा। एक बाजाब्ता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बिरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और पीओके में 600 से ज्यादा कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मवासलाती खिदमत की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रूकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 नुकाती तहरीरी माहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का छठा काफिला आज सुबह सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया। आकाशवाणी जम्मू के नमानिगार ने इतला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। इनमें से 3,989 यात्री बालतल के रास्ते से जबकि 4,826 यात्री पहलगाम से यात्रा के लिए रवाना हुए। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पताया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमूई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांस्य के तमगे शामिल हैं। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल माइकल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वक्त की सतह की बातचीत की। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा ने दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। देश में अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वफद की सतह की बातचीत की। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा ने दो तरफा शराकत दारी को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0-1 एक गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का वक्त भी अब खत्म हुआ। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

जी दोस्तों, बिल्कुल यादों में तो खो गया होगा आपका भी दिल, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी उतने ही मजेदार थे इस फिल्म के किरदार। राजा यानी कि हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और मधु यानी कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, कॉलेज की नोकझोंक, वो तकरार और फिर धीरे धीरे उस नफरत का प्यार में बदल जाना। अनुपम खेर और सईद जाफरी की वो अमीर गरीब की टक्कर और समधी बनने का वो अनोखा ड्रामा, क्यों आ गई ना यादें, ताजा हो गई होंगी बिल्कुल यादें। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे सफर में उन्हीं यादों को ताजा करने वाले हैं। समीर साहब के लिखे गीत, आनंद मिलन के संगीत से सजे हुए इस फिल्म के खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम लेकर आए हैं फिल्म दिल 1990 की फिल्म दिल, जिसकी स्टार कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, खासकर आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी के बारे में, तो इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे भी बहुत से दिलचस्प किस्से हैं। डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी इस पहली फिल्म के लिए कैसी जोड़ी चाहते थे जो कि यूथ को अट्रैक्ट करें, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है वो उसको अपनी तरफ लाए उस फिल्म देखने के लिए, और जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक की जब बहुत बड़ी सफलता मिली आमिर खान को, तो भाई रातों रात वो तो बन गए थे यूथ आइकन और चॉकलेट बॉय बन गए थे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वो लगते थे इसमें। और डायरेक्टर इंद्र कुमार एक ऐसे अभिनेता की तलाश में थे जो कि कॉलेज का शरारती लड़का भी लगे, लेकिन जहां जरूरत पड़े वो एक संजीदा प्रेमी का भी किरदार निभा सके, यानी कि दोनों तरह के किरदारों में फिट बैठे। और आमिर खान तो ठहरे भाई मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो वो तो उसमें डल डाउन का तो लाजमी था। और वाकई में आमिर खान की जो इमेज है और जो उनकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स हैं, उनको देख करके उन्होंने राजा के किरदार के लिए तुरंत फाइनल किया आमिर खान को। लेकिन माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में साइन करने से पहले उन्होंने बहुत सी अभिनेत्रियों के बारे में सोचा, लेकिन उस वक्त उस दौर में माधुरी दीक्षित की तेजाब, त्रिदेव जैसी जो फिल्में थी वो काफी ज्यादा हिट हुई थी, और उन फिल्मों के बाद माधुरी दीक्षित काफी अच्छे स्टारडम में छाई हुई थी। यही सोच करके इंद्र कुमार ने माधुरी दीक्षित जी को अप्रोच किया, और क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसी एक्ट्रेस आमिर खान के अपोजिट में हो जो कि उनको अच्छे से टक्कर दे सके, जो नखरे भी दिखा सके, नटखट भी हो, और इमोशनल सीन अगर वो करे तो देखने वाले को रोने पर मजबूर कर दे। और माधुरी दीक्षित तो इन सब चीजों में, ये जो फिल्म में इनकी जोड़ी आई है वो वाकई में एकदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ।

आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म दिल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर हमने किरदारों की बात की इस फिल्म में, जो किरदार थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की जान आमिर खान के कंजूस और लालची पिता का किरदार निभाया। इस फिल्म की आप एक तरह से कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी था ये किरदार, और ये किरदार निभाया अनुपम खेर ने। हजारी प्रसाद बने आमिर खान के पिता, और इस रोल के लिए इंद्र कुमार चाहते थे कि एक ऐसा कलाकार हो, एक ऐसा मंझवा कलाकार हो जो विलन भी दिखे, लालची भी दिखे और अपनी हरकतों से वो लोगों को हंसाए भी, यानी कि उन्हें चाहिए था एक कॉमिक विलन। और अनुपम खेर जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो भाई वो तो एकदम फैन हो गए इस स्क्रिप्ट के। और अनुपम खेर जो कि अपनी वर्सटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने तो बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि भाई इस किरदार को वो एक अलग अनोखे अंदाज में निभाना चाहेंगे, लाउड तरीके से इसको बनाएंगे। और देखो जो किरदार उन्होंने निभाया, वाकई में वो किरदार आगे चलकर बन गया एक आइकॉनिक किरदार। यानी कि अगर हम बात करें इस फिल्म की और हजारी प्रसाद के बारे में, अगर बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर हम इस फिल्म के दूसरे किरदार की बात करें, वो दूसरा किरदार जिसे निभाया सईद जाफरी साहब ने, दिग्विजय सिंह का किरदार, जो कि माधुरी दीक्षित के पिता का किरदार उन्होंने निभाया, जो कि बहुत अमीर है लेकिन घमंडी है। और सईद जाफरी की जो पर्सनालिटी है वो एकदम अमीर घमंडी जैसी लगती है और उनके ऊपर सूट करती है, और उस पर उनकी कड़क आवाज, आलीशान सूट पहने हुए वो रौबदार तरीके से उन्होंने अपने इस किरदार को निभाया और उस किरदार में जान फूंक डाली। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पूरी फिल्म में अनुपम खेर और सईद जाफरी के बीच में जो भी टकराव हुए या संधि बनने वाले जो सीन्स रहे हैं, वो जो ड्रामा रहे हैं, वो एक से नेक्स्ट लेवल रहे, एकदम अलग टाइप के रहे हम। और बाकी में जब भी वो लोग स्क्रीन पे आते थे ना, गुस्सा भी आता था लेकिन हंसी भी जरूर आती थी। और शायद यही वजह थी कि इंद्र कुमार ने इस फिल्म में जिस तरीके से किरदारों का चयन किया वो वाकई में काबिले तारीफ था। और जिस तरह से उन्होंने आमिर और माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए चयन किया, जिस तरह से अनुपम खेर को चुना, सईद जाफरी को चुना, वाकई में और यही वजह थी कि इन सभी ने थिएटर में आग लगा दी। और शायद यही वजह थी कि सन 1990 की सबसे ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी दिल।

0: जी दोस्तों, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। सुन सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल अभिराज हमारे साथ जुड़े हैं गांव नवागढ़ ठाकुरावाला से। राम कुमार नेडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन हमारे साथ जुड़े हैं नाजिया भाई के साथ, नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दादा बाहू रोड गिरडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन, अंजान, साइमा हसन, नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील पाठक, कमल, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री सुधाकर, राजा जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीरगांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं अजित भावसर, प्रमिला भावसर जी, और लिखते हैं कि मैंने फिल्म बहुत बार देखी है और इस फिल्म का जो गीत संगीत है वो भी हमें बहुत पसंद है। जी हाँ अजय जी, इस फिल्म का जो संगीत है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। पूछेगढ़ दुख से संजय कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित भावसर जी ने बहुत ही खूबसूरत जो जानकारी वो हम तक पहुंची आई है, लिखते हैं कि जो डांस नंबर है दम दम आदम, उसमें काम करने के लिए शुरुआत में आमिर खान ने मना कर दिया था। आमिर का मानना था कि माधुरी दीक्षित जो है वो उस समय की बेहतरीन डांसर थी और उनके सामने डांस करना कमजोर दिखना था, जो कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में इंद्र कुमार ने उनको राजी किया। तो अभी हम आपको वो गीत भी सुनवाएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी जी ये खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सुतार, मनोज, हिमांशु सुतार हमारे साथ जुड़े हैं, नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल छिंपा, पूजा परिहर के साथ, और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई है। ज्योति मक्कर, मन्नत भरत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जलंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो अगला संदेश उसको भेजने वाले हैं अपरकोट वरनशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी, उनका पूरा परिवार, कस्बा कन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगले संदेश के साथ जुड़े हैं हमारे साथ इशाक मोहम्मद जी, जुड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से, खतीजा बेगम के साथ संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सैदाबाद से निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरीन, सुहान, अरजान, अबान और अपासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू के साथ, और ये अगला संदेश भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा जी, ग्राम ममना से, इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला संदेश है सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का, अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उषा मोहन टिल्लू नायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पॉल विलिस डिकेस्ट्रो जुड़े हुए हैं, जनकपुरी सहारनपुर से, सेंट्रल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, राधे दीपक जी जुड़े हुए हैं, और कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, बसना भवरपुर से राजू देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं, और दोस्तों अगला संदेश जो हमारे पास है इसको भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद जी। संदेशों की जो घड़ी है वो बहुत सारी है, लेकिन अब जो घड़ी की सुइयां वो इशारा करेंगे मुझे आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन याद रखिए ये जो गीतों का, फिल्मों का सफर, ये जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा। 2:30 पर एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगी आप सभी की प्यारी दोस्त अंजू पांडे। तो दोस्तों रेडियो यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: मेरी जान से

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा, पहला बुलेटिन दा खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो नाल वफाकी गलबात। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदि प्रमुखों नाल किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के ग्राउंड कैप्टन मैनन 2026 में ट्रॉफियों का उद्घाटन किया और उन्हें रवाना किया। यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों ने सतारवें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबले 2024 बच्चे इनाम वंड समारोह अच नई दिल्ली। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ में अज तो 9 जुलाई तक भारी पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। भारत और इंग्लैंड दरमियान 5 ट्वेंटी मैचों की लड़ी का तीजा मैच अज रात 10 बजे खेडा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो नाल वफद पत्री गलबात की। मीटिंग दौरान दुवल संबंधों के सारे पहलुओं की समीक्षा की गई और दोवे मुल्कों दरमियान व्यापक रणनीतिक भागीदारी में नई गति प्रदान की गई। दोवे नेताओं ने आपसी हित के खेतरों में सहयोग बढ़ाने लिए कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2018 में भारत इंडोनेशिया दरमियान स्थापित व्यापक रणनीतिक भागीदारी प्रगति के एक नए पड़ाव दाखिल हो रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो नाल एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस च उन्होंने कहा कि बढ़ रहे आपसी विश्वास ने रक्षा सुरक्षा और समुद्री खेतों के सहयोग में मजबूत किया है। दोवे मुल्क रक्षा आदान प्रदान, आफत प्रबंधन सहयोग के उद्योगिक सहयोग में बढ़ाने लिए सहमत हुए हैं।
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई और हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: दुवल्ले संबंधों ने भविख बारे बोलद उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया भाईवाली एक नवा सुनहरी अध्याय अज शुरू हो है।

0: भारत यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया की अदायगी प्रणाली नाल जोड़ा जाएगा।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: उन्होंने ऐलान किया कि दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया के इतिहासक यात्रा भी पार्टी उत्साह नाल मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटेन आदिपुरना नाल नवाजा गया। इस सम्मान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने एक समारोह प्रदान किया। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाल सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रपति इंडोनेशिया की सरकार के उतने लोगों का शुक्र अदा किया।
1: प्रेसिडेंट प्रभावो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर लोकसभा स्पीकर

0: किया। इस मौके अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल नवीं टीमें ब्लैंड कप राष्ट्रपति कप से शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने वास्ते मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम शमूलियत से खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नवीं टीमों में शामिल होने से यह इतिहासिक मुकाबला और भी प्रसिद्ध हो जाएगा। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सारी टीमों के खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना की सच्ची भावना बरकरार रखने और अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन करके इतिहासिक मुकाबले का मान फिर बढ़ाने की अपील की।
1: हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल के खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए इनको

0: to la Clemente Monster.
1: आदा, ये आकाशवाणी है, हम लोग के साथ में अखिलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुब्रियांतो के साथ वक्त की सतह की बातचीत की। एम मादनियात टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समुद्री सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिंतांग अदिपुरुना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। जुनूब मगरबी मानसून शिमाली बहरे अरब, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात इंग्लैंड के शहर नॉटिंघम में तीसरे T20 बैन अलावा मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुब्रियांतो के साथ दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को नई रफ्तार देने के लिए वक्त की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुब्रियांतो के साथ एक मुश्तरक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समुद्री शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निपटने से मुतालिक तआवुन और सनअती इश्तराक को वसअत देने से इत्तेफाक किया। जनरल मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकतदारी आगे बढ़ रही है जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल है। मुस्तकबिल में दोतरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकतदारी में एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनरल मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमियाब जमीनी मकनातीस में नई शराकतदारी का आगाज कर रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निजाम से मजबूत हो जाएगी जिससे तिजारत और सफर में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकर्ता में सदर प्रम्बोवो सुब्रियांतो से मिलेंगे और 1000 साल से भी ज्यादा कदीम प्रम्बनन मंदिर के तहफजाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। उन्होंने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफती विरासत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम के हजर दरामतरा के तआवुन को याद किया और कहा कि उनका तालीमी फलसफा गुरुदेव टैगोर के नजरियात से गहरे तौर पर मुतासिर था।
2: हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और

0: अंतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बितौन अलीपुरा से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मर्देका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने किया। ये एजाज भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकत दारी को मुस्तकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वज़ीर-ए-आज़म के तआवुन के एतराफ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरिया इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बितौन अलीपुरा से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकतदारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस एवाई कोगजे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 70 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लर्ज कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूस

0: मौर्या द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों को आग का आगाज किया। इतिहास से खिताब करते हुए सदर मौर्या ने कहा कि इस साल ड्यूरेंट कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया। आकाशवाणी जम्मू के नवनिगार ने इत्तला दी है कि इस काफिले में मजमुई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। वस्ती चीन के हुबेई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफान बारिश हुई और तेज हवाएं चली। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने बताया है कि शिमाल मगरबी मानसून के शिमाली बहिरा अरब, गुजरात के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में अगले 3 दिन के अंदर मजीद आगे बढ़ने के हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज शदीद बारिश होगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बैन अलावामी मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वक्त की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समुद्री सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वज़ीर आज़म को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बितंग अदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमों को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफी जारी की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation, and industrial collaboration. The two leaders also reaffirmed their commitment to strengthening the Indonesia Comprehensive Strategic Partnership during talks in Jakarta. The two leaders witnessed the signing of several MOUs covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation, and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security, and digital technology.
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
0: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture, and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
1: Development, security, technology, culture, or education. हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Mr. Modi said both sides have reached an important understanding to strengthen supply chain resilience in critical minerals and steel. He added that companies from the two countries are beginning new partnerships in stainless steel and rare earth magnets. The Prime Minister said India's Unified Payments Interface, UPI, will soon be integrated with Indonesia's payment system, promoting both ease of doing business and ease of travel.
1: People to people ties हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: Earlier, Prime Minister Modi received a ceremonial welcome at the Istana Merdeka, the presidential palace. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. In a social media post, Mr. Singh said this exceptional honor is a resounding recognition of Prime Minister Modi's visionary leadership, transformative statesmanship, and steadfast commitment to advancing India's national interests. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said the conferment of Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor upon Prime Minister Modi is a matter of immense pride for all Indians. The Gujarat High Court today upheld a special

0: camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Our correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the Holy Cave Shrine in Kashmir. The India Meteorological Department, IMD, has said conditions are favourable for southwest monsoon to further advance into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat and remaining parts of Haryana and Punjab and Rajasthan during the next 3 days. The Weather Department forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra today. In Gujarat, heavy monsoon rains continue to lash several parts of the state, especially in Saurashtra and South Gujarat region, with Vapi and Valsad district recording a maximum of 8.5 inches rainfall in the last 24 hours, a report.
1: Heavy rains have affected normal life in the state, leading to temporary relocation of over 700 people, closure of 80 regional roads and power disruptions across multiple rural pockets. Waterlogging in the Mumbai division has led to cancellation of major trains heading from Ahmedabad, Surat, Jamnagar and Okha. As a precautionary measure, schools and Anganwadis in Surat and Navsari districts have been ordered to remain closed today. Meanwhile, the IMD has maintained its active warning for heavy to exceptionally heavy spells across South Gujarat and parts of Saurashtra, advising fishermen to avoid venturing into the Arabian Sea until 9th of July. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
0: In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 International of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the newspaper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. Now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
3: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में

0: महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
0: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई और हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
0: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
0: मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रभोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेश

सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यह सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले

0: न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और इसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी जोड़

0: बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
2: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुणे जिले के घाट क्षेत्र वराला, मानवन, तानी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है जिससे नदियों और नाले उफान पर हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र जिनमें इगतपुरी और त्रिंबकेश्वर शामिल है में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है। हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। दिवाकर भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया।

0: गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 2:30:14 और ये वक्त है उस प्रोग्राम का जिसका आपको हर रोज इंतजार रहता है, प्रोग्राम एक ही कलाकार। तो पहले सुनते हैं ये संदेश, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट इंजू पांडे और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं हिंदी फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम दौर में, जहां धुनें सिर्फ बनाई नहीं जाती थी बल्कि दिलों में बस जाया करती थी। जी हां, और आज हम चुनकर लाए हैं फिल्म संगीत के एक ऐसे महान संगीतकार को जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत का जिन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है। जब आप गीत सुनेंगे तो आप इन्हें पहचाने बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सितारे हैं उस दौर के जिन्हें आज भी लोग उतना ही प्यार देते हैं। यहां बात कर रहे हैं अनिल विश्वास की, जो कि हिंदी फिल्म संगीत के महान संगीतकार थे। भारतीय फिल्म संगीत का एक मजबूत आधार तैयार करने वालों में इनका नाम भी आता है। प्रेम से इन्हें अनिल दा भी कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक धुनों और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का ऐसा सुंदर मेल इन्होंने तैयार किया जो आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत की दिशा को ही उसने बदल दिया। सुनते हैं सबसे पहले एक खूबसूरत संगीत इनकी ही संगीतबद्ध किया हुआ।

जुलाई 1914, 22 साल, जो कि अब बांग्लादेश में है, जहां जन्म हुआ अनिल दा का। बचपन से ही संगीत का गहरा लगाव था, वो तबला बजाने में भी निपुण थे। जब बड़े हुए तो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े और यहां तक कि वो जेल भी गए। बाद में कोलकाता पहुंचे और उसके बाद मुंबई, पहले नाम था बम्बई, और यहां आकर फिल्म संगीत में अपना सफर इन्होंने शुरू किया।

अनिल दास से पहले फिल्मों में संगीत अपेक्षाकृत सरल हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बड़े ऑर्केस्ट्रा, मधुर काउंटर मेलोडी और शास्त्रीय संगीत का ऐसा समावेश किया कि फिल्मी संगीत का स्तर ही बदल गया। यही वजह है कि उन्हें हिंदी फिल्म संगीत के आधुनिक युग का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने अनेक नए कलाकारों को भी मौका दिया। कहा जाता है कि मुकेश के करियर को पहली पहचान दिलवाने में अनिल दा का ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिल्म पहली नजर का गीत दिल जलता है तो जलने दे, ये गीत आज भी अमर है। कुछ देर में इस गीत को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके पहले हमने लिया है फिल्म किस्मत से अगला गीत, जो कि 1943 में आई थी। इस गीत को ब्रिटिश सेंसर से बचाने के लिए चतुराई से लिखा गया था, लेकिन जनता ने इसके भीतर छिपे देशभक्ति के संदेश को तुरंत पहचान लिया। सिनेमाघरों में इस गीत पर तालियों की गूंज देर तक सुनाई देती थी।

दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। देशभक्ति का ऐसा जज्बा कि आज भी इस गीत को सुनते हैं तो वही जो जज्बा था वो फिर से उभर आता है। उसके बाद आया 1950 का दशक। अनिल दा ने दर्द, प्रेम और मधुरता को सुरों में ढाल दिया। फिल्म आरजू का ये गीत आज भी दिलों को छू लेता है, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। इसके बाद कई सारी फिल्में आई, तराना आई जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी थी और संगीत ऐसा था कि आज भी उसकी मिठास बरकरार है। सुनते हैं ये तलत महमूद साहब की आवाज में आरजू फिल्म का ये गीत।

पास कलाकारों से घंटों रियाज करवाते थे। उनका कहना था कि यदि शब्दों का भाव आवाज में नहीं उतरा तो धुन अधूरी रह जाएगी। उन्होंने एक युवा गायक पर भरोसा किया जिसकी आवाज में दर्द

और आपने कई सारे गीत इनके सुने हैं और आपके फेवरेट लिस्ट में भी कई सारे गीत इनके हैं। अनिल दा का जो संगीत था वो कभी शोर नहीं करता था, वो धीरे धीरे मन में उतरता था और यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं।

सिर्फ संगीतकार ही नहीं थे, वे खुद ही बहुत अच्छे गायक थे। फिल्म रोटी जो कि 1942 में रिलीज हुई थी उसमें उन्होंने गाना गाया था कौशल्या कंदन राम, और फिल्म ज्वार भाटा जो कि 1944 में आई थी जिसमें दिलीप कुमार ने डेब्यू किया था, यहाँ पर भी उन्होंने एक गाना गाया था। उनको संगीत के पारखी बड़े चाप से सुनते थे। अनिल विश्वास की पत्नी और मशहूर गायिका मीना कपूर की आवाज में भी गाने गाए हुए हैं। हम आपको सुनवाते हैं अगला जो गीत हमने लिया है चार दिल चार रहे, और आवाज है अनिल कुमार, अनिल विश्वास की पत्नी मीना

दुनिया से 1960 की दशक में जब फिल्म संगीत का मिजाज बदलने लगा था तो वो कुछ निराश हो गए थे। वो दिल्ली आ गए और ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर बन गए। बाद में उन्होंने दूरदर्शन के मशहूर धारावाहिक हम लोग, जो कि 1984 में आया था, इसका टाइटल म्यूजिक भी तैयार किया। 31 मई 2003 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंचे हैं, वक्त है कि उन संदेशों को भी हम शामिल कर लें। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रही मुन्ना जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा जी दादा बाबू रोड गिरी झारखंड से जुड़े हुए हैं। सोन सिंह गिल, दलजीत राजदीप गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ है और सहारनपुर से सैयद मसरून हमारे साथ हैं। वटिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश हमारे पास है वो छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल का आया हुआ है। संदीप मक्कर ज्योति जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। संबलपुर कागेर से फागुन राम ज्योति ओजस्वी जी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश है ये हमारे पास पहुंचे हैं भोपाल और राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार का। और अजीत भापसर जी ढेर सारी जानकारी के साथ, प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरमिरी कुरासिया कालडी से इंद्रवान सिंह, अनुभव ऋषभ राम सहोदर जी हैं। और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, अशोक कुमार सहगल शालीमार बाग से, तुलसी मस्किन बीना जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना केशु जी जुड़े हुए हैं। कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार डॉली बेबी पूजा जी हमारे साथ हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ट्रिकेस्टो रोजी पर्ल जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन ओशो, मोहन चिलू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ हैं। रविन्द्र मोहन और किशनगंज बिहार से आशा देवी के साथ जुड़े हुए हैं। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन जी हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी जुड़े हुए हैं। संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तख्तीत और अली मुजफ्फर अली जी जुड़े हुए हैं। फारूक अली जी का भी संदेश हम तक पहुंचा है और ये संदेश सीधा ये पहुंचे हैं सिद्ध सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम ढेर सारा धन्यवाद करते हैं कि आप इस सफर में हमारे हम सफर बने हैं। और अगर कुछ नाम रह गए हों तो हम माफी चाहते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है।

भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी धुनें आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित है। भारतीय फिल्म संगीत पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। इस महान संगीतकार को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यही इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगले मुलाकात में फिर एक नए सितारे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, आपसे चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ वफद की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समुद्री सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मफाहमतनामे किए गए। वज़ीर आज़म को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिंतांग आदिपूर्णा से नवाजा गया है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर और बहरीन के शाह हम बिन ईसा आले खलीफा ने दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत

0: श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी। सदर जमहूरिया ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग के अलावा इस साल ड्यूरेंट कप के मैच रांची में भी खेले जाएंगे। भारत केरलम के शहर कोची में कल से शुरू होने वाले ब्रिक्स के खवातीन वजारती मीटिंग की मेजबानी करेगा। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के वजरा आपसी ताउन को मजबूत करेंगे और मुल्क के ब्रिक्स ग्रुप की सदारत के तहत खवातीन की क्यादत वाली तरक्की के लिए एक मुश्तरक विजन को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा जिसमें 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस ए वाई कोगचे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 38 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लहसकर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी। अदालत ने 11 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद भी सुनाई थी। जम्मू कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने इतला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। इनमें से 3,989 यात्री बालतल के रास्ते से जबकि 4,826 यात्री पहलगाम से यात्रा के लिए रवाना हुए। वस्ती चीन के हुई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफानी बारिश हुई और तेज हवाएं चली जिसके सबब वांगगांग में 257 अफराद जख्मी हो गए जबकि 400 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रोबोबो सुबियांतो के साथ वर्द की सतह की बातचीत की। अहम मदनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समुद्री सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वज़ीर आज़म को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिंतांग आदिपुण्य से नवाजा गया। वज़ीर ख़ारिजा डॉ ए जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दो तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। मेरी पसंद यह प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में खराज अकीदत उस अजीम अदाकार को जिसे हम शहनशाह जज्बात के नाम से जानते हैं।

और चंद नक में उन्हीं की फिल्मों के। ये पहला नकमा उनकी बहुत ही मकबूल और मशहूर फिल्म मुगले आजम से, इसमें उनकी अदाकारी के चलते हम सब ने बखूबी देखे और उनको सराहा भी।

ये कता फैज साहब ने जिस अनिल के लिए कहा है वो कोई और नहीं बल्कि लाफानी मौसीकार अनिल बिस्वास है। वही अनिल बिस्वास जिनकी धुनों का सामईन के दिलो दिमाग पर छाया जादू आज 60-70 बरस बाद भी उतरने का नाम नहीं ले।

कंपनी में। पगार तय हुई 250 रूपए महीना। यहाँ उन दिनों एक फिल्म बन रही थी, भारत की बेटी। इसके एक गाने की धुन अनिल विश्वास ने बनाई। गाना था तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये गाना इतना मशहूर हुआ कि हर खासवान की जबान पर चढ़ गया और अनिल विश्वास की एक पहचान बन गया। मगर एक तन्हा म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से पर्दे पर उनका नाम आया धर्म की देवी में। इसके बाद अनिल विश्वास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यके बाद दीगरे कंपनी की 8 फिल्मों में म्यूजिक दिया तो इंडस्ट्री में उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं रह गया। नतीजतन उन्हें उस वक्त की एक बड़ी फिल्म कंपनी सागर मूवी टोन से बुलावा आ गया। पगार 250 से बढ़कर एकदम 550। बहरहाल जब ये वहाँ पहुँचे कंपनी की एक एम्बिशियस फिल्म बन रही थी मनमोहन। अनिल विश्वास को इसके एक ही गाने की धुन बनाने का मौका मिला मगर ये गाना तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान की मानिंद मकबूल हुआ। गाने के बोल हैं तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया।

0: सागर की अगली फिल्म जागीरदार का मुकम्मल म्यूजिक अनिल विश्वास को सौंपा गया। दरअसल ये पहली फिल्म थी जिसने उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर शोहरत दिलवाई। इस फिल्म के दौरान उनकी दोस्ती महबूब से हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े डायरेक्टर के तौर पर सामने आए। अनिल और महबूब की इस दोस्ती ने कुछ बेहद यादगार फिल्में नाजरीन को दी। इनमें एक फिल्म थी औरत, जिसकी बुनियाद में पर्ल एस बक का नोबेल इनाम याफ्ता नॉवेल द गुड अर्थ की कहानी थी। आमतौर पर इसके सभी गाने मकबूल हुए, मगर अनिल विश्वास की अपनी आवाज में एक गाना खास है।
1: जाना है तहसील की नगरिया, कठिन पड़े है नगरिया, हो जाए न अबेर बराती, दाह करता दी।
0: औरत के बाद आई एक मकबूल तरीन फिल्म रोटी,
2: जिसमें महबूब हो गया था बीमार, उसको एक नर्सिंग होम में लेके गया था। मगर हम लोग क्या करते थे, अपना अपना खाने का डब्बा उठा के लेके जाते थे, महबूब के साथ में बैठ के खाना खाएंगे। वो बेचारा सोया हुआ है, उसको एक सूखा हुआ सा वो टोस्ट मिलता था और थोड़ा सा वो सूप मिलता था। हम लोग खाना खा रहे थे और वो हमें बैठ बैठ के बोलता था, खाओ भैयो खाओ, तुम्हारी तकदीर है सर, जिस रोटी के लिए हम तसब कर रहे हैं, हमको देखो क्या मिल रहा है, सूखा हुआ टोस्ट और ये। तो एकदम से मैंने कहा कि महबूब तेरे दिमाग में कोई इसके ऊपर कोई बात आती नहीं है। कहते क्या बात, मैंने कहा रोटी। कहते क्या रोटी क्या, मगर रोटी पे पिक्चर बन सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिसके लिए हम लोग सब मर रहे हैं उसके एक पिक्चर बना तू। हमारी रोटी पे कैसी पिक्चर बनेगी, कौन सी कैसी पिक्चर बनेगी। तो मेरा तो कम्युनिस्ट का बैकग्राउंड था, तो मैं तो अपना वो सोशलिज्म पे आ गया, उसको समझाया, तो इसका एक खाका बना के लिया। फिर अपना वजहत मिर्जा और देसाई साहब ये लोग सब थे, उसका जो हमारा स्टोरी डिपार्टमेंट का, कहते उनको उनके सामने हम रखेंगे। तो हम चार पांच पेज के उसका एक खाका बना के लेके आया, लोगों को पसंद आया था और वो रोटी पिक्चर बनी।

0: ये सोच के महबूब से कहा, ये मैं साफ करना चाहता हूँ इस बात को, ये सोच के महबूब से कहा था कि महबूब मुझे एक नौकरी मिल रही है, जब तक तू पिक्चर शुरू नहीं करे तब तक मुझे यहाँ पे एक दो पिक्चर बनाने दे, उसमें क्या होगा सबके घर में चूल्हा जलेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, आई वॉज मैरिड मैन एट दैट टाइम, तो मुझे डर लग गया कि मैं फिर अपने अपने घर को क्या खिलाऊंगा। तो महबूब मिनट भर के लिए चुप हो गया और फिर हंस दिया, हंस के कहा कि ठीक है तू जगह काम कर ले। मैंने कहा तू जिस दिन बुलाएगा और शॉर्ट के अगर गाने के रिकॉर्डिंग के बीच में अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं गाना छोड़ के चलाऊंगा, ये मैं तुझे वचन देता हूँ। कहते कोई बात नहीं तू चला जा।
1: सन 1942 में अनिल बिश्वास बॉम्बे टाकीज आ गए। ये कंपनी उस वक्त बसंत फिल्म की तैयारी कर रही थी। अनिल बिश्वास ने इसके नगमों को दिल अफरोज धुनों में ढाला। पेश है एक नगमा।

0: इस फिल्म के बाद महबूब और अनिल की दोस्ती में दरार आ गई।
1: ये चार दिन की रफाकत भी कम नहीं है दोस्त, ये चार दिन की रफाकत भी कम नहीं है दोस्त, उम्र भर कौन भला साथ दिया करता है। कहने का मतलब ये कि रोटी के साथ में मेरा नाता सिर्फ नेशनल स्टूडियो से नहीं, मैं उनसे भी खत्म हो गया। वो ऐसे कि उस वक्त टाटा के जो लोग थे वो लोग फिनांस कर रहे थे और उन लोग को वो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे तो कुछ इस बिजनेस का कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ दो और दो चार नहीं होते, समझे। तो कहने लगे कि बस बंद करो इसे। मेरे रूप में वो कॉन्फिडेंस था, मुझमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही गया था, सब लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और फिर मैंने

0: ना जाए।
1: कोई ना
2: राहत रे ना लागो
3: बॉम्बे टाकीज की अगली फिल्म थी सन 1943 में बनी किस्मत, जिसकी मौसीकी अनिल बिस्वास ने तैयार की। इसका एक नगमा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये कैसा अजब इत्तेफाक है कि जुलाई सन 1914 में अनिल की पैदाइश हुई तो उसके साथ ही पहली जंग अजीम का आगाज हुआ। जब उन्होंने किस्मत फिल्म का ये इनकलाबी नगमा मौसीकी में ढाला तो दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी। पेश खिदमत है रगों में लहू की रफ्तार तेज कर देने वाला हुब्बुल वतनी से लबरेज ये नगमा।
4: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो।

इन दो फिल्मों के बाद अनिल बिस्वास ने बॉम्बे टाकीज की चार और फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिनके नाम है हमारी बात, आंख में चोली, ज्वार भाटा और मिलन। इनमें ज्वार भाटा इसलिए काबिल जिक्र है कि दिलीप कुमार ने अपना फिल्मी सफर इसी से शुरू किया था। इसका एक दिल को छू लेने वाला नगमा है सांझ की बेला पंछी अकेला।

बॉम्बे टाकीज छोड़ने के बाद अलीफ बिश्वास फिर नौकरी के बंधन में नहीं बंधे। जब तक बम्बई में रहे उन्होंने फ्रीलांसिंग की। इस दौर की पहली फिल्म है पहली नजर, जिसमें उन्होंने मुकेश को ब्रेक दिया और एक ही फिल्म से मुकेश बतौर प्लेबैक सिंगर इंडस्ट्री पर छा गए।

अनोखा प्यार फिल्म का अनिल विश्वास के करियर में एक अलग मुकाम है, क्योंकि यही वो फिल्म है जिसमें उन्होंने मीना कपूर को पहली बार बतौर प्लेबैक सिंगर पेश किया और आगे चलकर वो उनकी जिंदगी में ही दाखिल हो गई। इस लिहाज से फिल्म का ये गाना बेहद मौजू है।

इस फिल्म का लता और मुकेश की आवाज में एक सदाबहार दो गाना है, जीवन सपना टूट गया। सामाइन को बता दें कि अनिल बिस्वास ने ये गाना किसी और फिल्म के लिए सहगल और नूरजहां को जहन में रखकर तैयार किया था, लेकिन

अनिल विश्वास ने जैसे पहली नजर में मुकेश को और अनोखा प्यार में मीना कपूर को ब्रेक दिया, उसी तरह आरजू में तलत महमूद को ब्रेक दिया और उनसे ये गाना गवाया।

फ्रीलांसिंग शुरू करने के बाद अनिल बिश्वास ने बहुत फिल्में की, मगर यके बाद दीगरे नए लोगों के साथ काम करते करते उनके दिल में वो पुरानी ख्वाहिश फिर से जागने लगी कि कोई महबूब जैसा

छोटी छोटी बातें के बाद अनिल विश्वास फिल्मी दुनिया को और बम्बई को अलविदा कहकर दिल्ली आ गए। सन 1963 की पहली मार्च को बतौर ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। इस ओहदे पर काम करते हुए उन्होंने तकरीबन 60 लाफानी कम्पोजिशन तैयार की, जिनमें से बेशतर आज भी ऑल इंडिया रेडियो के खजाने में महफूज हैं।

वाफानी तेरे नगमे लाफानी तेरी कहानी, मारूफ मौसिकार अनिल बिस्वास के फनो शख्सियत के हवाले से ये फीचर अभी आपने सुना। तहरी जनाब शरद दत्त की थी, तरतीब पेशकश ए एम रजा की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD विदेश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे, आगाज नया दौर फिल्म के नगमे से, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ।

0: जियो या मरो,
1: गुफ्तगू का ये कोई तरीका नहीं,
0: और तुमको भी कोई तरीका नहीं।
1: मेरी उल्फत की इंसल्ट यूं ना करो,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप,
0: यू शट अप,
1: यू शट अप।

मधुमती फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और लीजिए सुनिए बाबुल फिल्म का दो गाना, तलत महमूद और शमशाद बेगम का गाया हुआ।

जब सुनिए गंगा जमुना फिल्म का नगमा लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ नगमा। निगार शकील बदायूनी, मौसिकी नौशाद।

जब सुनिए गंगा जमुना फिल्म का नगमा लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ। नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी नौशाद की।

वड़ी वड़ी गाली नाल दिल कड़ाई बहलदा है। वड़ी वड़ी गाली नाल दिल कड़ाई बहलदा है।

एक भी ताजी लिखत पेश है। हवा मुहाफिक अज हली कैनी, हवा मुहाफिक अज हली कैनी, कड़ाई जे मिलसे ते रल के बासू, कड़ाई जे मिलसे ते रल के बासू, गरीब खाने जे तू लंघ के आवे, गरीब खाने जे

लंघ के आवे कन्नी कन्नी रोटी मिल के खासू उवा पुराने दरिया ते वंज के उवा पुराने दरिया ते वंज के निक्के बाल वांगू चल के धासू निम दरखत दा सड़ेंदे अक्सर निम दरखत दा सड़ेंदे अक्सर पींगा पा पा के झुमरियां गासू हवाड़ अपने हां विच लुका के हवाड़ अपने हां विच लुका के तोणीए बोझा मोडे ते चासू के तोणीए बोझा मोडे ते चासू नीरज हुंदी किस्मत ते तरस आंदे नीरज हुंदी किस्मत ते तरस आंदे हां जेकर करेसी ते थी भी आसू हां जेकर करेसी ते थी भी आसू। हुण कुछ सिराइकी दोहे पेश करेंदी पई हां।

0: एक भी छोटी लिखत पेश है, जवाबी लिफाफा मैं उवा पठेसा, जवाबी लिफाफा मैं उवा पठेसा, गिले शिकवे सारे परूचा करेसा। मनावे कुई वी, मनावे कुई वी, जुलो मैं निभेसा, खुशी तोल के हर गिराही गुलेसा, खुशी तोल के हर गिराही गुलेसा। हिक फोटू मेकू काफी है, हिक फोटू मेकू काफी है, दावी दा क्या करेसा, तू जेकर मेडी किस्मत वत सारे दरिया में तरसा, तू जेकर मेडी किस्मत वत सारे दरिया मैं तरसा, होले होले निभ वैसी सब, होले होले निभ वैसी सब, मूंज दा झट हिक बाकी जीवन दे डी थोड़े हन, ना मिलसे ते मैं मरसा, जीवन दे डी थोड़े हन, ना मिलसे ते मैं मरसा।
1: सामीन हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम झोक माहिती, हुण वेला हो गया प्रोग्राम देश पंजाब दा, आ मिलके सुनदे आं।

0: देखो भरावो साडे यूथ क्लब ने पिंड दे बहुत सारे सुधार किए ने ते हुण निरंतर कर रहे हैं और हमेशा करते रहांगे। असी बहुत सारे न्या सारिया लई आसरा रोड़दियां दी बां फड़ के बचाया है ते उजड़दे घरां नूं मुड़ बसाउण लई कोशिश ही नहीं कीती सगों उजड़न तो 100% बचाया उन्हां
1: नूं। तू चिंता ना कर असी हमेशा तेरे नाल हां ते नाल ही रहांगे।
0: देखो भी गल इदां जी सानू सारे नूं पता है कि पिंड दे कुछ को नौजवानां दी की स्थिति चल रही है ते असी अज प्रण करना है कि दलदल विच फसे इना कुछ को नौजवानां नूं बाहर कढ़न दी हर संभव कोशिश करिए हर संभव कोशिश करांगे। अज असी सारे रल के प्रण करदे हां कि जो भी नौजवान समाजिक ताणे वाणे दी बहणी कुछ ही दलदल विच किसे भी वजह दे नाल फसिया है ओनू बाहर कढ़न दा हर उपराला करांगे। ब्रावो मैनू तुहाडे सारिया ते बहुत वड्डी उम्मीद है तुसी मेरा पहला भी बहुत साथ दिता है ते अगे तो भी अज दी तरह दिंदे रहोगे मेरा विश्वास है।
1: बिलकुल असी तुहानू यकीन दिवाउने आ कि असी तुहाडे नाल ते नाल तुहाडा साथ दिंदे रहांगे।
2: बिलकुल सर
0: चलो ठीक है इस तरह करदे आ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ
0: ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
1: ਠੀਕ ਹੈ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ
2: ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ।
1: ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਥੋੜੀ ਆ
4: ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

0: चाचा जी का रही हो? मैं क्या चाचा जी?
1: आ जाओ काका जी, लंग आओ, लंग आओ सारे।
0: पहनी पहनना चाचा जी,
1: जीवंदे वास्ते रहो, जीवंदे वास्ते रहो।
0: ठीक ठाक हो?
1: आओ बैठो तुसी सारे। आजा काका, तू दूर क्यों खड़ा है? आजा तू भी इत्थे बह जा, बथेरी जगह खाली है।
2: ठीक है जी, ठीक है।
1: होर सुनाओ पुत्र जी, किवें आउणे होए? मेरा अंदाजा तो यह कहंदा कि तुसी मेरे मुंडे गुरदीप बारे गल करन आए हो। मैनू पता है तुसी सारे उहदे विच नवी जागृति भरना चाहुंदे हो, तुसी सारे उहदे लई फिकर करदे हो। उसनूं जो लत लगी है उस तों निजात दिलाउण दी गल करन आए हो, तुसी मैनू पता है। मैनू पता पुत्र जी।
0: हां चाचा जी, तुहाडा अंदाजा बिलकुल सही है। असी सारे मिलके आए ही तुहाडे पुत्र गुरदेव बारे आ, उहनूं जीवन जीवन दा सही रस्ता दिखाउण दे लई।
1: पुत्र जी, उह तां दो तीन दिन तों घर ही नहीं वड़िया, नहीं ते फिर।
0: चाचा जी कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, फिर की है? साडी उहदे नाल मुलाकात नहीं होई तां कोई गल नहीं, असी बाद विच सानू जिथे भी मिलिया असी आपे ही उहनूं समझा लवांगे। चाचा बस बस तुसी उही करना जो जो असी सारे तुहानूं दसन लगे आ।
1: ठीक है पुत्र जी, तुसी जो आखोगे मैं उही करांगा, पूरी निगरानी करांगा उस मूर्ख की। चंगा पड़ा साहू सी, माड़िया की संगत ने उसकी रंगत।
0: नहीं चाचा जी नहीं, चाचा जी नहीं, रोना नहीं। असी जरा वेला है ना, यह हूं रोंदा नहीं, समझा के सही दिशा वल मोड़ा है। बस बस चाचा जी उदा ही करना जिदा जिदा असी सारे तुहानू हुण दसन लगे आ। चाचा जी तुसी गुरदीप दे माड़े कम्मां नूं नकेल पाओ, वो जो भी कर रहा है ना उहनूं सारा पिंड अला

0: बेटा।
1: बिल्कुल सही किया तुसी जी, इना नूं कोई सू मिली होनी है ताइयों तां इह बस एडिया एडिया डारा बन के जांदे पए ने। शाम नूं रोज तुसी बन ते चिट्टा शराब, पता नहीं होर केड़े केड़े नशिया नूं बेचण ते खरीदण वालियां दा तंत्र लगा हुंदा। दूरों दूरों जिलिया दे नशा तस्कर इत्थे आउंदे ने, सोने दीयां जवानियां नूं खेल विच बुलाउंदे, पूरी जद्दोजहद करदे ने। पुलिस आउंदी ते आके कई बार गोली भी चलाई, फट्टर भी कीता, कईयां नूं कुछ भज्जण विच कामयाब हो जांदे ने ते

तेरा मिलना हवा जिहा लगदा है, तेरा जाना कजा जिहा लगदा है, तेरा दिता सराप भी हुण तां मैनू अक्सर दुआ जिहा लगदा है। इस गीत तो बाद आओ फिर अगली फरमाइश वल चलदे आं। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम नजराना, सारी आकाशवाणी परिवार नूं पिंड राजपुरा दी पंचायत वलों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। हरदीप सिंह, जगवीर, ज्वाला सिंह, जगसीर सिंह ते डॉक्टर परमवीर ए सुनना चाहते ने जी गीत दिलजीत दोसांझ होरां दी आवाज दे विच। ते आओ फिर असी भी इस गीत नूं सुनदे आं।

मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, पर मोहब्बत कभी गुम नहीं हो सकती। हमेशा वसदी रहती है साड़ी जिंदगी दे विच, साडे साहां दे विच, इस आबो हवा दे विच। सोच सोच के चल मना, इथे पैर पैर ते रोड़े ने। सोच सोच के चल मना, इथे पैर पैर ते रोड़े ने। तेनू निंदण वाले बहुते ने, ते सिफतां वाले थोड़े ने। तेलो जी असि सिफत करदे आं अपने दोस्तां दी जिन्होंने सानू जिला संगरूर तो खत लिखा है। अश्विनी गर्ग, विनोद, पूजा, प्रियंका, ये सब सुनना चाहते ने गुरदास मान होरां दी आवाज दे विच इक गीत। तेलो फिर पेश करदे आं।

दोस्तों इस दे नाल ही नजराना प्रोग्राम असी इत्थे खत्म करन दी इजाजत चाहने आ क्योंकि अगला सेगमेंट बिल्कुल तैयार है जी। साडे हाथ दे विच आया है एक खत। प्रोग्राम दा नाम है जी तमन्ना ते दोस्तां दी जिन्हां दी तमन्ना असी अज पूरी कर रहे हैं। उन्होंने अलीका डब्बवाली तो बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता ते कुलदीप ये सुनना चाहते ने जी ईरिए पंबीरिए। लो फिर सुनते हैं।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: सभी फोन इन कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। जैसे कि बता दें, इससे हमारा फोन इन कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारा पाठशाला है गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत जो विषय है हमारा वो है गन्ने की बंधाई और देखभाल। और जो गन्ना विशेषज्ञ हैं उन्हें डॉक्टर अवधेश कुमार डागर, पूर्व गन्ना विशेषज्ञ, गन्ना अनुसंधान संस्थान मुथब्बर।
2: जी बिल्कुल। और हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DSC

0: रोही वरिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर से। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं, गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने की फसल से कोई भी सवाल है, समाधान चाहते हैं, पूछ सकते हैं, विशेषज्ञों से सीधा बात कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं।
1: तो चलते हैं,
0: नंबर एक बार फिर बता दें अपने बहन भाइयों को। बहन भाइयों, नंबर है 0111-2342-1082 और दूसरा नंबर है 2342-1083।
2: डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी और डॉक्टर सिरोही जी, दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तब तक हम अपने कार्यक्रम पे चर्चा करते हैं। यदि जिस तरीके से डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे गन्ने की बंधाई के महत्व की बात हो गई और बंधाई का समय के और एक बंधाई का तरीका भी अलग अलग तरीके से भी किसान भाई बांधते हैं। तो डॉक्टर सिरोही जी, जानना चाहूंगा कि क्या तरीका है सही से गन्ने की बंधाई का।
3: देखिए, जैसा आपने सवाल किया है, अभी जैसे अभी समय आने वाला है, जैसे 5 से 6 फीट की हाइट गन्ने की हो जाएगी तो उसमें जो वहां का उसका मेथड है, गन्ना ट्रेंच मेथड से बोया हुआ, तो उसकी बंधाई दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। और जो हमारा 28-30 इंची पे आम बुआई करते हैं उसको दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। किसान भाई को जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया है, उसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत इस बात की है कि जो ऊपर का पोर्शन है तना, वो पत्ती के द्वारा जो सूखी पत्ती से बांधते हैं उसके ऊपर से बंधाई वो बाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी वृद्धि रुक जाएगी, उसकी हवा रुक जाएगी। उसको विशेष तौर से ध्यान में रखने की जरूरत है कि दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है, दोनों लाइनों को मिला करके उसके नीचे से कम 4 फीट ऊंचाई पे पहली बंधाई वहां से प्रारंभ करनी चाहिए और ऊपर की साइड से उसको न रोकें, जिससे उसकी बढ़वार को प्रभावित ना हो। विशेष ध्यान रखने
2: का मतलब जो गन्ने के पुराने पत्तियां हैं, जो पीली पड़ चुकी है, आधे सूख भी चुकी है, उस पत्तियों से नीचे के हिस्से में बांधना है। ऊपर को जो हाथ से हरी पत्तियां शुरू होती हैं उसकी बंधाई
3: नहीं करनी है।
2: और अच्छा, ये तो पहली बंधाई की बात हो गई। और बहुत से किसान भाई दूसरी बंधाई करते हैं तो उसमें आधा एक बंधाई के गन्ने से लेते हैं, आधा दूसरे से लेते हैं, तो जिससे क्या है कि एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं और बरसात आने पे आपकी फसल गिरती नहीं है। मेन मकसद गन्ने का यही होता है कि फसल गिरे नहीं। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो
4: हेलो डॉक्टर
3: साहब,
4: मैं
2: डॉक्टर
4: आपसे बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी,
2: क्या
4: नाम है?
3: क्या नाम है जी?
4: करपाल सिंह जी। डॉक्टर
3: राम राम। राम जी, राम राम।
4: मैं सब एक बात बोलनी चाह रहा जी, खेत में पेट जी का खेत है जी, उसमें पत्तों सप्पे आ रहे हैं जी।
3: सप्पे आ रहे हैं?
4: हाँ जी, सप्पे सप्पे जी।
3: हाँ जी,
4: तो उसमें क्या करा जाए?
3: आपकी वैरायटी कौन सी है चौ साहब
4: जी?
3: आपकी किस्म कौन सी है गन्ने की?
4: 38 है जी।
3: 38 है, तो उसमें उसकी पत्ती के नीचे की साइड में आपको व्हाइट व्हाइट चित्तेदार धब्बे से नजर आ रहे होंगे?
4: हाँ जी, धब्बे जगह जगह पूरे धब्बे पत्ते पे जी, ऊपर नीचे जी।
3: हाँ, तो अभी जैसे आप कार्यक्रम अगर सुन रहे थे, अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर डागर साहब ने बताया था, उसको रिपीट कर देते हैं हम। वो माइट इस एक तरह का कीट होता है एक, तो उसके कंट्रोल के लिए जैसे आपको अब मौसम खुलता है और आपको टाइम मिलता है, इमीडा क्लोरोपिट एक दवा होती है, इमीडा, उसमें थोड़ा सा एक नीम का तेल मिला करके पहला स्प्रे उसमें उससे कर दे, उसी से इसका नियंत्रण हो जाएगा। बारिश हो गई है तो ये कोई अभी जो जैसा थोड़ा ये 0238 में ज्यादा देखने को मिल रहा है, और एक ही स्प्रे से आपका इसका कंट्रोल हो जाएगा। चौथ साहब,
4: मैंने वो माइक दवा करी
3: कितने दिन पहले करी थी?
4: मैंने 2 घंटे पहले करी थी, बारिश हो गई।
3: वो तो दवा आपकी बेकार होगी चौधरी साहब, ठीक है?
4: तो एक आदमी उगाई नहीं होते?
3: नहीं नहीं नहीं, एक
4: सल्फर का प्रयोग करेगी, सल्फर लगा इसमें?
3: नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। बारिश हो गई है, बारिश होने के बाद वातावरण के अंदर नमी आ गई है और धीरे धीरे ये जो वेबिंग माइट है, इसको वेबिंग आइटम बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, ये सतह समाप्त हो जाएगी और खासतौर से किनारों की तरफ की पत्तों पे आपको ज्यादा दिखाई दे रही होगी, अंदर

0: करके जाएंगे तो वहां पे आपको उतनी नहीं दिखाई देगी, ऐसा ही है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, वो जिस तरीके से हमारे किसान भाई फोन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे गन्ने की फसल तो ऐसे इस समय बरवार पे भी है, और लेकिन कई कीड़ों के बारे में बात हो गई। डॉक्टर साहब, एक टॉप बोरर होता है
1: जी जी,
0: और ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि गन्ने की बरवार का
1: जी जी जी,
0: क्योंकि वो ऊपर के ही गोब में उसको कट कर देता है, जिससे फिर गन्ना उसके ऊपर उसमें गिले नहीं निकलते, मतलब ऊपर से खत्म हो जाता है
1: जी।
0: तो इस ये क्या है, कैसे इसके हमारे किसान भाई पहचान करें, और रोकथाम के लिए क्या इसके लिए कर सकते हैं?
1: इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सर्पोफेगा एक्सरपटेलिस, और उत्तर भारत के अंदर इसकी 5 या 6 पीढ़ियां पाई जाती हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर 7 पीढ़ियां इसकी मिलती हैं, क्योंकि उत्तर भारत में आया है इस समय। उत्तर भारत की बात करेंगे तो और बेहतर होगा। टॉप बोरर जैसा कि नाम है, हिंदी इसकी है चोटी वेदक, ये चोटी को वेदता है, जो गन्ने का बढ़वार वाला हिस्सा है, एपिकल पोर्शन जहां से गन्ने की वृद्धि होती है,
0: मुलायम हिस्सा,
1: मुलायम हिस्सा, ये उसको खा जाता है। जब उसको खा दिया इसने, खाने के बाद फिर क्या होगा, पौधा बढ़वार लेना बंद हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो नीचे का रूट जोन तो उसका बिल्कुल सही है
0: जी,
1: और वहां से पोषक तत्व आ रहे हैं, जो ऊपर की तरफ आंखें बनी होंगी वो आंखें जमाव ले जाती है, और पौधे की वृद्धि रुक जाती है और आपकी पैदावार प्रभावित हो जाती है। और इसकी पहचान करने का सबसे सही तरीका यह है कि बीच की गोफ की जो पत्तियां होंगी उसमें छर्रे नुमा छोटे छोटे छेद एक सीध में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये खास पहचान है इसकी, और इसके लिए जैसा अभी बात कर रहे थे सीटीपीआर का, सीटीपीआर के साथ साथ एक चीज और मैं कहूंगा, उससे भी बढ़िया चीज है यदि हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें। और अब जो बरसात चल रही है, बरसात के अंदर टाइकोकार्ड, जो इसके टाइकोग्रामा जैपनिकम, एक इसका अंड परजीवी है, वो 50,000 अंड परजीवी प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित किए जाते हैं, और हर 15 दिन के बाद
0: जी
1: टाइकोकार्ड को बदला जाता है, वो भी इसको कंट्रोल करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। यदि
0: बात करेंगे किसान भाई लाइन पे, उनसे बात कर लें। हेलो हेलो
2: जयेंद्र जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
2: जिला हापुर रंगा नहीवास से बोल रहा हूँ मैं, घनश्याम
0: जी। घनश्याम जी, क्या सवाल है?
2: अरे डॉक्टर साहब को भी सबको राम राम।
3: राम राम राम राम।
2: ये थोड़ा सा सफेद वाले धब्बे, सीधे सफेद वाला
3: जी जी,
2: तो वो दिखाई दे रहा था।
3: वैरायटी आपकी कौन सी है?
2: हाँ जी,
3: किस्म कौन सी है गन्ने की आपकी?
2: जीरो जीरो, हाँ
3: जीरो 238।
2: हाँ हाँ,
3: ये नया बांस आपका लखवा के पास वाला है, घर के पास वाला है?
2: घर के ब्रिजघाट।
3: हाँ हाँ, देखिये ऐसा है, जैसा अभी हमारी चर्चा भी चल रही थी उसमें अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अभी कोई आपने स्प्रे तो नहीं करा है?
2: ना अभी ना करा।
3: हाँ, तो एक जैसी मौसम खुलता है आप जो है दवा नोट करें, इमीडा क्लोरोप्रिड 17.8% वाली जो दवा आती है
2: जी साहब,
3: और उसमें थोड़ा सा नीम का तेल मिला लें
2: जी साहब,
3: उसका एक स्प्रे कर दें मौसम खुलने पर
2: जी साहब।
3: प्रथम स्प्रे से ही अब जैसे बरसात हो गई है तो उसी से वो कंट्रोल हो जाएगी, और सत्य जो कीट है महीन वो जो है आपका खत्म हो जाएगा।
2: अच्छा अच्छा, ये जो हम गन्ने के बुनाई करते हैं तो सूखा पत्ता नीचे का जब बुनाई करते हैं
3: जी,
2: सूखा पत्ता उतारे गन्ने के जब बुनाई करते हैं।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं आप निश्चित तौर पे। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप कर रहे थे इसके टॉप बोरर की रोकथाम,
1: टॉप बोरर की रोकथाम की बात चल रही थी
0: जी जी,
1: बड़े दिन थोड़ी सी टूट गई। टॉप बोरर के लिए मैं अभी टाइकोकार्ड की भी बात कही, रासायनिक कंट्रोल की भी बात कही, सबसे बढ़िया जो चीज है वो है प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप
0: जी।
1: लाइट ट्रैप, लाइट जलाने से शाम के समय कीड़े सतह आते हैं लाइट के ऊपर।

0: खासतौर से किसान भाइयों ने देखा होगा, गांव के बाड़े के जो खेत हैं या गांव के चौगड़े के जो खेत हैं, उन खेतों के ऊपर आपको टॉप बोरर का प्रभाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है, हाँ उसकी वजह यह है, गांव में शाम को लाइट जली, कीट पतंगे लाइट की तरफ आकर्षित हो गए और वहां जाके वो खत्म हो गए, मर गए। अगर लाइट टैप आप लगा रहे हैं, खेत के पास लगा रहे हैं, तो सीधी बात है गन्ने में 9 तरीके के बोरर लगते हैं। CTPR से तो आप सिर्फ टॉप बोरर को कम कर पाएंगे, लेकिन यदि लाइट टैप लगाएंगे तो सारे 9 के 9 बोररों की मौत भी उसकी तरफ आकर्षित होंगी और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि लाइट टैप थोड़ा सा महंगा, जरूर किसान भाई कह रहे हैं महंगा है, कोई बात नहीं, इस बार ईंख लगाया, अगली बार भी आप ईंख ही लगाएंगे, खेती ईंख की होनी है। जब ईंख की खेती होगी तो रासायनिक नियंत्रण से बढ़िया मैं समझता हूं कि प्रकाश प्रपंच लाइट टैप को यदि प्रयोग करेंगे और सामूहिक रूप से यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा।
1: तो अक्सर ये तो बात रहे टॉप बोरर के, क्या गन्ने की फसल में ये मिली बैग का भी प्रकोप रहता है?
0: मिली बग का भी प्रकोप है। अगर इस बार जहां तक मैंने वेस्टर्न यूपी का सर्वे किया है
1: जी,
0: इस बार टॉप बोरर और मिली बग दोनों ही बहुत ही कम या नगण्य, जिसको कह सकते हैं ना के बराबर है। मिली बग का भी प्रकोप देखने को मिलता है ये गर्मियों में, जितनी भी गर्मी पड़ेगी इंसेक्ट का अटैक गर्मियों में ज्यादा होता है, क्योंकि पौधे के पास वो मॉइस्चर लेने के लिए आता है
1: जी।
0: और मिली बग खासतौर से वहां पे ज्यादा मिलेगा, या तो पेड़ की छाया में, या कहीं पे किसान भाई अपने खेत के पास वो गोबर की खाद के लिए जो कूड़ी गोबर डंप करते हैं यहाँ पे, वहां पर मिली बग का प्रकोप देखने को मिलता है। मिली बग के लिए खासतौर से ये प्लांट केन में नहीं मिलेगा, ये रेटून केन में सबसे पहले मिलेगा, और रेटून के लिए भी दवा वही है इमेडाक्लोरोपिट, लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग है। इसमें जो ग्रसित पौधे हैं उनकी पत्तियां उतार दी जाए, पुरानी पत्तियां, और उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे करा जाए, वही 3 लीटर पानी में 1 ml दवा 17.8 SL वाला आप यदि डालेंगे, निश्चित रूप से आप मेरे वक्त से अपनी फसल की सुरक्षा कर पाएंगे।
2: सीडल जी, मैं थोड़ा सा एक से बात करना चाह रहा था, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया लाइट ट्रैप के बारे में
1: जी।
2: उत्तर प्रदेश सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जहां की भी हैं, वो लाइट ट्रैप पे सब्सिडी दे रही है। हर जिले में जो वहां की कृषि रक्षा इकाई है उन्होंने भी उसके लिए इंतजाम कराया हुआ है, और काफी सब्सिडी में 50-60% 70% की सब्सिडी में मिल सकती है, और अपने चीनी मिल के माध्यम से भी बहुत सारी चीनी मिलें अपने सब्सिडी रेट पर दे रही है। इसमें अवेयरनेस की जरूरत है किसानों के लिए। मैं किसान भाइयों से सभी से गुजारिश करूंगा, जो इस समय चल रहा है टॉबर की थर्ड ब्रीड का, उसमें लाइट प्रपंच जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में लोग इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और हम रासायनिकों के प्रयोग से
0: बच सकेंगे
2: और इसका इस फायदा जो है बहुत ज्यादा है किसान भाइयों के लिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूं अपने किसान भाइयों।
1: जी बिल्कुल सही बात है कि किसान भाई जो भी कृषि रक्षा इकाई है जिले में वहां संपर्क करके इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, और जो सरकार के योजनाएं हैं जिनके द्वारा उन्हें सहायता मिलती है या सब्सिडी मिलती है उसका भी लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि गन्ने की फसल में एक बीमारी आती है रेड रॉट
0: जी,
1: तो ये क्या है और किस तरीके से इसका प्रभाव होता है और कैसे किसान भाई इसको पहले से रोक सके?
0: रेड रॉट दुनिया के शायद ही कोई कंट्री होगा जहां पे गन्ना बोया जाता है और ये बीमारी ना आई हो। ये आते हैं, पैंडेमिक डिजीज है, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब भी 238 की खेती हो रही है, लेकिन जो गंगा और यमुना के दोआब में तो थोड़ा सा कम प्रकोप देखने को मिला है, लेकिन गंगा रामगंगा और गंगा के बीच की जो बेल्ट है, खासतौर से जो मुरादाबाद वाला क्षेत्र है, मुरादाबाद बिजनौर वाला, इसके अंदर रेड डॉट का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिला है, और वो भी कुल 0238 के अंदर इतना प्रकोप आया है कि क्रशिंग सीजन कम हो गया। अब सवाल उठता है कि एक साथ वैरायटी नहीं बदली जा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, इसके रोकथाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन ले लें। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी,
1: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: तैमूर राणा बात कर रहा हूँ जी।
1: कहाँ से?
3: मुजफ्फरनगर से।

0: बढ़ाने से।
1: अच्छा, क्या सवाल है आपका राणा जी?
0: मेरा ये सवाल है जी, जैसे अब बरसात हुई है जी, तो
1: जी
0: इसमें एक तो माइट की समस्या आ रही जी, और एक कीड़ी होती है जैसे थ्रिप थ्रिप कहना है, थ्रिप
1: जी
0: वो आ रही है जी, क्या इससे बारिश से कुछ प्रभाव पड़ेगा?
1: जी डॉक्टर साहब, बारिश होने के बाद जो थ्रिप्स आप देख रहे होंगे, जो पत्तियों की टिप है ऊपर की, वो ऐंठ जा रही होगी। अगर उन टिप ऐंठी हुई पत्तियों को खोलते होंगे टिप्स को, तो छोटे छोटे से आपको कीड़े दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही पहली बारिश होगी, ये सारे के सारे थ्रिप्स आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें कुछ भी रासायनिक नियंत्रण करने की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक प्रश्न आता है माइट का, और वो भी वेबिंग माइट जो व्हाइट वाली है, लाइन लाइन से आपको दिखाई दे रही होंगी गन्ने की पत्तियों पे। हाँ
0: नहीं, वो धब्बे से बड़े गोल गोल से पेस्ते पेस्ते जी।
1: हाँ,
2: तैमूर जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी हमारी यही चर्चा चल रही थी कि अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, गन्ने में कोई थ्रिप्स नाम की बहुत भयंकर कोई ऐसा कीट नहीं है ये, और जैसा भी डॉक्टर साहब आपसे बता रहे थे।
0: सुनो डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल इसलिए करा, मैं भी सुन रहा था बहुत देर से, तो इसमें किसानों ने भी जवाब दे दिया, आपने भी दिया, तो थोड़ा सा क्या है, जैसे मानने की बात है, माइट तो आप इमीडिएट से बता रहे, तो जैसे थ्रिप्स है ये तो बारिश से ही चला जाता है,
2: हाँ,
0: तो
2: चला जाता है, बिल्कुल ठीक है।
0: तो इससे भी ये बताओ किसानों को, ये अब जी इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
2: हाँ, यही बात हम कह रहे हैं आपको, यही बात कह रहे हैं इसके बारे में, किसान ने सवाल नहीं पूछा।
1: हाँ जी तैमूर, आपने बात मेरी शुरू से सुनी नहीं, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हर ये माइनर इंसेक्ट है, इनके लिए रासायनिक प्रयोग की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पहली रेनफॉल होगी, सूखे समाप्त हो जाएंगी।
0: जी, नहीं वैसे डॉक्टर जी, आप वैसे बहुत अच्छा बताओ, आपने बता भी, कह लगा आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर इसमें जो है ना थ्रिप्स में थोड़ा सा मैंने मतलब बात क्लियर कर दी भाई, थ्रिप्स से क्या है। जी,
2: नहीं, जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं आपकी बात से, क्वेश्चन करने से इसका सभी को लाभ होगा। तैमूर जी धन्यवाद।
0: जी,
3: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे
1: रेड रॉट को 0238 में सबसे ज्यादा आया, पहले ईस्टर्न यूपी में आया, ईस्टर्न यूपी के बाद सेंट्रल यूपी में आया, और सेंट्रल यूपी के बाद मुरादाबाद और बिजनौर वाली बेल्ट में है। अब धीरे धीरे इसका प्रकोप कम हो रहा है। CF13 एक नया आइसोलेट आया था, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें दिखाई दे रही थी। जहां तक प्रश्न है कि कैसे कंट्रोल किया जाए रेड रॉट को, ये बड़े अपने आप में यक्ष प्रश्न है, और इसको कंट्रोल करने के लिए
3: जी
1: सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि वैरायटी का बदलाव हो। कहना बहुत आसान है, जो वैरायटी 90% तक थी उसका कैसे बदलाव एक साथ कर दिया जाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर हमें ट्राइकोडर्मा के पास आना पड़ेगा। ट्राइकोडर्मा की बात रह गई थी, किसान भाई पूछ रहे थे,
3: ट्राइकोडर्मा पे आएंगे, लेकिन एक किसान भाई से बात कर लें पहले। हेलो,
4: हाँ जी नमस्ते सिमंदन भाई।
3: नमस्ते जी, नमस्ते।
4: और डॉक्टर साहब, उदय साहब को भी नमस्कार
1: जी, नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूँ, जैसे गंदा ये कई बार
3: अपना
4: काना हो जाता है।
3: अपना नाम और पता बताओ, और रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो आप, या धीमा कर दो।
4: योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
3: हाँ जी योगराज जी,
4: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आवाज इको हो रही है सर?
3: बिल्कुल, आवाज एक इसीलिए हो रही है कि आप पास में हो।
4: नहीं, ये मौसम की वजह से हो रहा है।
2: सवाल पूछे।
3: हाँ, क्या सवाल, क्या है आपका
4: सवाल? ये जो गंदा काना हो जाता है, कई बार हम देखते हैं जूस पीते हैं दुकान पे, तो उसमें लाल गंदा अंदर से काना भी होता है
3: जी,
4: तो इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब बताएं?
1: देखिए, लाल, हर लाल रंग रेड डॉट नहीं होता है, वो गन्ने के अंदर स्टॉक बोरर हो सकता है या इंटरनोड बोरर हो सकता है। वो दो बोरर की वजह से, जैसे ही गन्ने को काटेंगे आप और वो हवा के संपर्क में आएगा, उसमें फिनॉल जो है हवा के साथ रिएक्शन करके अपना कलर देते हैं, वो लाल रंग आ जाता है। लेकिन जो गन्ने की बात आप कर रहे हैं, उसमें वो बोरर है, वो बोरर की वजह से लाल रंग है, वो रेड डॉट की वजह से नहीं है। ठीक है,
3: ठीक है युवराज जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि
1: रेड रॉट
3: नियंत्रण के, और जिसमें आप ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे थे,
1: तो अभी काफी तेजी से रेड रॉट आया है। इस बार मेरे को, अभी मैं गया था

0: तो निश्चित रूप से ज्यादा फायदा होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिरोही जी, डॉक्टर डागर जी, दोनों कार्यक्रम में आए और बहुत हमारे किसान भाइयों के सवालों के जवाब दिए और निश्चित तौर पे हमारे जो गन्ना किसान हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रायोजित कार्यक्रम विशेष फोन इन कार्यक्रम था गन्ने की पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटास लिमिटेड।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्यों सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, तुम भर भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: गन्ने की पाठशाला, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे शिव नंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारसर। इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम राम। और कार्यक्रम के संयोजक है शिव नंदन लाल।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ 7:30:15। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमने ली है फिल्म नाम से। गायक कलाकार है पंकज उदास और साथी, गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे फिल्म कलाम फिल्म नाम से नए कलाकार थे पंकज उदास और साथी। कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। नए कलाकार हैं आशा भोसले और साथी। गीत रचना है रावल फिल्म्स की और संगीत दिया है रोशन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत कव्वाली।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं अंतिम रूप में हम जो आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर से एक कव्वाली मन्ना डे की आवाज में। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: यारी है इमाम मेरा यार। इसी के साथ आज का गजल कव्वाली का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला विकास समिति चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रोलन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जिला विकास समिति DDC चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की।
4: बैठक में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जर्जर सरकारी विद्यालयों के पुनर्वास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा और मानसून के दौरान संभावित जलभराव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समन्वित और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने को कहा ताकि नागरिक इस वर्ष की 31 अक्टूबर से पहले अपना पंजीकरण करा सकें। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक के लिए शक्ति सिंह।
3: दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर लगभग 3 वर्षों से रिक्त दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया है। महिला और बाल विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार ओम प्रकाश व्यास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राहुल गौतम कुंदन

0: संस्कार स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सभी नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग का नया नेतृत्व बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत के साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने सेंट्रल रिज स्थित राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर और नानकपुरा रिज में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव सहित दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।
1: पौधारोपण अभियान के शुभारंभ के बाद श्री शाह ने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों, 3 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो और नंद नगरी स्थित आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की आधारशिला रखी तथा नरेला हाई सिक्योरिटी प्रिजन परियोजना का ई शिलान्यास किया। ये पहल स्वच्छ, सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर दिल्ली के निर्माण को नई गति प्रदान करेंगी। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यमुना सफाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ मिलकर ऐसा तंत्र बनाया जाएगा जिससे गोबर का उपयोग गैस और प्राकृतिक खाद बनाने में हो तथा अपशिष्ट कचरे को यमुना में जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही 11 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जो प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
2: 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रिज का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रिज को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार विकास और पर्यावरण को समान प्राथमिकता देते हुए राजधानी को अधिक हरित, स्वच्छ तथा टिकाऊ बनाने के लिए कार्य कर रही है।
3: इस पर्यावरण को संरक्षित करने का 70 लाख पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने के अभियान का शुरुआत होना हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। केंद्र और राज्य जब मिल के काम करते हैं तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता।
1: इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाना, वायु प्रदूषण कम करना और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा तथा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और गृह मंत्री आशीष सूद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण अभियान और कई परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मल्होत्रा ने दिल्ली परिवहन निगम DTC के बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी स्वागत किया। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के 250 वार्डो और 70 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि 5000 हेक्टेयर से अधिक रिज क्षेत्र को अधिसूचित करने, 1 करोड़ से अधिक देशी पौधे लगाने, 300 नई इलेक्ट्रिक बसों, नरेला उच्च सुरक्षा जेल, नए बस डिपो और स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र जैसी परियोजनाओं से राजधानी के पर्यावरण, परिवहन और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
4: हाई सिक्योरिटी नरेला जेल और उससे महत्वपूर्ण दिल्ली के फेफड़ों के रूप में रिज को विकसित करने का काम हमेशा की तरह दिल्ली सरकार की हैंड होल्डिंग करते हुए आदरणीय गृहमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के लिए अनेकों सौगात दी है और दिल्ली के पर्यावरण, दिल्ली की यमुना आदि चीजों में सुधार के लिए सदा अपना सहयोग को देते रहे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया तथा रक्षा राज्य मंत्री संजय

के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। टीबी उन्मूलन के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए श्री नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारियों द्वारा आयोग की शिकायतों पर की गई कार्रवाई, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधानों के पालन और सर्वोच्च न्यायालय के बंधुआ मुक्ति मोर्चा तथा एशियाड श्रमिक मामलों में दिए गए आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस ऑनलाइन सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव या उसके प्रतिनिधि, श्रम आयुक्त तथा संबंधित सभी जिलाधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आज से राजभाषा हिंदी और विभिन्न कार्यालयों में उसका प्रयोग विषय पर 6 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यान्वयन कुमार पाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग सुशासन और जनसंपर्क को मजबूत बनाता है। 13 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राजभाषा नीति, कार्यालय हिंदी और प्रशासनिक लेखन जैसे विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खेरवार ने आज दक्षिण दिल्ली के कटवारिया सराय, बेर सराय, डियर पार्क और एकता कैंप क्षेत्र का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था तथा विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विशेष सफाई अभियान चलाने, नियमित कूड़ा उठाने और मॉनसून से पहले नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेरवार ने कटवारिया सराय और डियर पार्क के ढलाव पर 2-2 कचरा प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करने के निर्देश भी दिए, जिससे कचरा प्रबंधन की व्यवस्था और बेहतर हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 अत्याधुनिक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पंजाब के एक कुख्यात गैंगस्टर से प्रभावित होकर अपना गिरोह बना रहा था और हथियार जुटाने के लिए लूटपाट और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। मामले में हथियारों के स्रोत और गिरोह की अन्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 200 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल होने वाला एक 4-पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच अब भी जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें यह झूठा दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। उसे आगे स्पष्ट किया कि प्रसारित हो रहे वीडियो का इससे कोई संबंध नहीं है और यह भारत चीन सीमा से संबंधित भी नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु आज राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने मुलाकात की।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान उन्होंने श्री गोयल के साथ दिल्ली के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजधानी में व्यापार, उद्योग और निवेश के मौकों को मजबूत

करने साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 स्टूडेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय वर्षा के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं सवेरे और दोपहर के समय कई जगहों पर हल्की बारिश होने की भी आशंका है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला विकास समिति चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डोरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:15। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म मोहरा से है। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है विजू शाह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म मोहरा से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है दिल से। गायक कलाकार हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी। गीत रचना है गुलजार की और संगीत दिया है AR रहमान ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म दिल ने फिर याद किया के शीर्षक गीत में। सभी कलाकार हैं गायक कलाकार सुमन कल्याणपुर और मुकेश, संगीत दिया है सैनिक ओएमआई ने और गीत रचना है जीएल रावल की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

और एक कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ली है हमने फिल्म कसूर से। नया कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। गीत रचना है समीर की और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बेटा बेटी। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर।

और इस कार्यक्रम में आगे ही सुनते हैं मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है जीने की राह है और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वर्ल्ड कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जिसके गीत के बोल हैं रवैया वस्ता भैया। ये जो गीत है हमने लिया है, फिल्म का नाम है श्री 420। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी।

0: खुर्शी 420 के इसी गीत के साथ ये आज का गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। कहा, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। कहा, 6,000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत

0: कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा समुद्री सुरक्षा व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रूपये प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
2: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
5: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पालरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
6: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India.

0: also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर

फरमाइ फिल्म नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुन सकते हैं रात 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। इस दौरान 11 बजे सुनिएगा खबरें बड़े सगीर से। रात 11:30 बजे हम पेश करेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। रात 12:00 बजे बजमी मौसीकी प्रोग्राम में आज सुनिएगा पंडित गणेश राम चंद्र बहरे बुआ से राग बिहाग में ख्याल। 12:00 बजे आलमी खबरें नशर की जाएगी और 12:10 बजे पर क्लासी की मौसीकी प्रोग्राम में आज सुनिएगा प्रकाश वगैरह से बांसुरी पर बजाया राग चौकौंस। सदर फिल्मी नगमों का लुत्फ आप ले सकते हैं रात 12:30 बजे आखिर शब प्रोग्राम के तहत। यह प्रोग्राम जारी रहेगा 12:50 बजे तक। 12:50 बजे पर खबरें नशर की जाएंगी और 1 बजे हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो समझिए था एक मुख्तसर तारीफ हमारे यहां से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों को जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: आईफोन में गजलों के प्रोग्राम एक फनकार में भी आप समात फरमा रहे थे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गायी गजलें। इसके साथ ही आज का गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1971 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शब के 9:45 बजे अब खबरें नशर होंगी।
1: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकल व हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरल में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शुमाली और जनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो

0: बरसात में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और समर की मौसम में एक्टिनिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो जो ये फंगल इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपर हाइजीन अगर ना मेंटेन हो, मतलब आपकी बॉडी में पसीना आ रहा है बट आप बात नहीं ले रहे हैं, आप अपने जो अंडरवेयर्स हैं, जो आपके कपड़े हैं वो डेली चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मॉइस्चर डेवलप हो जाता है और उस मॉइस्चर में फंगस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जिनकी और भी बीमारियां साथ साथ हो, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या इनकी इम्यूनिटी अच्छा थोड़ी कम होती है, तो उनको फंगस का इंसिडेंस ज्यादा पाया जाता है। और फंगस ऐसा होता है कि वो एक जगह लगे तो इचिंग से, जब हम हमारे नेल्स जब बड़े होते हैं, जब हम एक जगह पे इचिंग करते हैं तो वही नेल से दूसरी जगह इचिंग करते हैं, तो उससे वो स्प्रेड होता रहता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो सभी देखते हैं हम कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेट करते हैं, कोई भी किसी डॉक्टर या जिसको नॉलेज ना हो या केमिस्ट के पास जाके कोई ट्यूब ले आते हैं और वो ट्यूब ज्यादातर जो होता है उसमें स्टीरॉइड्स भी होते हैं।
1: अच्छा,
0: वो स्टीरॉइड्स फंगल इन्फेक्शन में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, हम नहीं देते हैं और वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पहले अच्छा। तो ये कि जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो आप जरूर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद ही,
1: एक्सपर्ट से मशवरा करें
0: और दवाई तब लें। दवाई हम दो किस्म में देते हैं फंगल इन्फेक्शन में, कुछ टैबलेट के फॉर्म में होती है, अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो हमें टैबलेट्स भी देनी पड़ती है जिसका 10 दिन से लेकर 2 से 3 हफ्ते का कोर्स होता है, और कुछ ट्यूब्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं जो स्किन पे लगाने के लिए देते हैं हम। अब इसमें ये होता है कि कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोर्स हमने आपको दिया है इन्फेक्शन का वो कोर्स कंप्लीट करें, दवाई का वो कोर्स बीच में ब्रेक ना होना चाहिए, खासकर जो टैबलेट्स का कोर्स है, और साथ में जो हम ट्यूब लगाने के लिए देते हैं, क्रीम लगाने देते हैं, उसको एक प्रॉपरली तरीका होता है लगाने का, वो लगाएं। दूसरा एक ग्रुप होता है जिनमें क्रॉनिक मेडिकल इलनेसेस होती हैं, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स हैं, कार्डिक पेशेंट है, लीवर वाले पेशेंट है, किडनी वाले पेशेंट है, इन लोगों में इम्यूनिटी लो होती है, तो इसमें बेहतर ये है कि अपने शुगर को कंट्रोल करें, आपके बीपी की जो मेडिसिन है वो रेगुलरली खाएं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, और अपने आप को जो भी डॉक्टर से सलाह मिलती है आपकी क्रॉनिक इलनेसेस से रिलेटेड उसको फॉलो करें।
2: कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से इस प्रोग्राम में शामिल भी आप सुन रहे थे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर यासिर इस्लाम की। ये मालूमात मौजूद था बरसात के मौसम में होने वाली एलर्जीज। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है दिलीप कुमार की शख्सियत और खिदमात के हवाले से जनाब इदरीस अहमद खान की तहरीर करदा फीचर शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार का दूसरा और आखिरी हिस्सा।

आ जाए कि सुर में देखो जीवन की सरगम।

0: बताया जाता है कि देवदास के केदार को विनय कुमार ने इतनी गहराई से जज्ब कर लिया था कि उससे बाहर निकलने के लिए एक साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई और बाद में माहिर नफ्सियात की राय से उन्होंने कई हल्की फुल्की तफरीही फिल्में भी की, जैसे कोहिनूर, आजाद, गंगा जमुना और राम और श्याम। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं।
1: सब सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। क्या बदी रो रही है मेरे भाई से? मुझे
2: अपना रास्ता पकड़।
1: रस्ते की बच्ची खुपड़िया काट के चला हुआ, मैं फेंक दूंगा जो मेरे भाई से लगाई बुझाई की तो। हाँ मुन्ना, और चूहे की बात बनाना भैया, बहुत फटा दी औरत है। अरे हम तक तुम्हारे लिए फाउंटेन लावा की खातिर बाजार गए रहे, हमसे तो सकल ही ना ही देखा भैया, तू तो हमारा मिजाज जानती है।
2: अरे ओ बेईमान, वो बीच रास्ता में धक्का देके कौन का बोझा गिरा रहा तू?
1: बोझा गिरा दिया तो ऐसी खराबी हो गई, कौन आफत आई गई? हाँ देखा मुन्ना, अरे इतनी सी बात का बतंग ना बना के रही है।
2: रहा दियो तुम और हम कर ले। अरे तुम जैसे का तुम रुले रुले के मत इससे आए गए।
1: देखो धन्नो रानी, ज्यादा मुंह न लगो हमरे, समझी तो गई हूँ एक लप्पर जाके गिरी हो दूसरे गाँव में।
0: फिल्मी नाकदीन का कहना है कि जिस तरह जंगे अजीम और तकसीम की बर्बादियों से गमजदा समाज को दिलीप कुमार की जज्बात निगारी में तख्लीकी तस्कीन मिली, इसी तरह पंडित नेहरू के अहदे हुकूमत में दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर ने एक अलामती नए दौर की शुरुआत की।

0: नए दौर का दिलीप कुमार, तमीरी सोच, मेहनत, जोश और उम्मीद और खुशहाली की नुमाइंदगी की जीती जागती मिसाल
1: कल्चरल तौर से, यानी आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मशरक जो है, हम लोग बहुत से बहुत लिहाज कई ऐसी चीजें हैं हर रुख में हम लोग पीछे हैं। अभी हमने तरक्की करनी है, हमारी सड़कें बेहतर होंगी, हमारे स्कूल बेहतर होंगे, हमारे मकान मेहनत बेहतर होंगे, वो चाहे ईरान के हों, चाहे इजिप्ट के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, हमारा नुक्ता निगाह बेहतर होगा, हमारी तालीमी कैफियत बेहतर होगी, हमारा लिटरेचर बेहतर होगा, इसी तरह हमारी फिल्म भी जो है वो बेहतर होगी।
0: लॉर्ड मेघना देसाई की बात मानी जाए तो आजादी के बाद के नए हिंदुस्तान की सारी कदरें हमको दिलीप कुमार के फनी इर्तका में देखने को मिलती हैं, जिनमें बदलता देही और शहरी माहौल, गरीबी व अमीरी और बदलते हालात का दर्द, जाने मोहब्बत, वाबस्तगी, तलखी और गमखुशी जैसे बहुत से जाती व सामाजिक सरोकारों का अक्स शामिल है।
2: ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने, जिसमें न दया है, न बता है, न कोई धर्म है, न ममता है, ये कौन है? मैं पूछता हूँ ये कौन है जिस धरती की लाज बनकर जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का करंट बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई।
0: बाज़ नाक़िदीन का कहना है कि 60 की दहाई से लेकर आज तक कोई ऐसा हिंदुस्तानी अदाकार नहीं है जिसके अंदर दिलीप कुमार कहीं न कहीं मौजूद न हो। सत्यजीत रे ने कहा था कि दिलीप से मुअस्सर मेथड एक्टर उनकी नजर से नहीं गुजरा। सच तो यह है कि मालन ब्रांडो के शोहरत हासिल करने से पहले दिलीप कुमार ने गैर दानिस्ता तौर पर मेथड एक्टिंग की मिराज को हासिल कर लिया था। उन्होंने अपनी अदाकारी और खासतौर से अपने मखसूस बोलने के अंदाज को किरदार साजी का जादुई तरीका बना दिया था।
3: मिस्टर जे के रमन, मेरे इस ऑफिस में सिगार या सिगरेट पीना मना है, बाहर जाके इसे बुझा के आइए और सुनिए, आने से पहले इजाजत लीजिएगा।
0: उनको नाजरीन के जज्बात पर इस हद तक इख्तियार था कि उनके एक इशारे पर कभी लोग रो पड़ते थे और कभी हंसते चले जाते थे।
4: सैया के पास जा रही है अपने?
5: हाँ जी, सैया के पास जा रही, छह घंटे से तो यहाँ बंद, बेचारा मेरी जान को कोस रहा
4: होगा।
5: तुमने तो देखा नहीं मेरे सिंह?
4: मैंने देखा,
5: मेरा नट खटर प्यारा प्यारा है, अगर मैं उससे किसी दिन ना खेलूँ या दो चार बार उसे गले से ना लगा लूँ तो भूख हड़ताल कर देता है, कुछ खाते ही नहीं।
4: तुम कैसी लड़की जी, सब खुलम खुला बातें करती जाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो करने वाली बात है,
5: इसमें शर्म की कौन सी बात है जी? मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें तुम्हें भी अपनी सैया से मिला
4: दी। मैं नहीं मिलता।
5: नहीं नहीं, तुम क्यों नहीं मिलती उसे?
4: मैं नहीं मिलता।
5: क्यों नहीं मिलते तुम?
4: अरे वो तुम्हारे साथ देख बड़ा नहीं मानेगा, वो
5: जान से मार देंगी उसे।
4: रोक गांड रखा उसमें मालूम होता
5: है? हाँ, मैंने पहले कह दिया था।
4: क्या कह दिया था?
5: मैंने कह दिया था कि देखो सैया, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, खेलूंगी भी तुमसे, मगर रोक मेरा रहेगा।
4: मान गया वो?
5: और करता भी क्या?
4: रहेगा।
5: देखो जी, तुम मेरे सैया को गाली मत दो।
4: मैं सामने आता हूँ, देखा गाली मार।
5: मेरे सैया बड़ा शर्मिला है, बेगानों से घबराता है।
4: सुनो, छोटी छोटी मुलाकातें होती है क्या?
5: क्या छोरी, इधर आओ, भी बुलाती हूँ।
4: तुम्हारे सिंगर की आवाज थी क्या?
0: बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें दिलीप कुमार ने सिर्फ सर की जुम्बिश से या आंखों के जरा से जाविये से मुकालमों की जरूरत को बेकार साबित किया। फिल्म शक्ति का अमिताभ के साथ वाला सीन उसकी एक बेहतरीन मिसाल है।
3: सतीश रावनी चार लड़कों में से एक है जिनसे परसों

0: pretenda trovare Murphy qui, perché così potrà in e dar Bob capita è che Bob ne tuoi filanti riporti qui è e sbagliamento che cosa è? Sai
1: che इज्जतदार आदमियों के बेटों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेन में सफर करने वाली लड़कियां भी इज्जतदार होती हैं।
0: लेकिन इस बयान में किसी लड़की का कोई जिक्र नहीं है।
1: होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच यह है कि ये चार हुंडे एक शरीफ लड़की को परेशान कर रहे थे और जो कुछ भी हुआ इसी वजह से हुआ।
0: लड़की का नाम पता बता सकते हो?
1: जी बता सकता हूँ।
0: सुधाकर
1: जी
0: बयान ले लो।
1: चलिए
0: अरे ये सब सच है तो तुमने या उस लड़की ने किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई?
1: वो तो चाहती थी लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा।
0: तुमने जरूरी नहीं समझा? वो लोग गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो।
1: मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं।
0: तुम्हें पुलिस की जरूरत है या नहीं, लेकिन पुलिस को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो किसी मौके पर भी कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। तुम कसूरवार हो या नहीं इसका पता तो चल ही जाएगा, लेकिन कानून के बारे में अगर तुम इसी तरह सोचोगे जिस तरह के तुम सोच रहे हो सकता है कि आज नहीं तो कल किसी मुश्किल में पड़ जाओ। ये बात याद रखना।
2: अपने अजीज दोस्त ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में पहली बार दिलीप कुमार ने शैलेंद्र का लिखा गाना लता मंगेशकर के साथ मिलकर गाया था और इसकी मौसीकी सलील चौधरी ने तरतीब दी थी।

0: की फिल्म सगीना का मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना उन्होंने किशोर कुमार के साथ मिलकर गाया। फिल्म कर्मा के अलावा चंद अधूरी फिल्मों के लिए भी उन्होंने कुछ गाने गाए जो मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके। गुलूकारी के अलावा एक अच्छे फिल्म राइटर के तौर पर उनकी फिल्म लीडर को पेश किया जा सकता है, जिसके मौजू से साफ जाहिर है कि 60 के दहे में ही उन्होंने बाद के दौर की गंदी सियासत के रंग ढंग को बहुत पहले ही भांप लिया था। इस फिल्म में उनकी राइटिंग की बदौलत हमको जज्बात निगारी के कई रंग एक साथ नजर आते हैं।
1: मियारी फिल्में जो है वो किसी इक्तिसादी इकोनॉमिकल या सियासी पॉलिटिकल या इंटेलेक्चुअल वैक्यूम जिसको कहते हैं ना खला, उसमें उसकी तामीर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर होने के लिए, और मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं सही है बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या तमिलियन सिनेलीज फिल्म इंडस्ट्री या इजिप्शियन और ईरानियन फिल्म इंडस्ट्री कि अगर ये हमारी पूरी एक मशरकी कौमों का जो कल्चरल इर्तका है ये इस मुनहसर है बहुत सी और चीजों पर। हमारे तालीमी लेवल पर सब लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम पूरा मशरक तरक्की की तरफ जा रहा है। बहुत सी बुरी बातें हैं जो कम बुरी होती जा रही हैं।
0: ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार वाहिद ऐसे फनकार हैं जिनके फन को तकरीबन हर फिल्म में आजमाया गया। राज कपूर के मध्य मुकाबल अंदाज में, देवानंद के साथ इंसानियत में, अशोक कुमार के साथ दीदार में,

0: तलवार के साथ पैगाम में और दूसरी कई फिल्मों में मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, शमी कपूर और संजीव कुमार जैसे फनकारों के साथ रखा गया और वो हर इम्तहान पर पूरे उतरे।
1: तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह?
2: और तुमने देखकर कोई खास परेशानी?
3: हमको भी ना हुई।
2: वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड,
1: वो तो था और है और हमेशा रहेगा।
2: वो रहे न रहे, एक पर तो आ गया जरूर अजयेश्वर। मुझे तो आसमानों पर उड़ता फिरे थे ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए।
1: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
2: समझ गया, आ तो दिखा अपनी उड़ान। अब जो खड़ा तू, जो खड़ा मैं, अजरा बीच में पिस्तौल, उठाए पिस्तौल, चला गोली मुझ पर, निकाल ले कपड़े दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं।
1: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और मर्द भी हमारा होगा।
2: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम कहे शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
0: 32 बरस से ज्यादा वक्त तक एक रोमानी हीरो के तौर पर फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाने वाले दिलीप कुमार ने मेयार और मेदार की जो मिसाल फिल्म इंडस्ट्री के सामने रखी, उसे आज भी कई दूसरे हसास फनकारों ने अपना उसूल बना रखा है। दिलीप कुमार कोशिश करते थे कि एक वक्त में वो एक ही काम पर तवज्जो मरकूज करें।
4: इस बात को और सूरत-ए-हाल को अपने अंदर उसकी एक एहसास की तहरीक पैदा करना और उसको सबसे ज्यादा कठिन और दूसरा मसला उसको अपनाना, इसमें देर लगती है। बड़ी जल्दी जल्दी काम इधर से खत्म करके उधर शुरू कर देने में मुझे बड़ी अड़चन होती थी, मैं हो नहीं पा रहा था। तो मैंने देखा कि आराम से सुकून से काम अगर कम लें तो जो इंसान ज्यादा दे सकता है। फिर यह कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए।
0: दिलीप कुमार ने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। नरगिस उनकी हीरोइन रह चुकी थी, इसलिए जब मदर इंडिया में महबूब ने उनसे सुनील दत्त वाला किरदार अदा करने को कहा तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया, लेकिन उसी किरदार से सुनील दत्त को नई पहचान मिली। ऐसे और भी बहुत से काबिल जिक्र किरदार हैं जो दिलीप कुमार के लिए लिखे गए लेकिन दूसरे अदाकारों को पहचान दिलाने में मददगार साबित हुए, जैसे कि फिल्म आवारा का किरदार महबूब ने ख्वाजा अहमद अब्बास से दिलीप कुमार के लिए लिखवाया था, लेकिन वो किरदार राज कपूर की जिंदगी का संग मील साबित हुआ। फिल्म प्यासा में नूदत का किरदार भी दिलीप कुमार के लिए ही लिखा गया था। संगम के लिए राज कपूर चाहते थे कि मेन रोल दिलीप कुमार करे। दिलीप कुमार के इनकार के बाद वो किरदार खुद राज कपूर ने निभाया था। हॉलीवुड की शाहकार फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में दिलीप कुमार वाला किरदार उनके इनकार के बाद मिस्र के मशहूर अदाकार उमर शरीफ ने किया। नया दिन नई रात के 9 किरदार भी दिलीप कुमार के लिए लिखे गए जिन्हें बाद में संजीव कुमार ने किया। उन फिल्मों की दास्तान भी काफी दिलचस्प है जो दिलीप कुमार को सामने रखकर लिखी गई, लेकिन बहुत बड़े स्केल की होने की वजह से वो फिल्में अधूरे ख्वाब बनकर रह गईं। महबूब खान की फिल्म ताजमहल, अली रजा की राम मोहम्मद डिसूजा जिसमें दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद को एक साथ काम करना था, इसी तरह से कांदार की उमर खयाम, कमाल अमरोही की जैसे दरिया, सुरा मोदी की पुकार का रीमेक, सुभाष घई की खरा खोटा और बीआर चोपड़ा की चाणक्य चंद्रगुप्त ऐसी ही चंद फिल्में हैं। दिलीप कुमार पहली ऐसी फिल्मी हस्ती हैं

0: उन्होंने पंडित नेहरू के साथ दिल्ली से मुल्क के आवाम को खिताब किया था। दिलीप कुमार अकेले ऐसे अदाकार हैं जिनको 19 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया और 8 बार फिल्म फेयर का बेहतरीन एक्टर अवार्ड उनको दिया गया। इसमें 1955, 1956 और 1957 की पहली हैट्रिक भी एक नादिर एजाज है।
1: दिल तड़प तड़प कह रहा है आ जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम से आ जा।
2: मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे धोखा कैसे दे सकता, मगर मुझे जिंदा रहना है। मैं जो के बगैर नहीं जी सकता, मैं अपने हाथों अपनी जिंदगी नहीं मिटा सकता।

स्वस्थ होने को देखकर तो सारा भगवान लोग भी फिसल जाता है। हम तो फिर भी आदमी है और अपने मुंह से बोलता है, सही ना बुरा काम किया

तुम सैक्रिफाइस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के तरक्की में करते रहे हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहनशाह बदल जाती है। इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत इंसान का दामन थाम लेती है।

0: अभी आप सब बात कर रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, वो कौन थी फिल्म का नगमा सुनना चाहते थे? पंजाब से रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रवा रामटेके, प्रीति मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, मल्लापुर ताखा से राजेश जैन, मिट्टू जैन, संजीव जैन, प्रोग्राम की अगली पेशकश समाप्त करिए।
1: शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है, जहां तुम इस मौनी सूरत को छुपाए रखता है। हम फोन से बात सुनूंगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो।

अभी आप सुन रहे थे गाइड फिल्म का नगमा, आवाज थी मोहम्मद रफी की। सुनना चाहते थे सिंधी बुजुर्ग महाराज थे किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पम्मू वडतकर, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मंजू काटिला से। और सुनना चाहते थे राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश, राशि राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से। जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, कैथल हरियाणा से। और सुनना चाहते थे दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू, रघुवीर नगर से। कालका से शुभम चंद्र, बजाज साहिल, बजाज बिट्टा बजाज, अंबिका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी, नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा।

जाना चाहते थे किशोर नगर अमरावती से हीरा मांडे शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गोंडाड़े, गंज डुंडवारा से सुनना चाहते हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे नसी संजय कानूनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर, सुटी अमरजीत कौर छाबड़ा, सुटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से सुनना चाहते थे और सिनेमा को सुनना चाहते थे श्री गजानन सालोकर जी, सुरेश से पाटिल, देवेंद्र भटकर जी मुडाला महाराष्ट्र से, चंडीगढ़ से सुनना चाहते हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, बोला नीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिवप्रकाश देवदास, मोहित कुमार देवदास और कुमारी युति देवदास। और प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म है आराधना, आवाज है किशोर कुमार की।

सुनना चाहते थे इस नमे को जय नित्यानंद श्रोता संघ परमड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संगई महेश संगई प्रज्ञेश संगई और इसी नगमे को सुनना चाहते थे रविंद्र सिंह छाबरा इंद्रजीत छाबरा स्वीटी छाबरा गार्डन न्यू दिल्ली से जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत सुनना चाहते हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी और प्रथम सोनी और इस नगमे को सुनना चाहते थे शबनम अकरम और फरजाना ठिकरी महाराष्ट्र से सादुल शहर राजस्थान से राजकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ शास्त्री नगर बीटशहर से किशन सपकाल आशा सपकाल विशाल सपकाल नाजिया नासिर साजिद शाहिद और नासिर शेख सुना चाहते थे श्रीराम महाराष्ट्र से गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान छिपा और इसी नगमे को सुनना चाहते थे मानेवाड़ा रोड नागपुर से नरेंद्र भटकर सुशील भटकर और अंकिता भटकर जसपुर उत्तराखंड से सुनना चाहते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत

0: कृष्ण के परमार, ज्योत्सना परमार और हर्ष। देवेंद्र भटकर, सुशील भटकर और अंकिता भटकर मानीवड रोड नागपुर से इस नगमे को सुनना चाहते थे। तमिल शायद प्रोग्राम सामीन अभी जारी रहेगा। शब के 11 बजने को हैं। अब खबरें सुनेंगे बड़े सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बरसगीर की खबरों के साथ मैं तनवीर। पहले खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह अख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि इथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिच इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शुमाली और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह अख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकत दारी को उजागर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत कलीदी शराकत दारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में ताउन होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अखदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की, अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वज़ीर आज़म ने दिफा, बैरी सलामती, तिजारत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीकाकार के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है। वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की जानिब से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज दबिंग तांग आदिपूर्णा से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के आवाम को वक्फ किया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीक शुदा पहल है जिससे अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फवायद हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजीला टनल जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क राबते को भी उजागर किया, जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक पेड़ माह के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत मुस्बत अकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है। जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की सिमत काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज दोपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज सुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासिरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। वजीरे खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत बहरैन इश्तराक लगातार वसत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरैन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया। अपने दौरे में वजीरे खारजा ने बहरैन के नायब वजीरे आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरैन दोतरफा ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क आज दोपहर ताकतवर धमाकों से दहल उठी जिनमें 4 पुलिस अफसरान समेत 18 अफराद जख्मी हुए। ये धमाके सदारती महल में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों और उनके शाम के हम मनसब अहमद अलशरा के दरमियान होने वाली मुलाकात से कुछ ही देर पहले हुए। मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने खबर दी है कि ये धमाके उस होटल से करीब हुए हैं जहां फ्रांस के सदर मुबैना तौर पर रिहाइश पजीर हैं। फ्रांस के सदर के दफ्तर ने बताया कि सदर महफूज हैं और उनका दौरा जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज शाम की राजधानी पहुंचे सदर मैखों बशार अल असद की हुकूमत के सकूत के बाद जंग से मुतासिरा मुल्क का दौरा करने वाले पहले चोटी के यूरोपी रहनुमा हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाडी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोदे खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मेपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमत और कुदरती आफात से निपटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत

0: भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल की हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह अख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि इथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। और केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामीन, तामिल इरशाद प्रोग्राम अभी जारी है। सुनते हैं इस प्रोग्राम के कुछ और नगमे।

अभी आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म का नगमा। आवाजें थी मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा और शमशाद बेगम की। सुनना चाहते थे महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी और विनीत नचानी। इसी नगमे को पसंद करा था लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफी पंवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पंवार। और सुनना चाहते थे जमशेदपुर से अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह, राकेश कुमार। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी नंदा बोट के उत्तम जमदाड़े। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा,

छोटी ग्राम पीपरलोड सर गांव छत्तीसगढ़ से इस नगमे को सुनना चाहते थे और सुनना चाहते थे गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दोदी प्रमोद कुमार दोदी और पुष्पेंद्र कुमार दोदी और इसी नगमे को सुनना चाह रहे थे मीनाक्षी तिवारी अदेब जी सुधीर नूतन किरण

कि स्वामी को सुनना चाह रहे थे पुरानी बागपत से इलियास मुस्कान कुशी रानी और रामघाट कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और बिहारी बाबू। इस मम्मी के सुनने के ख्वाहिशमंद थे रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी महेंद्र कुमार तिवारी और उमा तिवारी, संजय डिंगिया नमन ठिंगिया और अपार डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से सुनना चाह रहे थे इस नगमे को। और गंग जला सहरसा बिहार से कुमार विद्यार्थी सविता राधे विद्यार्थी बल्कि सुनने के ख्वाहिशमंद थे पांडकर मदा जिला यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे अनुश्री धनश्री बुरांडे। व्हाइटफील्ड बेंगलोर से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव।

इस्लामी को सुनना चाहते थे, मतलब अकोट से के संजीव डबेराव, डॉक्टर रसिका डबेराव, डॉक्टर कौस्तुम डबेराव।

0: مہمان تھے الیاس مسکان قریشی، رانی قریشی اور بابا جیت قریشی پرانی باغپت سے. اسی کے ساتھ ہی تامل ارشاد پروگرام اب ختم ہوتا ہے.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سبھی نے بھی آپ سن رہے تھے پروگرام تامل ارشاد پہ. آج کا پروگرام پیش کر رہی تھی سروری بانو. پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں. आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में. इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन देशों के दौरे पर हैं. अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में उनका जोरदार स्वागत हुआ. प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए कई फैसले भी लिए. इस विषय में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल. अम्बेसडर तायल, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है.
3: धन्यवाद.
2: अम्बेसडर तायल, हमने इंडियन ओशन रीजन की तरफ भारत सरकार का एक झुकाव देखा है. उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये विजिट है, ये इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न मैरिटाइम जोन और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो इस विषय में, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, अब भारत इंडोनेशिया की साझेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
3: देखिए, अब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर किसी तरह से जुड़ चुके हैं और पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का कूटनीति का एक बहुत ही बड़ा पुश हमें देखने को मिल रहा है. पिछले अप्रैल में हम कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए थे. अभी एक हफ्ता पहले हमने देखा कि जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी और बहुत ही सक्सेसफुल वो विजिट रही. और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा पर निकले हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. और हिंद प्रशांत क्षेत्र की ये पांचों देश मुख्य लोकतांत्रिक देश हैं और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं. तो एक ये बहुत ही अच्छा पहला पड़ाव भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा का इंडोनेशिया में आज रहा.
2: अम्बेसडर तायल, जैसे कि आपने बताया, जितने अग्रीमेंट साइन हुए, जितने नतीजे आए हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए भी सहयोग समझौते शामिल हैं. क्या आप हमारे श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए समझा सकते हैं इसको और विस्तार में?
3: देखिए, करीब 12 से अधिक समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में, संस्कृति, कल्चर और शिक्षा. और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है. भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा. और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया. और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के. उसके अलावा जो सबांग पोर्ट है, एक जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है. क्योंकि ये श्रोताओं को समझना चाहिए कि जो मलक्का स्ट्रेट्स है, बहुत ही मुख्य पानी का रास्ता है जिससे पूरे ईस्ट एशिया व्यापार वहां से होता है. भारत का 40% व्यापार वहां से होता है. और अभी पीछे जो हमने देखा कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई वहां पे गतिरोध कभी भी आएगा व्यापार में और शिप्स को पार करने में, तो इस तरह मलक्का स्ट्रेट्स है, उसका ठीक वहां चले और उसमें कोई गतिरोध अवरोध ना आए, इसमें भारत और इंडोनेशिया का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है. और मैं समझता हूं कि इस पर भी कुछ एग्रीमेंट और कुछ बातचीत हमारे

0: मंत्री और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के बीच में हुई है।
1: एक और जो अहम फैसला आज लिया गया जिस पर मेरे समझ से चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि महत्वपूर्ण खनिजों और स्टील के क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करने का भी समझौता हुआ है। साथ ही स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट में साझेदारी का एक नया दौर वो भी सामने आएगा। अम्बेसडर दायल, खास तौर पर आपसे महत्वपूर्ण उपयोगी खनिजों और रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में बात करना चाहूंगी।
0: पिछले एक दो वर्ष में विश्व के सामने एक ये नया मुद्दा उठा है कि क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स, इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीन ने अपना एक वर्चस्व बनाया है। 80% से ज्यादा ये कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे श्रोता ये देखेंगे कि भारत के जो भी एग्रीमेंट्स आजकल दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं उसमें हमेशा क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र रहता है, क्योंकि ये जो खनिज है ये बहुत रेयर है। ये नॉन क्रिटिकल मिनरल्स और ये रेयर अर्थ इनको कहा जाता है। ये खनिज इंडोनेशिया में काफी मिलते हैं और एक देश इसको नहीं पूरी तरह से संभाल पाता, तो कई जगह ये देखा गया है कि कई देश मिलकर खनिज एक जगह होता है, उसको प्रोसेस दूसरा देश करता है और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो भी समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में आज हुआ है उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भविष्य में सप्लाई चेन पर पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स का। 21% दुनिया की निकल इंडोनेशिया में है और स्टेनलेस स्टील की प्रोसेसिंग में निकल की आवश्यकता पड़ती है, और भारत स्टील का बहुत बड़ा एक उपभोक्ता भी है और प्रोड्यूस भी करता है। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा समझौता हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडोनेशिया की एजेंसीज के बीच में हुआ है।
1: अम्बेसडर दायल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के यूपीआई की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दुनिया भर में यूपीआई काफी विश्वसनीय और काफी उपयोगी साबित हो रहा है। आज ये घोषणा की गई है कि यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा। जब यूपीआई सरहदें पार कर रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव लाने और लीडर के तौर पर ये सब भारत की छवि को और कैसे बेहतर बना रहे हैं?
0: जिस तरह से भारत में डिजिटल सर्विसेज पूरे 140 करोड़ लोगों तक पहुंची है, गांव-गांव में पहुंची है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, और जो पेमेंट्स कार्ड्स के थ्रू बैंक के द्वारा हो रहे हैं, फोन के द्वारा हो रहे हैं, तो इसमें जो यूपीआई 10 देशों से पहले ही भारत का समझौता हो चुका है, जहां भारत आप यूपीआई से पेमेंट रुपीज में कर सकते हैं। अब इंडोनेशिया का जो इंडोनेशियन पेमेंट सिस्टम है उसके साथ भी यूपीआई का इंटीग्रेशन होगा, उसका मेल होगा। हमारे जो पर्यटक हैं और बिजनेस के लोग हैं वो अगर इंडोनेशिया जाएंगे तो रुपीज में यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इससे देखिए दोनों देशों के नागरिकों को ये लाभ भी होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमीशन होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि पहले अगर आप इंडोनेशिया जाएं कुछ खरीदें तो पहले वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर भारत के रुपए में कन्वर्ट होगा, और दोनों तरफ वो कमीशन डॉलर वाला लगता है। तो अगर डायरेक्ट रुपी और रुपया डायरेक्टली लिंक होगा तो वो कमीशन बच जाता है, दोनों देशों के नागरिकों को उससे फायदा होगा।
1: अम्बेसडर दायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेली कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी आज समझौते हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आजकल पूरी दुनिया में एआई का डंका है, तो एआई के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया आगे अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि एआई सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके?
0: आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये शताब्दी है 21वीं शताब्दी, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है, और उसका एक रूप जो सामने आया है पिछले एक दो साल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल नया टूल विश्व में समाज के साथ आपके पास आई है, जिस पर मास्टरी करना बहुत आवश्यक है हर देश को जो भी आगे बढ़ना चाहता है। और इसमें भारत पहले ही बहुत काम भारत में हो रहा है, मिशन हैं और स्टार्टअप्स में तो भारत ने कई पिछले सालों से गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से बहुत मदद की जाती है स्टार्टअप्स में, हमारे युवाओं को और हमारे इंजीनियर्स को एंटरप्रेन्योर्स को। इंडोनेशिया भी एक युवा देश है, वहां भी 28 करोड़ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बढ़ रही है और युवा लोग अधिक हैं।

0: आगे के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, इन सबका बहुत बड़ा योगदान होगा और इसमें भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। तो आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मुख्य अंश।
2: पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ भी पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है।
1: अम्बेसडर पहल इंडोनेशिया द्वारा इन दोनों जेस्चर्स को भारत की तरफ कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए है। तो इन दोनों कदमों को आपके नजरिए में आप कैसे देखते हैं?
0: ये एक बहुत ही प्रमुख सम्मान है प्रधानमंत्री का भी और भारत का भी। प्रधानमंत्री अब 12 वर्ष से दुनिया के पटल पर हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड नेता के रूप में दुनिया देखती है। जो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, आज भी जैसे उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, और दुनिया देख रही है कि अब चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो अब ताकि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे इतना मारामारी के बाद वहां आ गए हैं, तो उसका भी सम्मान है बिंटांग आदिपूर्ण के द्वारा। और भारत का भी सम्मान है कि वो भारत की जो नीतियां रही हैं, भारत और इंडोनेशिया का पुराना सिविलाइजेशनल एक जोड़ है, एक कनेक्शन है और दोनों देशों का ध्येय भी एक ही है कि पूरा इंडो पैसिफिक, प्रशांत हिंद महासागर पीसफुल रहे और दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और जैसे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियन पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। हर जो भी नेता दूसरे देश के जाते हैं उनको हर एक को ये ऑनर प्राप्त नहीं होता कि वो वहां के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस देश के नेताओं से जो भारत और इंडोनेशिया की मैत्री का संदेश जहां जहां से भी वो आए हैं, जो पूरा इंडोनेशिया वो संदेश वहां लेके जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंस के बीच में। और प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में एक बहुत ही बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि भारत विकास का रास्ता फॉलो करता है, एक्सपेंशनिज्म का नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने भारत के बारे में कही।
1: आखिर में अम्बेसडर तायल, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, क्या आप उन कदमों के बारे में बता सकते हैं जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान इन संबंधों को प्रगाढ़ और बेहतर करने के लिए उठाए गए हैं?
0: भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबियांतो जाएंगे, एक परम्परण मंदिर है 1000 साल से ज्यादा पुराना है योग यकार्ता में, उसके जीर्णोद्धार के लिए भारत ने कदम उठाया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है। और अगर आप जकार्ता जाएं तो एक जगह वो श्री कृष्ण जी जो रथ और अर्जुन का रथ भी एक बहुत ही अच्छे जगह बहुत बड़ा बना हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति एक बहुत जगह बहुत बड़ी बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा और उसको और ज्यादा लोगों के पास ले जाने का प्रयत्न है। और दूसरा, 1927 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इंडोनेशिया गए थे, उसकी शताब्दी 2027 में बहुत धूमधाम से इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह बनाई जाएगी। उस पर गुरुदेव टैगोर और इंडोनेशिया के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका भी बहुत अच्छा योगदान था, उन दोनों के नाम से ये शताब्दी दोनों देशों में मनाई जाएगी।
1: अम्बेसडर पायल, आपने प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण

0: दिया है हमें और आपने हमारे साथ अपने विचार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। स्वामी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बजमी मौसीकी प्रोग्राम में आप सुनिए पंडित गणेश राम चंद्र बहरे बुआ से राग बिहाग में ख्याल।

0: वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कल शाम बहरीन का अपना दो रोजा दौरा मुकम्मल किया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। भारत केरलम के शहर कोच्ची में आज से शुरू होने वाली ब्रिक्स की ख्वातीन वजारती मीटिंग की मेजबानी करेगा। ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के वजरा आपसी ताउन को मजबूत करेंगे और मुल्क की ब्रिक्स ग्रुप की सदारत के तहत ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की के लिए एक मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएंगे। ये वज़रा मुजव्वज़ा नतायज पर बातचीत करेंगे और ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान ताउन को बढ़ाने के स्ट्रेटेजिक तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में खुसूसी इफ्तिताही इजलास का भी इनेकाद किया जाएगा जिसमें माहिरीन पॉलिसी साज प्रैक्टिशनर्स अपने अपने तजर्बात और ख्यालात का इजहार करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बहरान के दौरान जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का वक्त देते हुए कहा है कि अगर उनकी शरायत को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को बड़ा और आखिरी रद्द अमल किया जाएगा। एक बाजाबता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक के उसके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। इस कमेटी ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने के लिए अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मवासलाती खिदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 नुकाती तहरीरी मुआहदे पर रद्द पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी है जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क कल दोपहर दो ताकतवर धमाकों से दहल उठी जिनमें 4 पुलिस अफसरान समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। ये धमाके सदारती महल में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखा और उनके शाम के हमनसब अहमद अलशरा के दरमियान होने वाली मुलाकात से कुछ ही देर पहले हुए। मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने खबर दी है कि ये धमाके उस होटल से करीब हुए हैं जहां फ्रांस के सदर मैखा मुबैना तौर पर रिहाइश पजीर हैं। फ्रांस के सदर के दफ्तर ने बताया कि सदर महफूज हैं और उनका दौरा जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज शाम की राजधानी पहुंचे सदर मैखा बशार अल असद की हुकूमत के सकूत के बाद जंग से मुतासर मुल्क का दौरा करने वाले पहले चोटी के यूरोपीय रहनुमा हैं। वस्ती चीन के हुबई सूबे में मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के इंतजाम की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफानी बारिश हुई और तेज हवाएं चली जिनके सबब हुआंगांग में 275 अफराद जख्मी हो गए जबकि 400 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। बचाव और राहत कार्रवाइयां जारी हैं। उधर गानशू सूबे में मिट्टी का तोड़ा गिरने से कई अफराद लापता हो गए हैं। हुकाम ने बताया है कि 33 अफराद इसमें फंसे हुए हैं जबकि 17 को बचा लिया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह अख्तियार करता है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसत पा रहा है और मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क कल दोपहर दो ताकतवर धमाकों से दहल उठी जिनमें 4 पुलिस अफसरान समेत 18 अफराद जख्मी हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी मौसिकी के प्रोग्राम में सामीना सुनिए पंडित।

प्रदीप की आवाज में आप सुन रहे थे नास्तिक फिल्म का नगमा, मुसीकार थी सी रामचंद्र। आखिरी शब्द प्रोग्राम की अगली पेशकश सूर्य की आवाज में शान फिल्म का नगमा, मुसीकार हंसराज बहल।

पा रहा है। मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क कल दोपहर दो ताकतवर धमाकों से दहल उठी, जिनमें चार पुलिस अफसरान समेत 18 अफराद जख्मी हुए। और वस्ती चीन के हुबई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह अख्तियार करता है। कल दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत कलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में ताउन होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अखदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत तरक्की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वज़ीर आज़म ने दिफा, बहरी सलामती, तजारत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीकाकार के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 1 अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है। वज़ीर आज़म मोदी को कल एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की जानिब से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंटांग आदिपूर्णा से सरफराज किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के आवाम को वक्फ किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबाताती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत मुस्बत इकदाम किए हैं और 5,000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6,300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज़ करने का अज़्म किया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल कहा कि इथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिसके अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, दही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क राबते को भी उजागर किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत बहरैन इश्तराक लगातार वसत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कल शाम बहरैन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया। अपने दौरे में वज़ीर ख़ारिजा ने बहरैन के नायब वज़ीर आज़म खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरैन दोतरफा ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया।
भारत केरलम के शहर कोची में आज से शुरू होने वाली ब्रिक्स की ख्वातीन वजारती मीटिंग की मेजबानी करेगा। ख्वातीन

0: बच्चों की तरक्की की वजारत ने बताया है कि इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के वजरा आपसी ताउन को मजबूत करेंगे और मुल्क की ब्रिक्स ग्रुप की सदारत के तहत ख्वातीन की कयादत वाली तरक्की के लिए एक मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएंगे। ये वजरा मुजवजा नतायज पर बातचीत करेंगे और ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान ताउन को बढ़ाने के स्ट्रेटेजिक तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जारी शदीद सियासी बहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का वक्त देते हुए कहा है कि अगर उनकी शरायत को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को बड़ा और आखिरी रद्द अमल किया जाएगा। एक बाजाबता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क कल दोपहर 2 ताकतवर धमाकों से दहल उठी जिनमें 4 पुलिस अफसरान समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। ये धमाके सदारती महल में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखां और उनके शाम के हमनसब अहमद अल शरा के दरमियान होने वाली मुलाकात से कुछ ही देर पहले हुए। मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने खबर दी है कि ये धमाके उस होटल से करीब हुए हैं जहां फ्रांस के सदर मैखां मुबैना तौर पर रिहाइश पजीर हैं। फ्रांस के सदर के दफ्तर ने बताया कि सदर महफूज हैं और उनका दौरा जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज शाम की राजधानी पहुंचे सदर मैखां बशार अल असद की हुकूमत के सकूत के बाद जंग से मुतासिरा मुल्क का दौरा करने वाले पहले चोटी के यूरोपी रहनुमा हैं। वस्ती चीन के हुबई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी सूरत हाल के इंतजाम की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफानी बारिश हुई और तेज हवाएं चली जिसके सबब हुआंगांग में 275 अफराद जख्मी हो गए जबकि 400 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। बचाव और राहत कार्रवाइयां जारी हैं। उधर गांशु सूबे में मिट्टी का तोदा गिरने से कई अफराद लापता हो गए हैं। हुक्काम ने बताया है कि 33 अफराद इसमें फंसे हुए हैं जबकि 17 को बचा लिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 3 से 4 दिन के लिए दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बिहार उत्तर प्रदेश केरलम माहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों की जानी मजीद बढ़ गया है। IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह अख्तियार करता है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसत पा रहा है और मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क में कल दोपहर 2 ताकतवर बम धमाके हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DDFree डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समूह सबका ही बजट चाहता है। यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम बिलाद खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।

0: नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनल को संबोधित किया। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमता और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 1,10,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इसमें शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को शामिल किया गया है। वायनाड के पेपरडी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आज रात खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।
3: Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.

0: जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुन रहे हैं एआईआरलाइन न्यूज 24/7। श्रोताओं, समय हुआ है रात के 1:10 और यह समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत सुनहरे का। गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्मों के गीत। और ये सुनते हैं सबसे पहले ये गीत फिल्म तानसेन से केएल सहगल साहब की आवाज में।

0: अलग ही तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म मेला से मुकेश साहब और शमशाद बेगम की आवाज में।
1: एक पहाड़ से

इसी के साथ श्रोताओं गीत सुना रहे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत फिल्म श्री 420 से मुकेश साहब और साथियों की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद भी विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया

0: के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनल को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और कोस्टारिका ने आपसी व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की पहली मीटिंग वर्चुअल माध्यम के जरिए की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टारिका की फॉरेन ट्रेड की जनरल डायरेक्टर एडियाना कास्ट्रो ने की। बैठक के दौरान व्यापार और निवेश नियमों पर विचार साझा किए गए तथा आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, सौराष्ट्र, कच्छ, मदर, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के टेन ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common

सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10, तो ये समय है कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आइए सुनते हैं ये गीत। सबसे पहले फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में।

0: और इसी के साथ आज का गीत पार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात्रि के तीन बजने को हैं और ये सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद में विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया

0: की सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। पाकिस्तान में दो वर्ष पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आपातकाल घोषित किए जाने के बावजूद 2 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे अभी तक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। इससे पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद विश्व में स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। वायनाड के मेपड्डी में कल्लाडी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that

पहली जो गजल आप सुन रहे थे ये जगजीत सिंह के स्वर में थी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए एक और गजल सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं विनोद सहगल को एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ, जिसके गुलकार यानी कि रचनाकार हैं दिलीप ताहिर।
1: यंगर जनरेशन के कुछ नाम मेरे जहन में उभरते हैं,

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल, कलाकार है सुभाष आनंद, रचना है शिव साहिल की और कंपोजर भी हैं सुभाष आनंद।

0: जगजीत सिंह की इसी बहुत खूबसूरत गजल के साथ ही आज का गजल गीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का यहां लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत हो भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का या लाइवन्यू 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं जी रघुरमन का बांसुरी पर बजाया गया राग मध्यमावती।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जी रघुरगम रमन का बांसुरी पर बजाया गया राग मदमावती वंदे मातरम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। देशभक्ति गीत का समय रहेगा 5:20। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे मल्लिका बनर्जी का गायन।

वी श्रीवास्तव के भजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा सुबह 7:30 और सुबह 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे गजानन राय जोशी का गायन राग देशकर।

साइंस मैगजीन कार्यक्रम का समय रहेगा 9:15 और दिन में 9:30 पर एटीडी महक कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

0: दिन में 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस और 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य का गायन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: धर्म है तसी सदता बंद बंद कटाए खोपरिया लहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रहा नाद चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसवासा नाद निभाही तना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो पंजा तखता सरबत गुरुद्वारे का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु बोलो प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चत आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथ आरे आए तो देख तेग पते गर्द की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बाल बाले बोले जी वाहे गुरु बोले जे सिखानु सिखी दान केस दान राहत दान बबेक दान वसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया चंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोले जी वाहे गुरु बोले जय सिखा दा मन नीमा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दार जियो श्री ननकाना साहेब अते हर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा

टिपका ते जप माली तान ले छा करे तर पूजा पड़े कते बस जम तर काबा

Yeah.